यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर आज गुरुवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की सातवीं तिथि तदनुसार 28 मई सन 2026 इस समय सुबह के 5:56 और 20 सेकंड हुए हैं। अब आकाशवाणी शिवपुरी से प्रसारण आरंभ होता है।

0: पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे हैं, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित ना रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जन भागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। मंत्रिमंडल के आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन, परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
2: इस प्रोग्राम में 3 बड़े सुधार आज अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में FCI का बड़ा गोडाउन होता है, वहाँ से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुँचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिमुनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगे। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिए जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है, जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कंटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। विभिन्न राज्यों से ईद मनाए जाने की खबर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन ने बकरी ईद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को मजबूत करने का आग्रह किया। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन बनाए। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 मैच में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इस मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खेलेंगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 6:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं मातृ वंदना से। श्रोताओं, हम अपनी मातृभूमि को सादर प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं और देश की वंदना करते हैं।

समूह स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये मात्र वंदना। श्रोताओ, भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, आज है बकरीद यानी कि ईद उल जुहा। श्रोताओ, कोई भी त्योहार हम सभी देशवासियों को आपसी प्रेम और सद्भाव का संदेश देता है कि हम एक दूसरे के साथ सद्भाव रखें, सद्व्यवहार रखें, एक दूसरे के साथ प्रेम बनाए रखें और राष्ट्रहित और देश हित में अपनी राष्ट्रीय एकता को मजबूत करें। सभी श्रोताओं को बकरीद की शुभकामनाएं।

जानी बाबू और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये नात। श्रोताओं, आपको बता दें कि भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। सलीम झंकार और साथियों की आवाज में आपको सुनवा रहे हैं ये नात।

0: असलम साबरी और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये नात। श्रोताओं, इसके साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। समय है कार्यक्रम चिंतन का और श्रोताओं, चिंतन कार्यक्रम में आज का विषय है ईद उल जुहा। चिंतक हैं शेख शहजाद उल्लाह उस्मानी। लीजिए सुनिए।
1: इस्लामी कैलेंडर का आखिरी यानी 12वां महीना जिलहिज के नाम से जाना जाता है। नए साल का पहला महीना मुहर्रम के नाम से जाना जाता है। दोनों ही माह महत्वपूर्ण संदेश देते हैं। जिलहिज का महीना सच्चे दिल से अल्लाह की बनाई हुई सृष्टि के लिए, मानव समाज के लिए कुर्बानी या त्याग का संदेश देता है, तो मुहर्रम का महीना अपने धर्म के लिए शहादत या बलिदान देने का संदेश देता है। इस्लामी हिजरी वर्ष का अंतिम महीना जिलहिज, जिसे बोलचाल में बकरा ईद का महीना कहा जाता है, बहुत ही पवित्र, बड़ी अजमत और फजीलत वाला महीना है। इस महीने में हज और कुर्बानी, ये दोनों अमल अल्लाह की इबादत में शामिल हैं। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को ईद उल अजहा यानी बकरा ईद मनाई जाती है। जिलहिज माह अपने ईसार, वफादारी, खुदा परस्ती और कुर्बानी की एक ऐसी याद ताज़ा कराता है जिसकी मिसाल दुनिया की पूरी इंसानी तारीख में देखने को नहीं मिलती। तकरीबन 5,500 साल पहले इसी माह में अल्लाह ताला ने अपने दो पाक बंदों का इम्तिहान लिया। अल्लाह की सच्ची इबादत, लगन और समर्पण के दो इम्तिहानों में सफल होने के बाद अल्लाह के तीसरे सबसे बड़े इम्तिहान में पैगम्बर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे हज़रत इस्माइल ज़बीहुल्लाह अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान करने से पीछे नहीं हटे। बड़ी मन्नतों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुए बेटे को अल्लाह के हुक्म से न सिर्फ पिता बल्कि माँ बीवी हाजरा भी बेटे को कुर्बान करने को तुरंत तैयार हो गईं। बेटे ने भी तुरंत गर्व के साथ अपनी सहमति दे दी, क्योंकि ये तो मात्र एक इम्तिहान था, श्रद्धा और नियत की परीक्षा थी। कुर्बानी के वक्त खुदाई करिश्मे से एक दुम्बा यानी भेड़ उपस्थित कर दी गई और उसकी कुर्बानी संपन्न हुई। इस घटना से मानव समाज को यही संदेश मिलता है कि इंसान

0: की जिंदगी आज आजमाइशों, परीक्षाओं और इम्तिहानों का दौर है। हमें ये समझना चाहिए कि हम अपनी जिंदगी का हर दिन इस तरह से बिताएं गोया हर दिन इम्तिहान से गुजर रहा है। फितरत का उसूल है कि जिस इंसान का दर्जा जितना बड़ा होता है उसका इम्तिहान भी बड़ा होता है। हर इंसान चाहता है कि खुदा की रहमतें उसे मिलती रहें, लेकिन उसकी रहमतों यानी कृपा के तलबगार और हकदार बनने के लिए इम्तिहान देने को कोई भी तैयार नहीं है। आम आदमी ईश्वर द्वारा लिए जा रहे मामूली से इम्तिहान से सिर्फ इसलिए घबरा जाता है क्योंकि वह या तो नास्तिक होता है या परमात्मा के विधि विधान पर उसे भरोसा नहीं होता है। छोटी छोटी परेशानियों, बीमारियों, आपदाओं से दो चार होने के बाद मनुष्य स्वीकार कर लेता है कि अंतिम सत्ता ईश्वर की ही है। ईश्वर जो चाहेगा होकर ही रहेगा। ईश्वर या परमात्मा पर अटूट आस्था रखते हुए धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों और आचरणों को अपनाते हुए अगर हम अपना एक एक पल जिएं, तो ईश्वर द्वारा लिए जा रहे हर इम्तिहान में हम सफल हो सकेंगे। इस्लामी शरीयत के अनुसार परिभाषित प्रत्येक संपन्न मुस्लिम पर कुर्बानी फर्ज है। इस शब्द कुर्बानी को व्यापक रूप में देखा जाना चाहिए। अपनी संपत्ति का एक हिस्सा, भोजन का एक हिस्सा, अपने समय का एक हिस्सा और अपनी क्षमताओं का एक हिस्सा। यदि हर मनुष्य अल्लाह की इबादत में और उसकी बनाई हुई इस सृष्टि, इस प्रकृति या प्राणी जगत के कल्याण के लिए निस्वार्थ भाव से समर्पित कर दे, तो यही सच्ची कुर्बानी होगी। ईद उल अजहा का पर्व मात्र पशु की कुर्बानी का संदेश नहीं देता, बल्कि इस बात का संदेश देता है कि जब एक बुजुर्ग पिता बड़ी मन्नतों के बाद बुढ़ापे में पैदा हुए प्यारे नाबालिग बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान करने को तैयार हो सकता है, एक माँ और बेटा ऐसी कुर्बानी के लिए अपनी सहमति दे सकते हैं, तो ईश्वर की बनाई हुई इस सृष्टि, प्रकृति और प्राणियों के कल्याण के लिए क्या हम अपनी कोई सबसे प्रिय चीज कुर्बान नहीं कर सकते? आज हमारी सबसे प्रिय चीज या तो धन संपत्ति है, या हमारा समय, या हमारी ऊर्जा। हमें अपना अतिरिक्त धन, समय और ऊर्जा का कोई हिस्सा अल्लाह यानी परमात्मा की बनाई इस सृष्टि के कल्याण के लिए कुर्बान करना ही चाहिए, तभी हम इस सृष्टि, प्रकृति और प्राणी जगत की रक्षा कर पाएंगे। पैगंबर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के कुर्बानी के जज्बे और उनके आला किरदार को याद करते हुए ईद उल अजहा यानी बकरा ईद के मौके पर हमें ये जज्बा बेदार करना है कि ईश्वर की राह में अपना सब कुछ कुर्बान करने के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। खुदा करे कि हम इस पैगाम को समझकर अपनी ईमानी रूह को बेदार रख सकें और खुदा के हर फरमान के आगे झुकते रहें, इसी में हमारी निजात है। आमीन। ईद मुबारक।
1: ईद उल जुहा। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे आज का चिंतन। चिंतक थे शेख सरदार उल्लाह उस्मानी। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए श्री रामचरित मानस पाठ। स्वर दे रहे हैं सुरेश वाडकर।

श्री राम अवतार की पूरी कथा सुनाकर काकभुशुंडी उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता? तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान बड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने कालभूषुंडी को

निज सिद्धांत की सीख थी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है।

0: अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस, स्वर दे रहे थे सुरेश वाडकर। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, कृषि सामयिकी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं गर्मी में पशुओं की उचित देखभाल, इस विषय पर डॉक्टर एसपी सिंह से जानकारी लीजिए, सुनिए।
1: किसान पशुपालक भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं इस समय गर्मियों का मौसम चल रहा है और जो गर्मियों के मौसम में तापमान में भी वृद्धि होने से जो हमारे पशु हैं पशुओं पर बहुत प्रतिकूल असर पड़ रहा है। पशु इस गर्मी को सहन करने में इतने सक्षम नहीं होते हैं, खासकर जो हमारे दुधारू पशु हैं। तो गर्मियों के मौसम में हमारे जो पशुपालक भाई पशुओं की कैसे देखभाल करें, इनका यदि हमारे पशुपालक भाई ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से उस बढ़ती हुई गर्मी के तापमान से अपने पशुओं को बचा सकते हैं और उन पशुओं से अच्छा उत्पादन लेने के साथ साथ उनके विकास और वृद्धि में भी सहयोग प्रदान कर सकते। तो सबसे ज़रूरी बात जो है पशुओं की देखभाल में, वो है पशुओं की आवास व्यवस्था। क्योंकि गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में पशुओं की आवास व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर पर्याप्त मात्रा में छांव हो, हवा का आवागमन हो, गर्म हवाएं ज़्यादा नहीं आती हों, इसका भी बचाव का सा माध्यम हो। तो आवास व्यवस्था को निश्चित तौर पर जो पशुशाला है, पशु बांधने का स्थान है, उसके नियमित तौर पर सुबह शाम सफाई होना बहुत ज़रूरी है। पशुओं को नियमित तौर पर हम व्यवस्था करें कि जहाँ हमारा पशु बन रहा है आसपास यदि पेड़ हैं तो गर्मी के समय पर यदि हमारा जो बाड़ा गर्म हो जाता है वो है तो हम पेड़ों की छांव के नीचे भी उनको बांध सकते हैं। साथ ही साथ ध्यान रखें कि पशुओं को दिन के समय पर जब धूप तेज है चराने के लिए न ले जाएं, ना ही धूप में निकालें, छांव में रखें पूरे दिन जो है। इससे क्या है, तापमान के प्रबंधन में आप काफ़ी मदद करेगा। साथ ही साथ ये ध्यान रखें जब चराने ले जाएं या पशुओं को बाहर ले जाना है तो सुबह या शाम जब ठंडा मौसम हो उसी समय ले जाएं, शाम को सूरज थोड़ा हल्का पड़ जाए या

0: सूर्यास्त हो जाए या सुबह सूरज निकलने से पहले या सुबह के 7-8 बजे तक जो है उस समय ये कर लें। ये बहुत ज़रूरी है पशुओं के लिए प्रबंधन के लिए आवास व्यवस्था के साथ साथ। दूसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण इसमें घटक है वो है आहार प्रबंधन। गर्मियों के मौसम में पशुओं का आहार ऐसा हो जो पौष्टिक हो और सुपाच्य भी हो। पौष्टिक और सुपाच्य आहार होगा तो पशुओं को पचाने में थोड़ा आसानी रहेगी और पशुओं को उससे लाभ मिलेगा। तो साथ ही साथ जो आहार प्रबंधन में सबसे पहली बात है कि गर्मियों के मौसम में जो हमारे पशु हैं उनको संतुलित आहार दें, और संतुलित आहार जब बनाएं तो निश्चित तौर पर घर पर जो हमारे पास उपलब्ध साधन हैं उसके माध्यम से हम संतुलित आहार बना सकते हैं। संतुलित आहार में मोटे मोटे तौर पर हमारे पशुपालक भाई के रातव ले लें 40 किलोग्राम, खली या ले लें 35 किलोग्राम, चूनी या चोकर ले लें जो दालों के छिलके आते हैं चने के छिलके आते हैं 20 किलोग्राम, नमक ले लें 3 किलोग्राम और खनिज लवण ले लें 2 किलोग्राम। इस तरीके से जो हमारा संतुलित आहार बन जाएगा इसको पशुओं को जो आवा आहार व्यवस्था के तहत पशुओं के उत्पादन के आधार पर हमें खाने को देना है। दुधारू पशु है भैंस है तो 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार, गाय है तो गाय को 3 लीटर दूध पर 1 किलो संतुलित आहार, काम करने वाला पशु है तो उसको अतिरिक्त रूप से 1 से 1.5 किलो संतुलित आहार, यदि कोई पशु गर्भवती है तो गर्भवती पशु को भी गर्मी के समय पर बहुत जरूरी है कि उसको संतुलित आहार दिया जाए और गर्भ रक्षा के लिए भी 1.5 से 2 किलोग्राम अतिरिक्त संतुलित आहार देने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये नियमित तौर पर हम सुबह शाम खिलाएंगे। और जो पशुओं को हम चारा खिला रहे हैं, खासकर हमारे यहाँ चलन है कि हम जो है चारा को जो है सानी लगा के देते हैं भूसे में जो है, तो भूसे की जो सानी लगा के दे रहे हैं तो कोशिश करें क्योंकि इस समय नया भूसा हमारे पशुपालकों के भाइयों के पास आया है तो भूसे को जो है धो के पानी में धो लें, डलिया से डलिया में भर लिया और पानी में डुबो दें तो उसकी गंदगी भी निकल जाएगी और वो उसकी गर्मी है वो कम हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी हमने जो संतुलित आहार है भिगो के रखा है उस भिगो के संतुलित आहार के जो रातव को हम जो है मिला के सानी से खिला सकते हैं तो उससे काफ़ी लाभ मिलता है खासकर गर्मियों के मौसम में। साथ ही साथ हरे चारे का बहुत ज़रूरी है क्योंकि हरा चारा ठंडा भी होता है और हरे चारा दूध उत्पादन में भी वृद्धि करता है, पशुओं के विकास में भी वृद्धि करता है क्योंकि बहुत सारे विटामिन जो है हमें हरे चारे से उस हमारे पशुओं को मिलते हैं। तो हरे चारे की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता होनी चाहिए पशुओं को जो आहार का उसको आहार में राशन में। तो नियमित तौर पर सुबह शाम आप भीगे हुए भूसे में या अलग से रातम में हरा चारा अलग से भी खिला सकते हैं। नियमित तौर से हरा चारा खिलाएंगे तो पशुओं को जो गर्मियों में काफ़ी लाभ मिलता है, काफ़ी लाभ होता है। तीसरी चीज़ जो महत्वपूर्ण है वो है पानी की व्यवस्था, क्योंकि गर्मी का मौसम में व्यक्ति को भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए और पशुओं के लिए भी पानी बहुत ज़्यादा चाहिए। गर्मियों के मौसम में ताजी और स्वच्छ पानी, भरा हुआ नहीं, ताजी पानी होना चाहिए, स्वच्छ पानी हो चाहिए। दिन में कम से कम 4 से 5 बार अपने दुधारू पशुओं को या जो हमारे पशु हैं जो बड़े पशु हैं डेयरी पशु हैं इनको दिन में 4 से 5 बार पानी ज़रूर पिलाएं, भले ही वो पिए न पिए पर उसको दिखाना जरूर चाहिए। पानी गर्मियों में बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ ये ध्यान रखें पानी तो पिला ही रहे हैं कि सुबह शाम सूर्यास्त सुबह सूरज निकलने पर शाम को सूर्यास्त होने के बाद पशु को ताजी पानी से नहला भी दें।
1: गर्मियों में पशुओं की उचित देखभाल। श्रोताओं, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर एसपी सिंह से जानकारी और इसके साथ ही कृषि समय की कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। श्रोताओं, समय कार्यक्रम विवरण का जानकारी लीजिए हमारे केंद्र से प्रसारित और अनुप्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। सबसे पहले हम आपको जानकारी दे रहे हैं हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। श्रोताओं, आज सुबह 7:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदोस्तान हमारा। फिल्म संगीत सुनिएगा आज सुबह 7:20 पर। आज सुबह 7:45 पर आप सुनेंगे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। आज सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम वतन का राग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से करेंगे। आज सुबह 9 बजे लोक संगीत के कार्यक्रम लोकरंग में आप सुनेंगे गोधनलाल कुशवाहा और कैलाश आदिवासी के गाए कुछ लोकगीत। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे आज सुबह 9:30 पर। आज सुबह 10:05 पर कार्यक्रम होगा सुगम संगीत, इसमें कलाकार होंगे जानी बाबू। और आज सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम फिल्म संगीत। श्रोताओं, आज शाम 7:21 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम चौपाल, इसमें आप सुनेंगे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और बेटा बेटी एक समान, इन दो विषयों पर बातचीत सुनी जा सकती है। आज शाम 7:30 पर आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी, इसमें आज आप सुनेंगे आय का बेहतर स्रोत मधुमक्खी पालन और प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान, इन दो विषयों पर बातचीत के अलावा आज हम आपको सुनवाएंगे एक भेंट वार्ता, विषय होगा गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल। विषय एक बार फिर सुन लीजिए, गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल। इस विषय

0: पर डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता से डॉक्टर समर्थ अग्रवाल की बातचीत। श्रोताओं, ये रूपरेखा हुई हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। कार्यक्रम विवरण संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही पलों में आप संस्कृत में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचिका

0: नवत्यधिकैकशतं धावनाङ्कानेव अवाप्नोत् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक में प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। राष्ट्रपति पुलिस ध्वज देश में किसी पुलिस बल को दिया जाने वाला सर्वोच्च औपचारिक सम्मान है जो उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
1: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में 16 क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर BSF चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि BSF को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। उन्होंने नागरिकों से समाज में प्रेम और सद्भाव को बढ़ावा देने के संकल्प को पूरा करने का आग्रह किया। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में कृषि और संबद्ध क्षेत्रों से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा, राज्यों की भागीदारी, सामूहिक विचार विमर्श और प्रस्तुतियां शामिल होंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने हैदराबाद की एक कंपनी क्वेम्प्ट एडुटेक को परीक्षा मूल्यांकन का कॉन्ट्रैक्ट दिए जाने में किसी भी तरह की गड़बड़ी के आरोपों को खारिज किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में बोर्ड ने इन आरोपों को भ्रामक और निराधार बताया। बोर्ड ने कहा कि कंपनी को अनुबंधित करने में उसने सामान्य वित्तीय नियमों का पूरी तरह से पालन किया है। बोर्ड ने स्पष्ट किया कि बोर्ड परीक्षा 2026 की उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए सरकारी नियमों के अनुसार निविदाएं आमंत्रित की गई थी। IPL क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स आमने सामने होंगे।

0: मैच की विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से मैच खेलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 7:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। श्रोताओं, आज पूरे देश में बकरीद का त्यौहार पूरे प्रेम और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा है। हम बकरीद के अवसर पर बात कर रहे हैं राष्ट्रीय एकता की। ईद उल अजहा, श्रोताओं इसे बकरीद भी कहते हैं, ईद उल जुहा भी कहते हैं, और कुर्बानी की ईदे ईदे कुर्बो अरबी में ईद उल अजहा अथवा ईद उल अदहा, जिसका मतलब है कुर्बानी की ईद। इस्लाम धर्म में विश्वास करने वाले लोगों का एक प्रमुख त्यौहार है और रमजान के प्रति पवित्र महीने की समाप्ति के लगभग 70 दिनों के बाद ये बकरीद का त्यौहार मनाया जाता है। इस्लामिक मान्यता के अनुसार यदि बात करें तो हजरत इब्राहिम अपने पुत्र हजरत इस्माइल को इस दिन खुदा के हुक्म पर खुदा की राह में कुर्बान करने जा रहे थे, तो अल्लाह ने उसके पुत्र को जीवनदान दे दिया, जिसकी याद में यह पर्व मनाया जाता है। अरबी भाषा में बकर का अर्थ है गाय, लेकिन इधर हिंदी उर्दू भाषा के बकरी बकरा से इसका नाम जुड़ा है। अर्थात इधर के देशों में बकरे की कुर्बानी के कारण असल नाम से बिगड़कर आज भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ये बकरा ईद के नाम से ज्यादातर रूप से विख्यात है। ईद कुर्बा का मतलब है बलिदान की भावना। अरबी में कर्ब नजदीकी या बहुत पास रहने को कहते हैं, मतलब इस मौके पर अल्लाह इंसान के बहुत करीब हो जाता है। कुर्बानी उस पशु की जिवह करने को कहते हैं जिसे 10, 11, 12 या 13 जिलहिज कहते हैं हज के महीने को, तो जिलहिज को खुदा को खुश करने के लिए जिबह किया जाता है। और कुरान में लिखा है कि हमने तुम्हें हौज कौसा दिया, तो तुम अपने अल्लाह के लिए नमाज पढ़ो और कुर्बानी करो। बकरा ईद में लोगों को एक बकरे की कुर्बानी दे और एक बकरे का पालन करें। श्रोताओं, इस बकरीद को अलग अलग तरह से अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे हमने आपको बताया कि ईद उल अजहा और ईद अल अधा और ईद उल जुहा। कुर्बानी यानी ईद उल अजहा का त्यौहार हिजरी के आखिरी महीने जुअल हजा के 10वें दिन मनाते हैं। पूरी दुनिया में मुस्लिम लोग इस महीने में मक्का सऊदी अरब में एकत्र होकर हज भी मनाते हैं, और वास्तव में यह हज की एक अंशीय अदायगी और मुस्लिमों के भाव का दिन है। दुनिया भर के मुस्लिमों का एक समूह मक्का में हज करता है, बाकी मुस्लिमों के अंतर्राष्ट्रीय भाव का दिन बन जाता है। ईद उल अजहा का अक्षर से अर्थ है त्याग वाली ईद। इस दिन जानवर की कुर्बानी देना एक प्रकार की प्रतीकात्मक कुर्बानी है। हज और उसके साथ जुड़ी हुई पद्धति हजरत इब्राहिम और उनके परिवार के द्वारा किए गए कार्यों को प्रतीकात्मक तौर पर दोहराने का नाम है। हजरत इब्राहिम के परिवार में उनकी पत्नी हाजरा और पुत्र इस्माइल थे। मान्यता है कि हजरत इब्राहिम ने एक स्वप्न देखा जिसमें वह अपने पुत्र इस्माइल की कुर्बानी दे रहे हैं। हजरत इब्राहिम अपने 10 वर्षीय पुत्र इस्माइल को ईश्वर की राह पर कुर्बान करने निकल पड़े। पुस्तकों में आता है कि ईश्वर ने अपने फरिश्ते को भेजकर इस्माइल की जगह एक जानवर की कुर्बानी करने को कहा। दरअसल इब्राहिम से जो असल कुर्बानी मांगी गई थी वह थी उनकी खुद की, अर्थात ये खुद को भूल जाओ, मतलब अपने सुख आराम को भूलकर खुद को मानवता और इंसानियत की सेवा में पूरी तरह से लगा दो, पूरी तरह से कुर्बान कर दो। तो श्रोताओ, कुछ तीज त्यौहार ऐसे ऐसे होते हैं दुनिया में, हमारे देश में, जो हमें प्रेम का संदेश देते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव को बढ़ाने का संदेश देते हैं।

हैं और यही प्रेम भाव हमें राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने में सबसे बड़ी सहायक की भूमिका निभाता है। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रीय एकता विषय पर लघु वार्ता हिंदुस्तान हमारा। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 7:10 होने को है, कुछ ही पलों में आप प्रादेशिक समाचार

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं प्रगति बैठक में राज्यों को स्वच्छता, सोलर ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बकरीद पर देशवासियों को बधाई दी। वहीं मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड ने नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में पढ़ने की अपील की। त्विशा शर्मा मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द की। और आईपीएल एलिमिनेटर में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंदों में 97 रन की तूफानी पारी खेली। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता करते हुए कई अहम मुद्दों पर राज्यों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ शौचालय बनाने तक ना रहे, बल्कि कचरा प्रसंस्करण और गोबर धन संयंत्रों में भी तेजी लाए। छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि इससे बिजली सस्ती होगी और स्वच्छ ऊर्जा को बल मिलेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि यह त्यौहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में वक्फ बोर्ड ने लोगों से सड़क या सार्वजनिक जगहों पर नमाज ना पढ़ने की अपील की है। बोर्ड का कहना है कि नमाज सिर्फ मस्जिद और ईदगाह में ही पढ़ी जाए। इसके अलावा कुर्बानी भी तय जगहों पर हो और उसके फोटो वीडियो सोशल मीडिया पर ना शेयर करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार ने सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिस पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। डॉक्टर यादव ने बताया कि पिछले एक दशक में राशन कार्ड डिजिटलीकरण, आधार से जोड़ना और ईपीओएस मशीनों जैसे कई अहम सुधार पहले ही किए जा चुके हैं। यह नई योजना उस कड़ी को और आगे बढ़ाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसमें केंद्र, राज्य सरकारें और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार करेंगे। चर्चा का जलवायु के अनुकूल खेती, दलहन तिलहन उत्पादन, प्राकृतिक खेती और डिजिटल कृषि पर जोर रहेगा। भोपाल की त्विशा शर्मा की मृत्यु के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। कोर्ट ने देर रात 17 पन्नों के आदेश में कहा कि मामले की गंभीरता और सबूतों को देखते हुए राहत देना उचित नहीं था। साथ ही निचली अदालत पर भी सवाल उठाए कि उसने केस डायरी और साक्ष्यों की सही जाँच नहीं की। अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है। वही त्विशा के पति समर सिंह पहले से 29 मई तक सीबीआई रिमांड पर है। 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स में त्विशा की संदिग्ध हालत में मौत हुई थी। ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या बता रहा है, जबकि मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के तहत एसआईआर कराने की पूर्ण शक्ति रखता है। न्यायालय ने माना कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव केवल मतदान प्रक्रिया पर नहीं बल्कि मतदाता सूचियों की सटीकता और विश्वसनीयता पर भी निर्भर करते हैं। प्रभारी मंत्री इंदर सिंह परमार कल पन्ना जिले के बहिरपुरवा गांव पहुंचे और कुआं धसकने से जान गंवाने वाले 5 मजदूरों के परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने शोक में डूबे परिवारों को ढाढ़स बंधाया और कहा कि ये मजदूर अपने घर परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे और यह हादसा

0: बेहद दर्दनाक है। उन्होंने कहा कि बच्चों की पढ़ाई से लेकर सरकारी योजनाओं का लाभ भी पीड़ित परिवारों को दिलाया जाएगा। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर एआईआर न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। आगामी एपिसोड के लिए सुझाव 29 मई तक स्वीकार किए जाएंगे। सांची स्तूप में रखे भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और महामोदगल्यायन के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। आज ये अवशेष भोपाल से दिल्ली रवाना होंगे, जहां 29 मई को राष्ट्रीय संग्रहालय में लोग इनके दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। वहां की राजधानी उलान बतौर में 31 मई से आम लोगों के दर्शन के लिए अवशेषों को रखा जाएगा। यहाँ करीब 10 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। प्रदेश सरकार ने बाल विवाह रोकने के लिए जिले से लेकर गांव तक के अधिकारियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी बना दिया है। अब कलेक्टर से लेकर पटवारी तक हर स्तर पर कोई न कोई अधिकारी सीधे जिम्मेदार होगा। शहरी इलाकों में नगर निगम के जोनल और स्वास्थ्य अधिकारियों को भी यह जिम्मा सौंपा गया है। साल 2025 में प्रदेश में बाल विवाह के 538 मामले दर्ज किए गए थे। प्रदेश में स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारी है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने कल समीक्षा बैठक में बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के अधिकार हेतु देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। संभागायुक्त आशीष सिंह ने सभी विभागों को 7 दिन में पौधारोपण की प्लानिंग करने के निर्देश दिए हैं। नई सड़कों, पंचक्रोशी मार्ग और शिप्रा नदी के नए घाटों के किनारे अमलताज, गुलमोहर और पलाश जैसे गर्मियों में खिलने वाले फूलदार पौधे लगाए जाएंगे। कुल मिलाकर 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। IPL एनिमेटर में कल रात राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराकर अगले दौर में जगह बना ली। मैच के सबसे बड़े हीरो वैभव सूर्यवंशी रहे, जिन्होंने सिर्फ 29 गेंदों में 97 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द मैच बने। वहीं आज राजस्थान का मुकाबला गुजरात टाइटन से होगा और जीतने वाली टीम रविवार को अहमदाबाद में RCB से फाइनल खेलेगी। अब बात मौसम की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बढ़ती गर्मी को देखते हुए प्रदेशवासियों से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने की अपील की है। उन्होंने लोगों से हाइड्रेटेड रहने और घर से निकलते वक्त पानी की बोतल साथ रखने को कहा है। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं, आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर के खजुराहो और नौगांव में 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। कल दोनों जगहों पर पारा 46.6 डिग्री रहा। आज यहां तीव्र लू का रेड अलर्ट है। हालांकि राहत की बात यह है कि कल से 31 मई तक पश्चिमी विक्षोभ के चलते कई जिलों में बारिश होने की संभावना है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। बैतूल में बारातियों से भरी पिकअप पलटने से एक महिला और 8 साल के मासूम बच्चे की मौत हो गई, जबकि एक दर्जन लोग घायल हो गए। रतलाम जिले के आलोट के पास चलती कार में अचानक आग लग जाने से एक व्यक्ति झुलस गया, जबकि चालक और एक अन्य सवार ने कूदकर जान बचाई। खंडवा जिला चिकित्सालय में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। नर्मदापुरम कलेक्टर ने CM हेल्पलाइन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले जिला अधिकारियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। देवास की शाही ईदगाह में सुबह 9:30 बजे ईद की नमाज अदा की जाएगी। शहर काजी ने समाज से कुर्बानी का हिस्सा गरीबों और जरूरतमंदों तक पहुँचाने की अपील की है। खरगोन जिला सहकारी बैंक की ठिपगांव शाखा में 41 लाख से अधिक के गबन पर 3 कर्मचारी निलंबित। शिवपुरी कलेक्टर ने दुकानों, ढाबों और कारखानों में बाल श्रम रोकने के लिए अधिकारियों को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। आगरमालवा में पेयजल और हैंडपंप शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम शुरू। कट्टी में प्रेमनगर बस्ती के आवासों पर बने 8 अनधिकृत कब्जे जिला प्रशासन ने हटाए। राजगढ़ में जल संचयन जन भागीदारी अभियान के तहत तकनीकी मार्गदर्शन कार्यशाला आयोजित। और शहडोल में साल खरीफ धान बोनी का लक्ष्य 3000 हेक्टेयर से बढ़ाकर 1,50,000 हेक्टेयर किया गया।

हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 7:20 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं इस गीत से, लीजिए सुनिए।

रफी साहब को अभी आप सुन रहे थे, फिल्म थी लैला मजनू। गीत साहिल लुधियानवी का था। और श्रोताओं, आपको बताएं कि इस गीत का मूल संगीत तैयार किया था मदन मोहन साहब ने, जिसका बाद में संपूर्णता की जयदेव साहब ने। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। मेरे हमदम मेरे दोस्त, इस फिल्म में हम आपको सुनवा रहे हैं लता जी और साथियों की गाई ये कव्वाली। लीजिए सुनिए।

0: लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में लता जी और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसे लिखा था मजरूह साहब ने। फिल्म का नाम था मेरे हमदम मेरे दोस्त। श्रोताओं, फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
4: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
4: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
1: अरे
4: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
4: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
4: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, अब हम आपको सुनवा रहे हैं बरसात की रात। इस फिल्म में रफी साहब के साथ आशा जी, सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे साहब, बातिश और साथियों की आवाज में ये कव्वाली। कव्वाली को लिखा है साहिर लुधियानवी साहब ने और रोशन साहब का संगीत है, यानी कि इस कव्वाली को कंपोज किया है रोशन साहब ने। लीजिए।

बरसात की रात, श्रोता, इस फिल्म की ये खूबसूरत और अद्वितीय कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। रफी साहब के साथ आशा जी, सुधा मल्होत्रा, मन्ना डे, वातिश और साथियों की आवाज़ में गीत साहिर लुधियानवी का था और संगीत रोशन साहब ने इसे कंपोज किया था। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के ठीक 7:45 हुए हैं। लीजिए सुनिए आकाशवाणी शिवपुरी का विशेष सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार

नमस्कार शिवपुरी कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और श्रोताओं, आज अगर हम सबसे पहले बात करें अपने देश की राष्ट्रीय एकता की, और राष्ट्रीय एकता में भी बात कर रहे हैं आज जो हमारे मुस्लिम भाइयों का एक विशेष त्यौहार है ईद उल जुहा, जिसे हम बकरीद के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमारे सभी श्रोताओं को बकरीद की हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं और बहुत सारी मुबारकबाद कि ये जो त्यौहार है ये हमें बताता है कि हम जब अल्लाह की इबादत करते हैं तो उस इबादत में जो त्याग होता है, जो सेवा होती है, और त्याग को यदि हम अपने समर्पण भाव से प्रतिबिंबित करें तो हम कह सकते हैं कि धर्म हमें जो है एक ऐसी नेक राह पर चलने के लिए आहूत करता है, एक ऐसी नेक राह पर चलने के लिए हमें मजबूर करता है कि हम आपस में अपने सारे लोगों को एकजुट होकर हम इस देश के लिए, अपने राष्ट्र हित के लिए हम एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव से एक दूसरे को प्रेम और स्नेह के साथ, सेवा और भावना के साथ हम अपने देश हित में कार्य करें। तो श्रोताओं, जो तीज त्यौहार होते हैं ये हमें याद दिलाते हैं इन सब बातों की, इन सब विशेषताओं की कि हमें अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए करना क्या चाहिए, और इसलिए ये तीज त्यौहार मनाए जाते हैं। तो सभी श्रोताओं को इस समय जो मुझे सुन रहे हैं, सभी श्रोताओं को बहुत सारी मुबारकबाद, हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं कि वे अपने विचारों से अपने आप को आगे लाएं, अपने आसपास के लोगों को एकजुट करें और हम एक दूसरे के साथ प्रेम भाव बनाए रखें। यही हमारे देश की जो सबसे बड़ी विलक्षण जो विशेषता है वो यही है कि हम अनेकता में एकता को विधिवत रूप से संपन्न करते हैं, साकार करते हैं, ये बताने का पूरी दुनिया को प्रयास करते हैं कि हम सब एक हैं। श्रोताओं, बातें तो हम अपने कार्यक्रमों में आपसे बहुत सारी करते हैं, लेकिन इस समय तेज गर्मी ने जो प्रकोप पूरे देश के ऊपर डाल रखा है, गर्मी का प्रकोप, और इस समय जो नौतपे चल रहे हैं, नौतपे का आज चौथा दिन है, तीन दिन में, और उससे पहले अगर हम बात करें और उसमें भी हम बात करें कि इस गर्मी के मौसम में लू अपने वर्चस्व को बनाए रखे हुए है। श्रोताओं, चिकित्सकों ने आम रूप से एक सलाह दी है सभी लोगों को और कहा है कि दिन में 12 बजे से शाम 4 बजे तक वो घर से बाहर ना निकले। घर से बाहर निकले हैं तो जिस स्थान पर है उस स्थान पर वहीं पर रहें, वहीं से ही अपना कार्य संचालित करें, जहां तक संभव हो वहां तक धूप में ना निकले। लू से बचाव के लिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि आप पानी पीने का विशेष ध्यान रखें, अपने आप को, शरीर को डिहाइड्रेट ना होने दें। और इसके लिए श्रोताओं, इस समय बहुत सारे पेय पदार्थ उपलब्ध हैं, नींबू का रस है, शिकंजी है, गन्ने का रस है, और इसके अलावा आप अपने आप को सुरक्षित करने के लिए आप अपने कानों को, अपने सिर को किसी अच्छे सूती कपड़े से, या जो इस समय जो अंगोछे आ रहे हैं जिसे हम सामान्य लैंग्वेज में बोलते हैं अंगोछा, ये आप

अपने सिर को बांध लीजिए और अपने शरीर को ढककर हल्के कपड़े, हल्के वस्त्र पहनिए। जहां तक संभव हो वहां तक सफेद रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल कीजिए। बहुत ज्यादा डार्क कलर मत पहनिएगा क्योंकि ये आपको तकलीफ दे सकते हैं। और इस समय इस जो चाय और कॉफ़ी जैसी चीज़ें हैं वो उनका सेवन ना करें। और बेहतर होगा कि आप यदि किसी भी तरह की आपको तकलीफ होती है, परेशानी होती है, तो तुरंत अपनी प्राथमिक चिकित्सा करें। प्राथमिक चिकित्सक के रूप में आप तुरंत हॉस्पिटल में या फिर अपने किसी पारिवारिक डॉक्टर से संपर्क करें और उनसे पूछें कि हमें क्या करना चाहिए। वैसे श्रोताओं, लू से बचाव के लिए एक बहुत प्राकृतिक उपाय है कि हम कैरी का पन्हा, इसे कहते हैं कैरी का पन्हा, कैरी के पन्हे का इस्तेमाल करें। और ये कैरी का पन्हा आपको धूप में और इस जो प्रचंड गर्मी है इसमें आपको बहुत ज्यादा ठंडाई देगा। शरीर को ठंडा रखने का एक यंत्र कह सकते हैं इसे, कैरी का पन्हा। तो ये सब करके आप जो है अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं और लू से बच सकते हैं। श्रोताओं, हम अपने पिछले एपिसोड में बहुत सारी आपको जानकारी दे रहे हैं और विशेषकर आपको जानकारी दे रहे हैं कि इस समय मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक माननीय श्री ऋषि गर्ग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, तो ऋषि गर्ग साहब की मंशा के अनुरूप, या हम कहें कि माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री डॉक्टर मोहन यादव और अपने राज्य के ऊर्जा मंत्री माननीय श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के निर्देशन में मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड के प्रबंध संचालक माननीय श्री ऋषि गर्ग, जो कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं, और उनकी मंशा के अनुरूप एक खाका तैयार किया गया कि कैसे कंपनी अपने विद्युत उपभोक्ताओं के समक्ष पहुंचे। उसके लिए संपर्क अभियान 2026 की शुरुआत की गई है। और श्रोताओं, यह संपर्क अभियान 14 मई 2026 से लगातार जारी है। इसमें मैं आपको बताऊं कि बहुत से लोगों ने प्रश्न किए कि यह संपर्क अभियान में हम क्या लाभ उठा सकते हैं। तो श्रोताओं, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि बिल सुधार से संबंधित यदि कोई गलत बिल, अधिक बिल या डुप्लीकेट बिल, या जहां तक संभव हो वहां तक बिल से संबंधित यदि कोई मामला है, बिल सुधार से संबंधित मामला है, तो आप सीधे इस संपर्क अभियान के तहत आप अपने विद्युत वितरण केंद्र के प्रभारी अधिकारी से सीधे संपर्क कीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए और उसको उसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जरूर लगाइएगा कि मेरे बिल में या मुझे विद्युत से संबंधित इस समस्या का समाधान करवाना है या मैं इस समस्या से पीड़ित हूं और त्वरित मुझे इस समस्या से समाधान दिलाने का प्रयास कीजिए। यदि भुगतान में कोई समस्या है तो बात कीजिए, नए कनेक्शन में अगर आपको कोई समस्या है तो बात कीजिएगा, लोड परिवर्तन, नाम परिवर्तन, ईकेवाईसी और एनओसी से संबंधित भी अगर कोई समस्या है तो भी आप संपर्क अभियान के तहत अपने विद्युत वितरण केंद्र के प्रभारी से बात कर सकते हैं। श्रोताओं, अभी मैं आपको इस पूरी अधोसंरचना को भी बताऊंगा और मीटर से संबंधित कोई समस्या है, सर्विस केबल की समस्या है, डीटीआर से संबंधित कोई समस्या है, या आपको किसी अन्य योजना से संबंधित भी कोई बात करनी है, तो आप विद्युत वितरण केंद्र प्रभारी से सीधे आप संपर्क अभियान के तहत लिखित आवेदन देकर बात कर सकते हैं। श्रोताओं, अब मैं आपको बताता हूं कि ये शिवपुरी जिला एक शिवपुरी वृत्त के अंतर्गत कार्य करता है। शिवपुरी वृत्त के अगर हम कहें कि इस समय मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड शिवपुरी जिले के सबसे बड़े अधिकारी, जिनका पद नाम है महाप्रबंधक संचालन संधारण शिवपुरी व्रत, जो इस समय पदस्थ हैं वो है श्री माननीय श्री दिनेश सुखीजा साहब। उनका कार्यालय बानगंगा पर स्थित है, लेकिन उन तक पहुंचने के पहले बहुत सारे स्तर ऐसे हैं जहां आप बात कर सकते हैं। मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप वितरण केंद्र स्तर पर बात कीजिए, वितरण केंद्र प्रभारी से बात कीजिए। जैसे मैं

0: आपसे बात करूं कि शुपरी व्रत को जो अलग अलग संचालन संधारण संभागों में बांटा गया है, तो शुपरी व्रत में तीन संचालन संधारण संभाग है। एक है शुपरी प्रथम, दूसरा है शुपरी द्वितीय और तीसरा है पिछोर संभाग। अब मैं शुपरी प्रथम की बात करूं तो शुपरी प्रथम में पूरा शुपरी शहर है, इसके अलावा पोहरी उसके अंतर्गत आता है और इधर सतनवाड़ा और सुभाषपुरा वाला क्षेत्र शुपरी प्रथम में आता है। शुपरी द्वितीय की बात करूं तो शुपरी द्वितीय में पूरा कोलारस उप संभाग, कोलारस में कोलारस, भदरवास, रन्नौत और खतौरा ये वितरण केंद्र आते हैं। और यदि हम बात करें करेरा उप संभाग की तो करेरा में दिनारा, नरवर, मगरोनी ये और खैराघाट ये सारे वितरण केंद्र करेरा क्षेत्र में आते हैं। और जबकि हम बात करें पिछोर की तो पिछोर में जो है आपको बता दूं कि पिछोर में खनियादाना, खोड़ और ये सभी वितरण केंद्र पिछोर संभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जिस वितरण केंद्र से संबंधित बात है वहां के वितरण केंद्र के प्रभारी से आप संपर्क कीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए। वितरण केंद्र प्रभारी से यदि मामला नहीं निपटता है तो उस केंद्र के सहायक यंत्री यानी कि प्रबंधक से आप संपर्क कीजिए कि मैंने ऐसा ऐसा आवेदन आपके सहायक प्रबंधक को दिया था, उस आवेदन पर आज दिनांक तक या इतने दिनों के बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उसके बाद आप जो है संभाग स्तर पर अपने उप महाप्रबंधक संचालन संधारण संभाग प्रथम, संभाग द्वितीय और पिछोर संभाग से बात कर सकते हैं, उप महाप्रबंधक महोदय से, कि हमने ये आवेदन आपके सहायक प्रबंधक को दिया था, फिर प्रबंधक को दिया था, अब आपके समक्ष उपस्थित है, आप हमारे प्रकरण का निपटारा कर दीजिए। यदि वहां पर भी आपको आपके प्रकरण का निपटारा नहीं होता है तो आप महाप्रबंधक शुपरी व्रत संचालन संधारण से सीधे संपर्क कीजिएगा और उन सभी आवेदनों के सभी डॉक्यूमेंट्स की एक छाया प्रति ले जाइएगा, सब आवेदन बताइएगा और फिर उनसे आप निवेदन कीजिएगा। संभवतः विद्युत मंडल, विद्युत कंपनी आपके समस्याओं के निराकरण के लिए, त्वरित समाधान के लिए संपर्क अभियान के तहत आपके समक्ष हाजिर है। श्रोताओं, अब आपको बताऊं मैं कि कंपनी ने इनको पहले क्लस्टर वाइज डिवाइड किया और क्लस्टर वाइज डिवाइड करने के बाद इनको रेड जोन और ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में तब्दील किया। तो मैं आज रेड जोन की बात कर रहा हूं। ओएंडम सर्किल शुपरी प्रथम में जो रेड जोन है उसमें आपको बता दूं कि पोहरी फर्स्ट में झिरी, देवरी खुर्द और उपसिल और बहसिल ये गांव आते हैं और ये सारे गांव जो है रेड जोन में है, यानी कि यहां पर जो बकायादारों की राशि है वो अत्यधिक है। और इसी तरह शुपरी फर्स्ट में रेड जोन में शुपरी अर्बन भी आता है, उसमें वार्ड नंबर 36, वार्ड नंबर 32, वार्ड नंबर 3 ये और वार्ड नंबर 34 ये रेड जोन में है। इसी तरह शुपरी फर्स्ट में शुपरी के वेस्ट जोन रेड जोन में है, इसमें वार्ड नंबर 7, वार्ड नंबर 10, वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 14 ये इस तरह से हुआ। इसी तरह शुपरी सेकंड में मैं आपको बता दूं कि भदरवास रेड जोन में है और भदरवास के पिपरोदा और अटलपुर, लुकवासा और एनवारा ये विद्युत बकायादारों की श्रेणी में है। दिनारा भी रेड जोन में है, इसमें थनरा, बहादुरपुर और खुटिया मर्ग ये उस रेड जोन में है। और इसी तरह करेरा अर्बन में रेड जोन में चिनोद, टीला और वार्ड नंबर 1। अगर हम खतौरा की बात करें तो खतौरा ग्रीन जोन में है। रामगढ़ और सिरनोदा में अगर किसी को समस्या है तो वो भी जाके बात कर सकता है। और श्रोताओं, शुपरी सेकंड में मगरोनी में रेड जोन में है ख्याबदा, देहरदी खुर्द और खैरुआ। रन्नौद के लिए अच्छी खबर है कि वह ग्रीन जोन में है। श्रोताओं, अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप सीधे महाप्रबंधक शुपरी व्रत से संपर्क कर सकते हैं। इन सभी सूचनाओं के साथ अब अपने रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव को कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। नमस्कार।
1: नमस्कार शिवपुरी।
0: अभी आप सुन रहे थे सूचना परक दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी। सुबह के 8 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे।
2: रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? 0। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।

0: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के दूसरे चरण को प्रभावी ढंग से लागू करने पर बल दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये अभियान केवल बुनियादी ढांचे के निर्माण तक सीमित न रहे, बल्कि नियमित निगरानी, जनभागीदारी और विभिन्न पक्षों के समन्वय से ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जाएं। श्री मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। प्रधानमंत्री ने राज्यों से कचरा प्रसंस्करण और गोबरधन संयंत्रों सहित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में रेलवे, बिजली और सड़क क्षेत्रों की लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरी क्षेत्रों, आवासीय परिसर और सार्वजनिक संस्थानों में छतों पर सोलर पैनल लगाने को बढ़ावा देने पर बल दिया। सड़क और बंदरगाह संपर्क परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान प्रधानमंत्री ने वाधवन बंदरगाह को आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित करने पर जोर दिया। केन बेतवा नदी अंतर संबंध परियोजना की समीक्षा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि केन बेतवा परियोजना अन्य राज्यों के लिए अंतर्राज्य जल विवादों के समाधान का आदर्श मॉडल है। श्री मोदी ने सहयोग, समय पर मंजूरी, प्रौद्योगिकी आधारित निगरानी और मिशन आधारित कार्यान्वयन के माध्यम से अंतरराज्य जल समस्याओं के समाधान पर बल दिया। राज्यों को ऐसे ही अवसरों की पहचान करने के लिए प्रोत्साहित किया गया जहां नदी अंतर संबंध, जल संरक्षण, भूजल पुनर्भरण और कुशल सिंचाई को एकीकृत तरीके से अपनाया जा सके। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के दायरे में किसी भी अवैध निर्माण को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि गृह मंत्री ने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं।
4: राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा समीक्षा बैठक में गृह मंत्री ने भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। गृह मंत्रालय ने जिलाधिकारियों को ये सुनिश्चित करने को कहा है कि सीमावर्ती इलाकों में बैंकिंग लेन देन पूरी तरह कानूनी नियमों के अनुसार हों, बड़े व्यापारिक संस्थानों की जाँच और उनके आय के स्रोत की भी पड़ताल करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री शाह ने हर सीमावर्ती जिले के लिए मजबूत सुरक्षा व्यवस्था बनाने पर जोर दिया। गृह मंत्री ने साइबर अपराध रोकने के लिए 1930 हेल्पलाइन का प्रभावी इस्तेमाल करने पर भी जोर दिया। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर हैं। श्री शाह इस दौरान अहमदाबाद और गांधीनगर जिलों में सार्वजनिक उपयोगिता, शिक्षा और ग्रामीण क्षेत्रों की आधारभूत सुविधाओं की लगभग 12 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे।
5: गांधीनगर के कलोल तालुका से अपने कार्यक्रमों की शुरुआत करते हुए गृह मंत्री कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR पहल के तहत विकसित की गई जन सुविधाओं का लोकार्पण करेंगे, जिनमें जेड़वा गांव की झील, 3 नवनिर्मित पुस्तकालय और नए प्राथमिक स्कूल भवन जैसे प्रोजेक्ट शामिल है। शाम को श्री शाह अहमदाबाद शहर में सोला क्षेत्र में आए माता उमियाधान परिसर में नवनिर्मित हॉस्टल भवन का और भीमजीपुरा में भारत माता स्क्वायर का उद्घाटन करेंगे। शाम को गृह मंत्री शाहीबाग सर्किट हाउस में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें आगामी ओलंपिक, राष्ट्रमंडल और वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स की तैयारियों और बुनियादी ढांचे की समीक्षा की जाएगी। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन परिवहन और प्रबंधन सहायता योजना सार्थक पीडीएस को जारी रखने की अनुमति दे दी है। इसके लिए केंद्र सरकार ने 25,530 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आधुनिक बनाने में सहयोग करेगी।
6: इस प्रोग्राम में तीन बड़े सुधार अप्रूव हुए हैं। सबसे पहला, जो सरकारों के एजेंसीज राज्य में एफसीआई का बड़ा गोडाउन होता है, वहां से डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डिविजन्स में फेयर प्राइस शॉप तक पहुंचाने का जो कॉस्ट होती है, उस कॉस्ट को सपोर्ट करेंगे। दूसरा, फेयर प्राइस शॉप्स है उनमें डीलर्स का रिम्यूनरेशन रखा गया था, उसको बढ़ाने की जरूरत थी, तो वो भी फैसला लिया गया। और तीसरा फैसला, टेक्नोलॉजी का यूज करके पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को हम कैसे मॉडर्नाइज कर सकते हैं।
2: पश्चिम बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर बीएसएफ चौकियों और कटीले तार की बाड़ लगाने के लिए करीब 143 एकड़ भूमि बीएसएफ को सौंप दी है। मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया पोस्ट में ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा मजबूत करने के लिए ये कदम उठाया गया है। राज्य सरकार ने पहले चरण में कई जिलों में भूमि हस्तांतरित की है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ 2,217 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है, जिसमें से लगभग 1,600 किलोमीटर क्षेत्र में अब तक बाड़ लगाई जा चुकी है। भारत ने कांगो में इबोला के प्रकोप को नियंत्रित करने के प्रयासों में सहयोग के लिए आपातकालीन चिकित्सा सहायता भेजी है। इथियोपिया स्थित अफ्रीका रोग नियंत्रण केंद्र ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि भारत से भेजी गई आपातकालीन दवाएं युगांडा में पूर्वी अफ्रीका क्षेत्रीय समन्वय केंद्र को प्राप्त हुई है। इसमें आवश्यक निदान, उपचार, संक्रमण रोकथाम और नियंत्रण सामग्री शामिल है। इसे कांगो के प्रभावित समुदायों तक पहुँचाया जाएगा।
4: अफ्रीका रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र ने कांगो के बुंडी बुगियो इबोला प्रकोप से निपटने के लिए भारत सरकार और भारत के लोगों द्वारा भेजी गई आपातकालीन चिकित्सा सहायता का स्वागत किया है। बुंडी बुगियो स्ट्रेन इबोला वायरस की 6 ज्ञात प्रजातियों में से एक है। वर्ष 2007 में युगांडा में पहली बार इसकी पहचान होने के बाद से अफ्रीका के कुछ हिस्सों में समय समय पर इसका प्रकोप होता रहा है। इबोला संक्रमित शारीरिक तरल पदार्थों, दूषित पदार्थों या संक्रमित जानवरों के सीधे संपर्क से फैलता है। इसके लक्षणों में बुखार और गंभीर मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्त स्राव शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
2: मध्य और उत्तर पश्चिमी भारत में अगले दो दिन तक भीषण लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज लू के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू चलने की आशंका है। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने 46 जिलों में लू और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है।
7: मध्य प्रदेश में इस बार नौतपा में सिर्फ तेज धूप नहीं बल्कि आंधी और बारिश का दौर भी साथ चल रहा है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव में आज भी तेज लू का रेड अलर्ट है। ये दोनों शहर 18 मई से लगातार प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक 29 मई से मौसम करवट लेना शुरू करेगा। पश्चिमी विक्षोभ के असर से 31 मई तक कई जिलों में बारिश होने का अनुमान है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
2: ईद उल अजहा आज देश के विभिन्न हिस्सों में पूरे धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाई जा रही है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। श्रद्धालु ईदगाहों और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा कर रहे हैं। ईद उल अजहा पैगंबर इब्राहिम द्वारा ईश्वर के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की इच्छा को याद करने के लिए मनाया जाता है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उत्तर प्रदेश में प्रशासन ने बकरीद के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक व्यवस्था की है।
8: सुबह से ही मस्जिदों के आसपास चहल पहल है और लोग तैयार होकर बकरीद की खास नमाज के लिए मस्जिदों में पहुंच रहे हैं। नमाज के बाद कुर्बानी की रस्म अदा की जाएगी। राज्य सरकार ने पहले ही सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को निर्देश जारी करके ये सुनिश्चित करने को कहा है कि कोई नई परंपरा शुरू न हो और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी न दी जाए। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्णा के निर्देशों के बाद पुलिस ने कल संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च किया। कानपुर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ और मऊ जैसे शहरों के संवेदनशील इलाकों में पुलिस खास एहतियात बरत रही है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को ईद उल अजहा की बधाई दी है। राष्ट्रपति ने कहा कि ये त्योहार

0: भक्ति, त्याग और निस्वार्थ भावना का प्रतीक है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज स्वातंत्र वीर विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के निडर योद्धा वीर सावरकर ने अपना पूरा जीवन मातृभूमि की सेवा में समर्पित कर दिया। उन्होंने कहा कि वीर सावरकर के जीवन और लेखन से हमें राष्ट्र और विचारधारा के प्रति अटूट निष्ठा का सही अर्थ समझ में आता है। श्री शाह ने कहा कि वीर सावरकर का ये कथन, हे मातृभूमि, तुम्हारे बिना जीवन मृत्यु के समान है, राष्ट्र के प्रति उनके असीम प्रेम को दर्शाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज गंगटोक के पालजोर स्टेडियम में सिक्किम पुलिस को प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित करेंगी। इस सम्मान को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां और पूर्वोत्तर क्षेत्र का 3रा राज्य होगा। आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हरा दिया। राजस्थान रॉयल्स ने निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट पर 243 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद 196 रन ही बना सकी। राजस्थान के लिए वैभव सूर्यवंशी ने 29 गेंद में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। कल क्वालिफायर 2 में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। विजेता टीम फाइनल में रॉयल चैलेंज बेंगलुरु से खेलेगी। फाइनल रविवार को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद जागृति। ऐसा यार पर उच्चतम न्यायालय का फैसला हिंदुस्तान सहित कई अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। फैसला शीर्षक से पत्र ने लिखा है, ऐसा यार पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, कहा मतदाता सूची का पुनरीक्षण आयोग का अधिकार, प्रक्रिया में खामी नहीं। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, सुप्रीम कोर्ट की कसौटी पर खरा उतरा ऐसा यार। पंजाब केसरी ने लिखा है, शीर्ष न्यायालय के अनुसार नागरिकता की भी जाँच कर सकता है चुनाव आयोग। वीर अर्जुन ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान को प्रमुखता दी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में कॉपियों की स्क्रीनिंग से जुड़े मामले पर खबर दी है। ऑन स्क्रीन मार्किंग का काम ब्लैक लिस्टिंग कंपनी को, सीबीएसई ने कहा ये झूठ। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, घरेलू उड़ानों में 22% कटौती करेगी एयर इंडिया। एयरलाइन ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में 27% कमी की घोषणा के 2 सप्ताह बाद ये फैसला किया है। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर लिखा है, कठोर कार्रवाई जरूरी। पत्र ने लिखा है, दिल्ली उच्च न्यायालय ने ओजोन यानी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण पर चिंता जताते हुए जिम्मेदार अभियंताओं के विरुद्ध कार्रवाई के संकेत दिए हैं। ओजोन में अतिक्रमण से नदी का प्राकृतिक प्रवाह बाधित हो रहा है, जिससे मानसून में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। देशबंधु ने ईरानी मीडिया के दावे को प्रथम पृष्ठ पर दिया है, अमेरिका ईरानी क्षेत्र से हटाएगा सेना, खुलेगा होर्मुज, संभावित समझौते पर ड्राफ्ट तैयार कर दिया गया है। राजस्थान पत्रिका ने बिहार में एक अनोखी पहल को प्रकाशित किया है, अब ऑन ड्यूटी सब परिवार घूमने जाएंगे सरकारी बाबू। हर 3 महीने में सरकारी कर्मचारी मनाएंगे टूरिस्ट हॉलिडे, सैलरी भी मिलेगी। सरकार का तर्क है कि इससे इको टूरिज्म, ग्रामीण पर्यटन और होम स्टे को बढ़ावा मिलेगा। अमर उजाला ने मौसम को अहमियत दी है, नौतपा में तप रहा उत्तर भारत, कल से राहत मिलने की उम्मीद।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में 51वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। लगभग 30,000 करोड़ रुपए लागत वाली 7 महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं की समीक्षा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के 15 किलोमीटर के दायरे में सभी अवैध ढांचे ढहाने को कहा। मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में अगले 2 दिन तक लू की स्थिति जारी रहेगी। ईद उल अजहा आज देश भर में धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। और आईपीएल क्रिकेट के एलिमिनेटर मैच में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स

0: वतन का राग कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है महादेव विनायक रानाडे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, हरियाणा से हरस्वरूप और दमोह से हर्षिता। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

क्रांति पथ पर चलते हुए सौगंध आजादी की खाई थी, जंजीरों से थे बंधे वो तन, पर रूह नहीं झुक पाई थी। इस पार खड़े थे पहरेदार, उस पार स्वाधीन सवेरा था, वो वीर वहां भी हंसते थे जहां घोर काल का डेरा था। भारतीय स्वाधीनता संग्राम के इतिहास में अनगिनत देशभक्तों ने जेल यातनाएं सही, लेकिन अंडमान की सेलुलर जेल में कैद क्रांतिकारियों का जीवन अत्यंत कठिन था। सेलुलर जेल, जिसे क्रांतिकारियों द्वारा वैली ऑफ डेथ माना जाता था, इसका निर्माण ही क्रांतिकारियों की इच्छा शक्ति को तोड़ने के लिए किया गया था। इसी जेल में बलिदान होने वाले महान क्रांतिकारी थे मोहन किशोर नामदास। वो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के उन बिरले योद्धाओं में से एक थे जिन्होंने अपनी शहादत से मौत को भी छोटा साबित कर दिया था। सेलुलर जेल की दीवारों ने भले ही उनके शरीर को कैद किया हो, लेकिन उनके संकल्प ने उस काल कोठरी में कैद क्रांतिकारियों के जीवन को उनकी शहादत के बाद बदल कर रख दिया। उनकी जीवन यात्रा पराधीन भारत के उस क्रोध की यात्रा है जिसने अंततः 1947 के सूर्योदय का मार्ग प्रशस्त किया। मोहन किशोर नामदास का जन्म अविभाजित बंगाल के मैमनसिंह जिले के बाजितपुर क्षेत्र में हुआ था। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक में ये क्षेत्र क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र बन चुका था। बंग भंग आंदोलन से आरंभ हुए आक्रोश ने यहाँ के युवाओं के मन में तीव्र राष्ट्रवादी भावना का संचार किया था। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की रचनाओं, विशेष रूप से आनंद मठ और उसके कालजयी गीत वंदे मातरम ने इस पूरे क्षेत्र को जागृत कर दिया था। इस वातावरण ने मोहन किशोर नामदास को गढ़ने का काम किया। उनके भीतर स्वाधीनता, स्वदेश और स्वराज की भावना अत्यंत प्रबल होने लगी। भारत भूमि से उन्हें अगाध प्रेम था और अपनी इसी जन्मभूमि की मिट्टी को माथे से लगाकर उन्होंने क्रांतिकारी जीवन में प्रवेश किया।

उस समय बंगाल में दो प्रमुख क्रांतिकारी संगठन सक्रिय थे, जुगांतर और अनुशीलन समिति। मोहन किशोर नामदास ने अपने क्रांतिकारी जीवन की शुरुआत अनुशीलन समिति की कोलकाता शाखा के साथ की। अनुशीलन समिति मात्र एक राजनीतिक या सामाजिक संगठन नहीं था, बल्कि ये युवाओं के लिए एक शारीरिक, मानसिक और नैतिक प्रशिक्षण का केंद्र था। यहाँ केवल व्यायाम नहीं सिखाया जाता था, जैसा कि प्रचारित था कि ये एक व्यायामशाला है, बल्कि इससे बहुत आगे जाकर इसके वृहत्तर उद्देश्य थे। यहाँ युवाओं को शक्ति की उपासना और मातृभूमि की सेवा के लिए तैयार किया जाता था। अनुशीलन समिति की स्थापना सन 1902 में हुई थी। व्यायाम और साहस इसकी मूल भावना थी। संगठन का मानना था कि ब्रिटिश सत्ता को केवल याचिकाओं या संवैधानिक दायरे में रहते हुए नहीं हटाया जा सकता है, बल्कि इसके लिए सशस्त्र विद्रोह अनिवार्य है। इसके कई अखाड़े थे जहां लाठी चलाना सिखाया जाता था, तलवारबाजी और मुक्केबाजी सिखाई जाती थी। इसके सदस्यों को क्रांतिकारी साहित्य दिया जाता ताकि उसे पढ़कर वो भारत की आज़ादी में अपना योगदान देने के लिए मानसिक तौर पर तैयार हों। अपना अधिकार मांगने की बजाय उसे छीन लेने में इस संगठन का विश्वास था। इसके सदस्यों को गीता पर हाथ रखकर देवी दुर्गा की प्रतिमा के सामने निष्ठा की शपथ लेनी पड़ती थी। मोहन किशोर नामदास ने इसी संगठन के कठोर अनुशासन में अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उनके लिए ये संगठन एक ऐसे विश्वविद्यालय की तरह था जिसने उन्हें औपनिवेशिक दास्ता की बीड़ियों को तोड़ने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। इस तरह उनके जीवन को एक दिशा मिली, एक अटल लक्ष्य जिसके लिए जीने और मरने का उन्होंने संकल्प लिया। 1930 का दशक आते आते क्रांतिकारियों ने अपनी रणनीति में परिवर्तन किया। अब तक वो अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों से बदला ले रहे थे, उनकी हत्या कर रहे थे, लेकिन अब हथियार जुटाने के लिए धन की व्यवस्था वो डकैती से करने लगे। ब्रिटिश दस्तावेजों में उनकी इस कार्रवाई को डकैती कहा गया, जबकि क्रांतिकारी इसे स्वदेशी डाका या राजनीतिक कार्रवाई कहा करते थे। मोहन किशोर नामदास इसी रणनीति में सघन रूप से सक्रिय थे। सन 1932 में क्रांतिकारियों ने धन और हथियार जुटाने के लिए एक डकैती की योजना बनाई। क्रांतिकारियों ने नेत्रकोना के पास स्थित एक गाँव में सशस्त्र डकैती डाली। मोहन किशोर नामदास और उनके कुछ साथी क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया। इस घटना ने ब्रिटिश शासन की नींद उड़ा दी। पुलिस ने धरपकड़ शुरू की। पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ और उसके बाद चली सघन तलाशी में मोहन किशोर नामदास गिरफ्तार कर लिए गए।

गिरफ्तारी के बाद मोहन किशोर नामदास का जीवन अत्यंत कठिन रहा। पुलिस संगठन के अन्य नेताओं के नाम और हथियारों के ठिकानों के बारे में जानकारी चाहती थी, इसलिए उन्हें अत्यंत अमानवीय यातनाएं दी गईं। लेकिन मोहन किशोर नामदास न झुके न टूटे। भीषण पीड़ाएं सहने के बावजूद उन्होंने किसी का नाम उजागर नहीं किया। उनके विरुद्ध एक विशेष न्यायाधिकरण के समक्ष मुकदमा चलाया गया। क्रांतिकारियों के त्वरित दमन के लिए विशेष कानून का सहारा लिया गया और उन्हें 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा दी गई। लेकिन अंग्रेज अब भी चिंतित थे और इस समय एक नीतिगत निर्णय लिया गया। कहा गया कि जिन क्रांतिकारियों को 5 वर्ष या उससे अधिक की सजा मिली है, उन्हें उनकी जेलों से हटाकर अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया जाए। ब्रिटिश प्रशासन ने तर्क दिया कि ये क्रांतिकारी अपनी भूमि पर जेल में रहते हुए दूसरे सामान्य कैदियों को भी प्रभावित करने का काम कर रहे हैं तथा खतरनाक विचारों का प्रसार कर रहे हैं। इस तरह फरवरी सन 1933 में मोहन किशोर नामदास को महाराजा नामक पानी के जहाज पर चढ़ाया गया। उनके साथ इस जहाज में हरे कृष्ण कोनार, सतीश पाकराशि, डॉक्टर भूपाल बोस, डॉक्टर नारायण रॉय और निरंजन सेन जैसे क्रांतिकारी सवार थे। समुद्र की विशाल लहरों के बीच ये यात्रा जैसे इन क्रांतिकारियों के जीवन की सबसे कठिन और अंतिम संघर्ष की प्रस्तावना थी। सेलुलर जेल में कैदियों का जीवन अत्यंत कठिन था। मोहन किशोर नामदास को सौंपे गए सबसे कठिन कार्यों में से एक था कोल्हू चलाना। एक कैदी को प्रतिदिन 30 पाउंड नारियल तेल निकालना होता था। यदि ये कोटा पूरा नहीं होता तो उसे बेड़ियों से जकड़कर डंडों से पीटा जाता था। भोजन के नाम पर आधा पका चावल, कीड़े लगे गेहूं की रोटियां और उबली हुई सब्जियां दी जाती थीं। इन परिस्थितियों ने कैदियों के भीतर विद्रोह की भावना पैदा कर दी। 12 मई सन 1933 को सेलुलर जेल के इतिहास की एक महत्वपूर्ण भूख हड़ताल शुरू हुई। मोहन किशोर नामदास इस हड़ताल के अग्रणी नायकों में से एक थे। इस हड़ताल में उनके महत्वपूर्ण साथी थे महावीर सिंह और मोहित मोइत्रा। क्रांतिकारी चाहते थे कि उन्हें राजनीतिक कैदी का दर्जा दिया जाए, भोजन की गुणवत्ता में सुधार हो, पढ़ने के लिए समाचार पत्र और पुस्तकें दी जाएं और बुनियादी स्वच्छता की सुविधा दी जाए। ब्रिटिश प्रशासन इसे कैदियों की अनुशासनहीनता मान रहा था और इसीलिए उसने निर्णय लिया कि इन हड़तालियों को जबरदस्ती खिलाकर हड़ताल तोड़ी जाए। 17 मई को जब महावीर सिंह को जबरन दूध पिलाने की कोशिश की गई तो दूध फेफड़ों में चला गया और कुछ ही घंटों में उनकी मृत्यु हो गई। मोहन किशोर नामदास इस घटना के बाद भी पीछे नहीं हटे। क्रांतिकारियों ने अब पानी पीना भी छोड़ दिया क्योंकि हड़ताल तुड़वाने के लिए घड़ों में पानी के स्थान पर दूध रख दिया गया था। मोहन किशोर नामदास की स्थिति अत्यंत नाजुक हो गई। जेल के डॉक्टरों ने उन्हें जबरन खिलाने का प्रयास किया। रबर की नली को उनके नाक के माध्यम से डाला गया। संघर्ष में ये नली उनके श्वसन तंत्र में चली गई। फेफड़ों में दूध चले जाने से उन्हें निमोनिया हो गया और 26 मई सन 1933 को वो शहीद हो गए। उनके पार्थिव शरीर को पत्थर से भरे बोरों से बांधकर आधी रात को समुद्र में फेंक दिया गया। मोहित मोइत्रा भी 2 दिन बाद शहीद हो गए। इन 3 क्रांतिकारियों के बलिदान ने पूरे भारत को झकझोर कर रख दिया। सरकार को झुकना पड़ा। क्रांतिकारियों की अधिकांश मांगें मान ली गईं। इस तरह वो तीनों अपना जीवन पुष्प मातृभूमि के चरणों में समर्पित कर गए। नमन ऐसी महान विभूतियों को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई? आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: देश के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए अपनी बात कीजिए विज्ञापन आकाशवाणी के साथ। लॉग ऑन कीजिए csuair.org.in।
0: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं एफएम 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 9 बजे हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आज हम आपको गोधनलाल कुशवाहा और कैलाश आदिवासी के गाए कुछ लोकगीत सुनवाएंगे। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गोधनलाल कुशवाहा के गाए इस लोकगीत से। लीजिए, सुनिए।

गोधनलाल कुशवाहा और साथियों की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, आपको बता दें कि लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए एक और लोकगीत।

गोदनलाल कुशवाहा और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए सुनिए गोदनलाल कुशवाहा और साथियों की आवाज में एक और

0: गोदनलाल कुशवाहा और साथियों की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम अभी जारी है, श्रोताओं एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: हेलो
2: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
1: फिर से
3: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
4: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
1: सर इतने कहाँ से?
4: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
5: 2 लाख क्या हुआ पापा?
1: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
3: अरे
1: काट दिया।
5: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
1: फ्रॉड?
5: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
1: तो पैसे गवाओगे।
6: RBI कहता है
7: जानकार बनिए।

0: सतर्क रहिए।
1: लोक संगीत का कार्यक्रम लोक रंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कैलाश आदिवासी की आवाज में सुनवा रहे हैं आपको ये लोकगीत।

कैलाश आदिवासी की आवाज में भी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। लीजिए

कैलाश आदिवासी की आवाज में अभी आप सुन रहे थे ये लोकगीत। श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति लीजिए, सुनिए आवाज कैलाश आदिवासी की है।

कैलाश आदिवासी के गाए इस लोकगीत के साथ ही लोक संगीत का कार्यक्रम लोकरंग अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है और श्रोताओं आज मैं हूं आपके साथ आपका रेडियो मित्र योगेंद्र सिंह यादव। कार्यक्रम की शुरुआत हम जिस गीत से कर रहे हैं उस गीत को सुनने की फरमाइश की है। फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान और उनके सभी पारिवारिक मित्रगण, इन सबकी फरमाइश पर सुनवा रहे हैं आपको निकाह फिल्म की ये कव्वाली। आवाजें सलमा आगा, आशा जी, महेंद्र कपूर और साथियों की हैं। गीत हसन कमाल ने लिखा है और संगीत बद्ध किया है रवि साहब ने। लीजिए सुनिए।

श्रोताओ, निकाह फिल्म की यह कव्वाली अभी आप सुन रहे थे। आवाजें थी सलमा आगा, आशा जी, महेंद्र कपूर और साथियों की। हसन कमाल ने इस कव्वाली को लिखा था और संगीतबद्ध किया था रवि साहब ने। आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, अब हम आपको जो कव्वाली सुनवाने जा रहे हैं, फिल्म है हंसते जख्म। इसमें रफी साहब के साथ बलवीर और साथी हैं और कैफी आजमी ने लिखा है, मदन मोहन साहब ने इसको कंपोज किया है और इसे सुनने की फरमाइश की है। नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका नूपुर, ऋषिका और रॉबिन, लक्ष्मीबाई अनाज मंडी रोड, वंदना नगर, इंदौर से राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न खर्चे, ललिता नारायण खर्चे, गणेश कार्तिक खर्चे, संजना परी खर्चे, मालती स्वाति प्रयाग चौधरी खर्चे, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाबेंद्र कुमार वर्मा, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारणी ठाकुर, सूरज ज्योति, सुजला और रेयांश ठाकुर, इन सब की फरमाइश पर लीजिए सुनिए हंसते जख्म फिल्म की ये कव्वाली रफी साहब के साथ बलवीर और साथी।

محبت سزا ہے یہ مانا میری جان.

0: हंसते जख्म। श्रोताओ, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब के साथ बलवीर और साथियों की गाई ये कव्वाली। इसे लिखा था कैफी आज़मी साहब ने और संगीतबद्ध किया था मदन मोहन साहब ने। श्रोताओ, फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।
1: मिस सीमा
2: जी,
1: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों? लेकिन मैं
1: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
1: 1,00,000 दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
1: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
3: हेलो मम्मा।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: फरमाइशी फिल्मी गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। अनोखी अदा। श्रोताओ, इस फिल्म में किशोर कुमार की गाई एक कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं। लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसे सुनने की फरमाइश की है इंदिरा बिहार रायगढ़ से अकरम नूरजहां, डब्लू नूरजहां, सईद नूरजहां, वसीम नूरजहां, वलीउल्लाह नूरजहां, राजनंद गांव से याकूब आसमा, यूसुफ आसमा, इमरान आसमा, इरफान आसमा, और जेल रोड रायगढ़ से रेशमा तिवारी, सोनम तिवारी और आदिबा तिवारी। इन सब की फरमाइश पर लीजिए, सुनिए ये कव्वाली।

अनोखी अदा। श्रोताओ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज़ में ये कव्वाली। लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने और संगीतबद्ध किया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। आपको बता दें कि फरमाइशी फिल्म गीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। दिल ही तो है, इस फिल्म की एक कव्वाली आपको सुनवा रहे हैं। मन्ना डे के साथ है आशा जी और साथी। इसे लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीतबद्ध किया है रोशन साहब ने। सुनने की फरमाइश की है फिजिकल रोड शिवपुरी से सादिक खान मेवाती और उनके सभी पारिवारिक सदस्यगण, हाजी सन्नू मार्केट एबी रोड शिवपुरी से जाहिद खान और उनके तमाम पारिवारिक मित्र, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथलेश तारणी, सूरज, सुजला, ज्योति और रेयांश ठाकुर, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद, किशोर कुमार, दीपक कुमार और झावेंद्र कुमार वर्मा। कार्यक्रम की अंतिम प्रस्तुति

0: दिल ही तो है। इस फिल्म में मन्ना डे और आशा जी और साथियों की गाई इस कव्वाली के साथ ही फरमाइशी फिल्म गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय सुबह के 10 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम जिले की चिट्ठी, इसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं।
1: आलेख है रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर नवनीत चौबे की।

0: गुना जिले की चिट्ठी में बात सबसे पहले विकास और उद्योगों की। हाल ही में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुना जिले में अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री का शिलान्यास किया। करीब 1060 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस फैक्ट्री से 1500 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में उद्योग बढ़ेंगे तो युवाओं को अपने ही जिले में रोजगार मिलेगा और इलाके की आर्थिक तस्वीर बदलेगी। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी गुना क्षेत्र में सड़क, अधोसंरचना और विकास से जुड़ी कई अहम घोषणाएं की। रोजगार की दिशा में युवा संगम कार्यक्रम भी खास रहा। जिला स्तरीय रोजगार एवं स्वरोजगार मेले में 850 से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें से 529 युवाओं का अलग अलग निजी कंपनियों में शुरुआती चयन हुआ और मौके पर ही ऑफर लेटर भी दिए गए। इसके अलावा कार्यक्रम में 3136 हितग्राहियों को 21 करोड़ 30 लाख रुपए से ज्यादा के हितलाभ बांटे गए। अब बात पानी और पर्यावरण की। जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत गंगा दशहरा पर भुजरिया तालाब में विशेष कार्यक्रम हुआ। लोगों ने सामूहिक गंगा आरती की, जल संरक्षण की शपथ ली और पानी बचाने का संदेश दिया। वहीं कंजा गांव में कूनो नदी के उद्गम स्थल पर भी बड़ा आयोजन हुआ। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली और श्रमदान कर लोगों को जल संरक्षण का महत्व समझाया। प्रशासन का कहना है कि कूनो नदी संरक्षण और स्टॉप डैम निर्माण से आने वाले समय में सिंचाई और पर्यटन दोनों को फायदा मिलेगा। खेती किसानी की बात करें तो खरीफ 2026 की तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिले भर में किसान चौपाले लगाई जा रही है। कृषि वैज्ञानिक किसानों को प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उन्नत बीज और आधुनिक तकनीकों की जानकारी दे रहे हैं। गांव-गांव कृषि रथ भी पहुंच रहे हैं जो किसानों को नई योजनाओं और खेती के नए तरीकों से अवगत करा रहे हैं। दूसरी तरफ खाद की उपलब्धता को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है। किसानों को ई विकास प्रणाली के जरिए खाद वितरण किया जा रहा है। किसान सुबह 7 बजे से ई टोकन बुक कर अपनी जरूरत के अनुसार खाद ले सकते हैं। कृषि विभाग ने किसानों से डीएपी के बजाय एनपीके और नैनो उर्वरकों के उपयोग की अपील भी की है। गेहूं खरीदी का काम भी अब अंतिम दौर में पहुंच गया है। जिले में अब तक 67,000 मीट्रिक टन से ज्यादा गेहूं खरीदी की जा चुकी है। किसानों के लिए 176 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि मंजूर हुई है और अधिकांश भुगतान सीधे खातों में पहुंच चुका है। अब बात स्वास्थ्य की। जिले में 25 से 31 मई तक विश्व तंबाकू निषेध सप्ताह मनाया जा रहा है। स्कूलों, कॉलेजों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यक्रम, रैलियां और शपथ अभियान चल रहे हैं। लोगों को तंबाकू से होने वाले नुकसान और स्वस्थ जीवन शैली के बारे में बताया जा रहा है। राष्ट्रीय डेंगू दिवस पर बीनागंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को डेंगू के लक्षण, बचाव और उपचार की जानकारी दी। इस दौरान लोगों से साफ सफाई रखने और पानी जमा नहीं होने देने की अपील भी की गई। वहीं भीषण गर्मी को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। तापमान 45 डिग्री तक पहुंचने पर लोगों को दोपहर में घर से कम निकलने, ज्यादा पानी पीने और सिर ढककर बाहर जाने की सलाह दी गई है। पेयजल समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए जिला स्तरीय कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए आयुष विभाग घर घर योग, हर व्यक्ति निरोग अभियान चला रहा है। जिले के आयुष्मान आरोग्य मंदिर में रोज योग शिविर लगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन लाइव योग सत्रों के जरिए भी लोगों को योग से जोड़ा जा रहा है। विशेष जनजाति समूहों यानी PVTG परिवारों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड, किसान सम्मान निधि और उज्ज्वला योजना जैसी सुविधाएं पात्र लोगों तक पहुंचाई जा रही है। गुना जिला अब अपनी सांस्कृतिक धरोहर को भी सहेजने में जुट गया है। भारत सरकार के ज्ञान भारतम मिशन के तहत जिले की पुरानी पांडुलिपियों और दुर्लभ हस्तलिखित दस्तावेजों का डिजिटलीकरण किया जा रहा है। 70 साल से ज्यादा पुराने दस्तावेजों को मोबाइल ऐप के जरिए सुरक्षित किया जा रहा है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो नेशनल लोक अदालत में जिले भर के 1382 मामलों का आपसी समझौते से निपटारा हुआ। इसमें करीब 2800 लोगों को फायदा मिला और वर्षों पुराने विवाद खत्म हुए। जिले में शिक्षा के क्षेत्र में भी अच्छी पहल हुई है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कार्य विभाग ने उत्कृष्ट छात्रावासों में पढ़ने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए विशेष कोचिंग शुरू करने की तैयारी की है। अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और कंप्यूटर जैसे विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी ताकि बच्चों को बेहतर मार्गदर्शन मिल सके। इसी तरह आदिवासी वित्त विकास निगम द्वारा भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना और टंटिया मामा आर्थिक कल्याण योजना के तहत आवेदन मांगे गए हैं। इन योजनाओं के जरिए युवाओं को अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक ऋण और आर्थिक सहायता दी जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष पद के लिए भी आवेदन आमंत्रित किए हैं। बाल मनोविज्ञान, शिक्षा, कानून और सामाजिक कार्य से जुड़े अनुभवी लोगों को प्राथमिकता दी जाएगी। गुना जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे गुना जिले की चिट्ठी। आलेख था रोहित गोस्वामी का, वाचन स्वर थे नवनीत चौबे के। ये आकाशवाणी भोपाल है।
2: हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। इस समय सुबह के 10:05 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। श्रोताओं, कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं गुलाम हुसैन खां और साथियों की गाई इस कव्वाली से। लीजिए सुनिए, बहुत कठिन है डगर पनघट की।

बहुत कठिन है डगर पनघट की। श्रोताओ, ये कवाली अभी आप सुन रहे थे गुलाम हुसैन खां और साथियों की आवाज़ में। आपको बता दें कि सुगम संगीत का कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। असलम साबरी और साथियों की आवाज़ में एक कवाली आपको सुनवा रहे हैं, लीजिए सुनिए।

असलम साबरी और साथियों की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे ये कव्वाली। इसके साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय सुबह के 10:30 हुए हैं। आकाशवाणी शिवपुरी से प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं उस्ताद अहमद हुसैन और उस्ताद मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद वाकिल जावेद हुसैन की आवाज़ में ये गाई इस कव्वाली से। लीजिए सुनिए।

वीर ज़ारा फिल्म का ये कव्वाली आप सुन रहे थे उस्ताद अहमद हुसैन, उस्ताद मोहम्मद हुसैन, मोहम्मद वकील और जावेद हुसैन की आवाज़ में। श्रोता, इस कव्वाली को लिखा था जावेद अख्तर साहब ने और इसका मूल संगीत तैयार किया था मदन मोहन साहब ने, जिसका पुनर्संयोजन किया संजीव कोहली ने। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। तुमको ना भूल पाएंगे, श्रोताओं यह है फिल्म का नाम और इसमें हम आपको सुनवा रहे हैं, सोनू निगम के साथ हैं अरविंदर सिंह, स्नेहा पंडित और साथी जलीस राशिद ने इस गीत को लिखा है और साजिद वाजिद का संगीत है। लीजिए सुनिए।

तुमको ना भूल पाएंगे। श्रोताओं, इस फिल्म में भी आप सुन रहे थे सोनू निगम के साथ अरविंदर सिंह और स्नेहा पंडित को। गीत लिखा था जलीस राशिद ने और संगीतबद्ध किया था साजिद वाजिद ने। आपको बता दें कि फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। कुर्बानी फिल्म का एक गीत आपको सुनवा रहे हैं। किशोर कुमार के साथ हैं अनवर और अजीज नाजा। फारूक कैसर का गीत है और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। लीजिए सुनिए।

कुर्बानी फिल्म में भी आप सुन रहे थे किशोर कुमार के साथ अनवर और अजीज नाजा को। गीत फारूक कैसर का था और संगीत कल्याण जी आनंद जी का। फिल्म संगीत इस समय आप आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से सुन रहे हैं। द वर्निंग ट्रेन, श्रोताओं, इस फिल्म में हम आपको सुनवा रहे हैं रफी साहब के साथ आशा जी को। गीत समीर का और साहिर लुधियानवी के लिखे इस गीत को संगीतबद्ध किया है आर डी बर्मन साहब ने। लीजिए सुनिए।

0: द बर्निंग ट्रेन। श्रोताओ, इस फिल्म में अभी आप सुन रहे थे रफ़ी साहब के साथ आशा जी और साथियों को। इस कव्वाली को लिखा था साहिर लुधियानवी साहब ने और संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। इसके साथ ही फिल्म संगीत का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के शिवपुरी केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.2 MHz पर। इस समय दिन के 11 बजने को हैं। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश के कार्यक्रम, जिसका अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से कर रहे हैं।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए सुनिए सजीव फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं नमस्ते, मैं हूँ नीतिका वर्मा, लेकर हाजिर हूँ फोन इन प्रोग्राम बात आपकी गीत हमारे। श्रोताओं, आज बातें योग की। अमूमन लोगों का सोचना होता है कि जब हम स्वस्थ हैं तो योग की क्या जरूरत है, ना हमें शारीरिक परेशानी है ना मानसिक, तो ऐसे में योग क्यों करें। यहाँ बता दें, योग शरीर के साथ मन को भी स्वस्थ रखता है। योग से आनंद की अनुभूति होती है और आनंद को सुख के ऊपर की स्थिति कहा गया है। तो चलिए आज कार्यक्रम में जानते हैं कि हमारे श्रोता योग के बारे में क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ समझते हैं वो योग से। नमस्कार।
2: नमस्ते मैम
1: जी, बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। आपका परिचय दीजिए।
2: मैडम, मैं सपना एंटी से बोल रही हूँ।
1: जी जी, आपका नाम बता दीजिए।
2: मैं मिसेस टंडन हूँ
1: जी। आज हम जानना चाहेंगे कि योग जो है, योग के विषय में हम बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप योग के बारे में क्या कुछ समझती हैं, क्या अनिवार्यता है इसकी अपने जीवन में, ये बताएं।
2: मैडम, योगा करने से देखिए, एक तो अपना शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: और साथ में जितने जैसे मसल्स वगैरह वीक हो जाते हैं, योगा करने से वो ठीक रहेगा और शरीर में डिटॉक्स भी हो जाता है, अपने पूरे दिन की दिनचर्या अच्छी हो जाती है
1: जी। मिसेस टंडन, हम ये जानना चाहते हैं कि योगा जो है नियमित रूप से आप करती हैं?
2: हाँ मैम, मैं नियमित रूप से करती हूँ। अभी यदि कभी छूट जाता है तो भी मैं शाम को कर लेती हूँ। दिन में अगर मैं करती हूँ, अगर छूट जाता है तो मैं शाम को करती हूँ। मेरा भी बहुत वेट बढ़ गया था तो योगा करने से, और थोड़ा सा पौष्टिक भोजन करती हूँ मैं रोज सुबह, मैं जैसे स्प्राउट वगैरह इस तरह के खाना खाती हूँ
1: जी,
2: और घर के भी बच्चे सबको मैं कराना चाहती हूँ योगा।
1: तो इससे आपको लाभ हुआ?
2: बहुत लाभ हुआ मैडम, मेरा वेट कम हो गया। मेरे को जो स्वेलिंग वगैरह आई थी और नसों में दर्द वगैरह होती थी, उससे बहुत आराम मिलता है मैडम। और जिस दिन अगर छूट जाता है तो फिर मेरे को बहुत दर्द होता है, मतलब। और योगा करना चाहिए सबके लिए, योगा जरूरी है। एक आप 5 मिनट का समय निकाल करिए, 5 मिनट के लिए अपने लिए समय निकालिए और योगा करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, जिससे माइंड फ्रेश रहता है
1: जी जी जी,
2: और शरीर स्वस्थ रहता है
1: जी,
2: जो पूरे दिन की दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी।
1: चलिए, तो नियमित दिनचर्या में हम योग शामिल करें।
2: नियमित दिनचर्या अच्छी रहेगी
1: जी जी जी। चलिए, बहुत अच्छा लगा मिसेस टंडन आपसे बात करके।
2: थैंक यू मैम
1: जी, धन्यवाद आपने फोन किया।

0: नमस्कार
1: नमस्कार नमस्कार मैडम जी,
0: जी, किससे बात कर रहे हैं?
1: मेरे नाम भोली शंकर साहू है, हम नरसिंहपुर जिले से बोल रहे हैं। बढ़िया है मैडम जी।
0: जी, आज बात आपकी गीत हमारे में, हमने योग विषय रखा है, तो हम ये जानना चाहते हैं भोले शंकर साहू जी, योगा करने के क्या फायदे होते हैं?
1: बहुत से फायदे मैडम, शरीर स्वस्थ रहता है,
0: हाँ, और हाँ, शरीर स्वस्थ रहेगा तो मन भी
1: अपन
0: अच्छा
1: अच्छे
0: रहेगा,
1: रहेंगे।
0: मन से भी हम प्रसन्न रहेंगे, है ना? तो क्या योगा आप दिनचर्या में अपनाते हैं?
1: हाँ अपनाते हैं मैडम, अपनाते हैं।
0: तो योगा करने की क्या सलाह देंगे, क्या कहेंगे आप योगा के बारे में लोगों को?
1: हमारे ख्याल से मैडम ये है कि रोज योगा करना चाहिए सुबह शाम। हाँ
0: अच्छा,
1: यानी
0: और यदि
1: उत्ता
0: वक्त ना
1: निकाल
0: मिल पाए
1: नहीं
0: तो?
1: उत्ता से निकालना चाहिए मैडम वक्त की अपन योगा कर सकें, हमसे
0: जी
1: ज्यादा नहीं, कम से कम 10 मिनट 20 मिनट कम से कम कर सकें रोज
0: जी
1: सुबह शाम करना
0: चलिए,
1: चाहिए।
0: सही बात कही आपने भोले शंकर साहू जी कि हमें नियमित योगा करना चाहिए, शरीर के लिए इतना वक्त तो निकालना ही चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा भोले शंकर साहू जी, नरसिंहपुर से आपने फोन किया
1: जी
0: जी,
1: जी
0: बहुत
1: मैडम,
0: धन्यवाद आपने फोन किया।

0: जी नमस्कार।
1: मनोज विश्वकर्मा, ग्राम पनारी, तहसील देवरी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ। मैडम,
0: जी तो क्या इस गर्मी में भी आप योगा करते हैं?
1: योगा तो नहीं कर पाते हैं,
0: क्यों नहीं?
1: फिर
0: अच्छा,
1: प्रभात जल्दी सोए।
0: आप योगा नहीं कर पाते हैं, लेकिन क्या योगा की महत्ता को आप मानते हैं, उसके महत्व को
1: योगा की
0: समझते हैं?
1: महत्ता तो बहुत ज्यादा है, योगा से सब कुछ लोग रहते, सभी लोग।
0: जी तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे लोगों को कि योग
1: बिल्कुल
0: करना
1: देना
0: चाहिए?
1: चाहेंगे, योगा करें, प्राणायाम करें, सुबह से घूमने जाएं। जी
0: तो योगा आप क्यों नहीं कर पाते?
1: मैडम, क्या है, हमारा काम इस टाइप का है कि थोड़ा रात में लेट पहुंचते हैं घर पर, तो
0: जी
1: थोड़ा जल्दी नहीं उठ पाते, उस वजह से नहीं कर पाते हैं।
0: जब आप हर चीज के लिए वक्त निकालते हैं तो योग के लिए भी जरूर वक्त निकालें।
1: फुल निकालने के आपके कहने पर मैं कल से ही शुरू करता हूँ मैडम।
0: जी बिल्कुल। और देख, योग जो है ये भारत से ही शुरू हुआ था, है
1: जी
0: ना?
1: बिल्कुल,
0: तो हम भारतीय हैं और हमें इस पर गर्व होना चाहिए कि ये विधा हमारे पास में है।
1: उसमें शिक्षा के उसमें सब्जेक्ट भी लिया गया है।
0: हाँ, योग तो कहीं कहीं पर अनिवार्य विषय भी है, आज भी है ना? लेकिन अनिवार्य रूप से इसे हर जगह नहीं अपनाया गया है ना? तो योगा जो है वो हमारे जीवन में एक सेहत की कुंजी है वो।
1: बिल्कुल। बाकी मैं ठंडी के दिनों में तो प्रयास करता हूँ करने का, बाकी
0: चलिए,
1: अभी तो नहीं कर पा रहा है।
0: नहीं चलिए, जो भी संभव हो मेडिटेशन कर लीजिए, मन की शांति के लिए ही कर लीजिए। उम्मीद करते हैं कि आप योग को अपनाएंगे।
1: जी
0: जी नमस्कार।

0: हेलो,
1: जय श्री राम।
0: जय श्री राम। बताएं, कौन बोल रहे हैं आप? कहाँ
1: मैं किशन घी वाला बोल रहा हूँ,
0: से बोल रहे हैं आप?
1: दमोह से। जी
0: जी, कैसे हैं किशन जी?
1: ठीक है, गर्मी बहुत है। हाँ
0: जी, गर्मी तो वाकई में बहुत पड़ रही है। किशन जी, हम जानना चाहते हैं, योग यानी होता है जोड़ना या बांधना, है ना?
1: जी
0: और शरीर और आत्मा को साथ लाने का माध्यम है योग, क्योंकि इससे मन की शांति भी आती है।
1: जी
0: तो क्या कुछ कहना चाहेंगे आप योग के बारे में? योग जीवन में आपके लिए क्या महत्व रखता है? एक मनोभाव से जोड़ करके आप बताएं, या योग को आप जीवन में किस तरीके से देखते हैं?
1: ये बहुत ही कठिन है। चलो, आपने व्यक्तिगत मुझसे पूछा है तो
0: जी
1: मैं बताना चाहता हूँ कि
0: जी
1: जीवन में तो बहुत सारी ही कठिनाइयाँ रहती हैं। मेरे ख्याल से पग
0: हाँ हाँ
1: पग के ऊपर कठिनाई रहती है, चाहे वो व्यापार की हो, चाहे परिवार की हो, चाहे समाज की हो, कंपटीशन
0: जी
1: रहते हैं।
0: जी
1: लेकिन अपने आप को योग से जोड़ना, अपने आप को बिल्कुल न्यूट्रल छोड़ देता हूँ।
0: जी
1: न्यूट्रल,
0: हाँ
1: आप समझे ना, बिल्कुल
0: हाँ हाँ
1: बिल्कुल शून्य मान के छोड़ देता हूँ कि चलो जो होना है वो तो होना ही है। और एक बिल्कुल ही जीरो समझ के, जैसे अपन अपनी गाड़ी को न्यूट्रल छोड़ देते हैं ना, तो जिधर
0: हाँ
1: जाना चली जाती है, घूमती जाती है,
0: जी
1: लुढ़कती जाती है,
0: जी
1: बस ऐसे अपने आप को छोड़ के शांत मतलब जाने देखता हूँ, तभी मुझको लगता है कि मेरे आत्मा जो है बिल्कुल जुड़ रही है उससे, और एक विशेष शांति मिलती है। यही है
0: तो
1: मेरा,
0: आप
1: यही
0: जो
1: योग
0: ये
1: है।
0: शून्य पर जब आप पहुंचते हैं, तो उसे आप मतलब मेडिटेशन से जोड़ करके किस प्रकार से कहेंगे कि एक मानसिक शांति के लिए ये बहुत जरूरी है?
1: एक बहुत ही सुकून मिलता है उस
0: जी
1: समय
0: जी
1: जब हम अपने आप को बिल्कुल
0: जी
1: जीरो जीरो मान लेते हैं ना,
0: हाँ हाँ
1: अपने आप को न्यूट्रल कर लेते हैं।
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: किसी काम, कोई काम नहीं, कुछ नहीं, बस सच माना तो बस ऐसा ऊपर ही ऊपर दिखता रहता है आकाश, आकाश शून्य दिखता रहता है, विशाल दिखता
0: हाँ हाँ
1: रहता है। यही यही एक अनुभव होता है उस समय जो आप पूछ रहे थे।
0: योग में मेडिटेशन एक हमारा बहुत इम्पोर्टेंट भाग होता है, जिससे मन की शांति के लिए बहुत ज़रूरी होता है ना? और आज तो तनाव हर किसी के जीवन में है, किसी ना किसी प्रकार के व्यवधान जीवन में आ रहे हैं, और उसको हम छोड़कर आगे बढ़ें, इसके लिए मेडिटेशन बहुत ज़रूरी है।
1: और
0: जी
1: ये नहीं कि एक मुझे को, हर एक को, जितने
0: जी
1: भी लोग
0: बिल्कुल
1: हैं, जितने भी संसार में,
0: जी
1: चाहे वो मनुष्य हैं और चाहे वो प्राणी हैं,
0: हाँ
1: हर एक को मतलब पग पग के ऊपर कंपटीशन है और एक संघर्ष सा है।
0: जी
1: जीवन एक संघर्ष सा रहता है,
0: चलिए
1: लेकिन अपने आप को शून्य कर लेना, यही एक सबसे अच्छी बात है।
0: जी, बहुत अच्छा लगा किशन जी आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि आपके इस शून्य पर ले जाने के बाद मेडिटेशन वाली जो बात

0: आपने कही है, उस पर हमारे श्रोता जो हैं वो ध्यान देंगे और उस पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे।
1: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी
1: आपने बड़ा अच्छा विषय चुना है,
0: जी जी
1: बहुत ही गंभीर विषय चुना है आपने।
0: जी नमस्कार।

0: जी नमस्ते।
1: नमस्ते मैम जी, मैं श्रोता हूँ मैम जी, और सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूँ आपके साथ।
0: जी, बहुत शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं और आपका परिचय बता दीजिए,
1: जी मैं
0: कहाँ।
1: आपका नियमित श्रोता मैम जी, जय नरसिंहदेव FM रेडियो ग्रुप, ग्राम करकबेल, तहसील गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर से कमलेश कहा।
0: आज जो बात आपकी गीत

0: शुक्रिया। कौन बोल रहे हैं और आपका परिचय बता दीजिए,
1: जी मैं
0: कहाँ?
1: आपका नीमे सोता मैम जी, जय नरसिंह देव FM रेडियो ग्रुप ग्राम करकबेल तहसील रोटेगांव जिला नरसिंहपुर से कमलेश का आवाज।
0: आज जो बात आपकी गीत हमारे कार्यक्रम में उसमें हमने विषय रखा है योग का, तो ये बताइए कि योग शरीर की ताकत

0: और रखी, खाना खाने के लिए समय निकाल लीजिए, पानी पीने के लिए समय, जैसे हमारे शरीर को यदि चलाना है आपको, स्वस्थ रखना है तो योग के लिए जरूर बहाना ना बनाए, समय निकालें के लिए जरूर करना पड़ेगा।
1: कहने का अर्थ ये है कि जिस प्रकार से हम भोजन या मोबाइल की बात आपने कही है, टीवी की, पढ़ाई की, है ना, अपने मनोरंजन की, हर प्रकार के लिए जब हम वक्त निर्धारित करते हैं तो अपने शरीर के लिए जरूर हम वक्त निर्धारित करें और उसको एक नियमित समय पर करें तो बहुत अच्छा है। और नहीं हो पाता है तो जब कभी भी इस वक्त मिले हमें योगा जरूर करना चाहिए।
0: और मैम जी एक बात और रख दूं आखिरी में कि हम अपने आप को फ्रेश करने के लिए साल में या साल में एक दो बार जरूर कहीं ना कहीं घूमने के लिए जाते हैं सपरिवार।
1: हाँ हाँ,
0: तो क्यों जाते हैं बताइए, ये मेरा प्रश्न आपके अलावा पूरे श्रोताओं से है। तो हम अपने आप को फ्रेश रखने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक क्षेत्र या कह सकते हैं पर्यटक क्षेत्र में चले जाते हैं, दो चार दिन गुजारते हैं बढ़िया, वो फ्रेश होकर जाते फिर अपने काम में लग जाते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। तो मैं समझता हूँ ये ऊर्जा यदि आपको कायम रखना है तो ये जरूर कीजिए और समय निकालिए।
1: चलिए बहुत अच्छा उत्तर दिया है आपने, प्रश्न भी आपका ही था, तो बहुत अच्छा लगा कमलेश जी आपसे बात करके। तो ऊर्जावान रहने के लिए

0: जी मैडम नमस्ते।
1: नमस्ते।
0: मैं सोमत सिंह बात कर रहा हूँ, एमपी धार से।
1: सोमत सिंह जी, हम ये जानना चाहते हैं आज बात आपकी की थी हमारे में, कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, है ना? यानी पहले से ही यदि आप चेत के रहेंगे तो बीमारी को आप दूर भगा सकते हैं,
0: हाँ
1: है ना? और इसके लिए योग अगर आप करें तो आप स्वस्थ जीवन जो है लंबे समय तक बिता सकते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, बताएं?
0: बिल्कुल बात सही है। योग निश्चित ही हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है और आने वाली जो समस्याएं होती हैं उनसे हमें निश्चित ही निजात मिलती है। लेकिन मेरा मानना यह है, जैसे मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैंने अपने खान पान का विशेष ख्याल रखते हुए और जो बहुत कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जैसे हम लोग घूमने फिरने में भी और ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए मुझे आज तक कभी भी मतलब कोई समस्या नहीं हुई। आप समझिए कि मैं 45 से ऊपर हूँ इस समय, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ख्याल रखते हुए अगर हम चलें तो निश्चित ही हमें आने वाली समस्याओं का कहीं ना कहीं भान होता है पहले से। तो बिल्कुल योग एक ऐसी मैं समझता हूँ व्यवस्था है जो आसानी से हम लोग एक इससे जुड़ जाए तो हमारी जितनी भी फिटनेस की समस्या हो, हमारे शरीर में जो अंदरूनी बातें समस्याएं होती है, जैसे कई लोगों के जो जन्म से समस्याएं होती हैं, कई लोगों को ठंड सहन नहीं होती, गर्मी सहन नहीं होती, तो इस तरह की जब अंदर की समस्याएं होती है उनसे भी कहीं ना कहीं जूझने में योग का निश्चित ही जो योगदान होता है वो हमारे जीवन को सुरक्षित बनाता है। मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से, योग बहुत जरूरी है। और हमारे संगीत, मैं तो संगीत से जुड़ा हूँ तो योग तो निश्चित ही संगीत के लिए वरदान साबित है। आप जितनी लंबी सांस होगी उतना ही अच्छा हमारा परफॉर्मेंस होता है, तो निश्चित ही योग करना चाहिए। और बस ये जरूर है कि इसको करने से पहले जो इसके शिक्षक हैं जो ज्ञान रखते हैं, कई बार ऐसा होता है कि हमें ज्ञान नहीं होता, हम अपने स्तर से इसको करना शुरू कर देते हैं, तो कई बार लापरवाही कह लो या जानकारी कम होने के वजह से कई बार छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं सामने।
1: बिल्कुल, बहुत सही बात कही है सोमत सिंह साहब आपने, क्योंकि योग आप करेंगे यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर किसी भी प्रकार की उम्र से जुड़ी हुई कोई परेशानी है

0: या फिर आपके जोड़ या किसी भी अन्य प्रकार की शरीर में कोई समस्या है तो पहले डॉक्टर से आप पूछ लें, है ना।
1: हाँ
0: डॉक्टर की
1: हाँ
0: सलाह जरूर ले लें कि हम योग करेंगे तो क्या ये एक्सरसाइज हमें करनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि उससे आपकी तकलीफ और बढ़ सकती है
1: हालांकि एक चीज और भी है, अगर
0: ना।
1: हम स्वस्थ हैं तो स्वस्थ रहते हुए अगर हम योग से जुड़ जाएं तो और इसके फायदे हैं कि और निश्चित ही जो हमारा जीवन है आगे का
0: जी
1: वो स्वस्थ ही रहकर हम आसानी से बिता सकते हैं। लेकिन अगर कोई समस्या है तो उसके पहले डॉक्टर से सलाह लेकर ही इससे जुड़े तो निश्चित ही इसका लाभ मिलना तय है।
0: चलिए, बहुत अच्छी बात कही सोमत सिंह आपने, और बहुत शुक्रिया आपने फोन किया।
1: जी, किनसे बात हो रही है मेरी?
0: जी, मैं नीतिका वर्मा।
1: अच्छा जी, चलिए, अच्छा लगा, पहली बार बात हुई आपसे।
0: जी।

0: मैं ग्रामपुर जिला छतरपुर से संगीता पटेल बोल रही हूँ।
1: कैसी हैं संगीता पटेल जी?
0: ठीक है, मैम आप कैसी हैं? हाँ
1: जी हम बहुत अच्छे हैं और उम्मीद करते हैं आप भी बहुत अच्छी होंगी,
0: जी मैम सही
1: है ना?
0: है।
1: और हमारे
0: हाँ
1: श्रोता जब अच्छे रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। चलिए ये बताइए संगीता पटेल जी, अपनी
0: जी
1: नियमित जो दिनचर्या है, आप गृहिणी हैं?
0: जी जी
1: चलिए तो दिनचर्या में आप योग के लिए कुछ वक्त निकाल लेती हैं? योगा करती हैं आप?
0: जी मैम, मैं योगा तो नहीं करती हूँ।
1: हाँ
0: वो अपने जो सुबह के काम हैं वो करती हूँ अपने खुद से। जी
1: खैर काम तो गृहिणी को करना ही होता है, लेकिन योगा जो है एक अच्छा अभ्यास होता है शरीर के लिए। हालांकि
0: जी मैम
1: गृहिणी जो होती हैं वो घर के जो नियमित कार्य करती हैं तो उसमें काफी कुछ उनका शरीर जो है लचीला सा हो ही जाता है, पर फिर भी एक नियमित अभ्यास के साथ में यदि हम योग को अपनाएं तो शरीर को जो है वो फायदे होते हैं उससे, है ना? जैसे कि जोड़ में दर्द है या किसी प्रकार से माइग्रेन वगैरह की शिकायत है ना, मानसिक तनाव है, तो मेडिटेशन करें। कुछ नहीं, ज्यादा से
0: लगभग
1: ज्यादा
0: तो
1: 15-20 मिनट ही दीजिए, लेकिन योग जरूर कीजिए।
0: जी मैम अभी तो नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं तो अभी कर ही नहीं पाती हूँ तो,
1: हाँ
0: और लेकिन करने की कोशिश करूंगी जरूर
1: हम यही चाहते
0: जी।
1: हैं कि आज कार्यक्रम में बात आपकी गीत हमारे में हमने योग विषय रखा है, और तो उसको लोग भाग अपनाएं, है ना? केवल बातें नहीं करनी है, इसे अपनाना भी है। तो आपको क्या लगता है, योग करने से फायदा होगा आपको?
0: जी मैम क्यों नहीं होगा, जब सबको होता है हमको क्यों नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं।
1: और ये तो हमारे अपने भारत की विधा है ना?
0: जी मैम
1: तो इसे हम अगर अपनाएंगे तो निश्चित
0: जी
1: ही हमें फायदे बहुत
0: मैं
1: मिलेंगे।
0: करने लगी हूँ।

0: मैं ग्राम भाई तहसील नारायणी जिला बांदर से बुद्धि बिलासपुर साहब बात कर रहा हूँ
1: कुशवाहा जी आपसे जानना चाहते हैं,
0: जी।
1: योगा जो है वो हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है,
0: जी
1: तो योगा करना चाहिए इसके लिए क्या कुछ कहेंगे और योग के क्या कुछ फायदे हैं इसके बारे में आप कुछ बताएं।
0: योगा से तो हर चीज निर्भर है, शरीर का हर अंग उससे काम करता है। योग जीवन के लिए बहुत फायदेमंद है
1: अच्छा,
0: जी। हाँ
1: तो योगा को आपने अपनाया हुआ है,
0: जी हाँ
1: योग करने से आपको क्या कुछ लाभ हुए हैं?
0: जी, उससे मानसिक तनाव भी दूर होता है, शारीरिक बीमारियां भी दूर होती हैं।
1: तो योगा करने की सलाह आप देना चाहेंगे तो मैं श्रोताओं के लिए क्या कुछ कहेंगे बताएं। इसे शाम को भी किया जा सकता
0: जी हाँ,
1: है ना?
0: और सबसे, हाँ सबसे ज्यादा फायदेमंद वो लोग ना करें जिन्हें ज्यादा गंभीर बीमारियां बगैर परामर्श के। हाँ
1: बिल्कुल सही, डॉक्टर से परामर्श जरूर लें यदि आपको किसी
0: मान
1: प्रकार
0: लो
1: की,
0: जो जिनके लिए अनुकूल है वही।
1: जिनके लिए अनुकूल है वही हैं करें, और यदि आपको किसी प्रकार की तकलीफ है या बीमारी है तो आप डॉक्टर से
0: हाँ
1: परामर्श लेकर के
0: उस,
1: करें।
0: हाँ फायदे की जगह नुकसान हो मालूम हो, हम लगातार कर रहे हैं तो कहाँ से फायदा होगा
1: जी बिल्कुल सही, बहुत सही बात कही आपने कुशवाहा जी,
0: जी।
1: बहुत धन्यवाद आपने बात की
0: जी नमस्कार।
1: जी, नमस्कार।

0: तो श्रोताओं, योग मानसिक विकार दूर करता है, इससे सहयोग की भावना भी बढ़ती है। कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, तो क्यों ना योग को अपने जीवन की समय सारणी में स्थान दें। लेकिन साथ में ये भी कहेंगे कि योग जरूर अपनाएं, लेकिन यदि आपके पास में किसी प्रकार की परेशानी है शारीरिक, तो आप अपने चिकित्सक से सलाह परामर्श जरूर लें। योग अपनाएं ताकि आप लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। तो कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे में आज हमने बात की योग पर। अब अनुमति दीजिए नीतिका वर्मा को, नमस्ते।
1: अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम बात आपकी गीत हमारे, ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
2: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में भारत पाकिस्तान सीमा से जुड़े जिलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। न्यायालय ने कहा कि ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु से पहले के थे। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया गया। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। राज्य मंत्री लखन पटेल ने बताया कि हर गौशाला में कम से कम 5,000 गोवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गाय होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप अहमदाबाद में 4 से 8 जून तक आयोजित की जाएगी। ये देश की पारंपरिक स्वास्थ्य पद्धति को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेले।

0: आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। प्रस्तुत है फिल्मी फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

श्रोताओं, ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म याराना से, आवाज किशोर कुमार की। गीत लिखा था अनजान ने और संगीत था राजेश रोशन का। इस गीत को सुनना चाहा था आप सभी ने महादेव घाट अमलेश्वर से टोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारिणी ठाकुर, सूरज ठाकुर, ज्योति ठाकुर और बाबू रियांश ठाकुर। छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरेंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार वर्मा और झाविंद्र कुमार वर्मा ने। इसी गीत को सुनना चाहा था नेपाल पैलेस सागर से तिलक राणा, मीना राणा, मोनिका, नूपुर, ऋषिका और रॉबिन ने। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत।

ये गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना थी आनंद बख्शी की और संगीत था आरडी बर्मन का। फिल्म थी शान। इस गीत को सुनना चाहा था घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और सन्मति पंचोलिया ने। इसी गीत को सुनना चाहा था लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से विश्वनाथ साहू, पंकज साहू, तिरुपति साहू, सरोजनी और कुंती साहू ने।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कुदरत से लता मंगेशकर की आवाज में। शब्द रचना थी मजरूह की और इसे संगीत में बनाया था आरडी बर्मन ने। इस गीत को पसंद किया था गांधी बाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार नसीम बेगम, आयशा खान, हदिया खान, आसमा, सालिया, शुएब, पोत्रा, मुश्तबा खान, रऊफ और शाहिद भाई ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अगला गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, ये गीत आपने सुना फिल्म कर्ज से, स्वर लता मंगेशकर और किशोर कुमार के। आनंद बख्शी के लिखे गीत को संगीत से सजाया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। पसंद किया था आप सभी ने सिंगपुर बंडा से राजेश नेमा, संगीता भावना और प्राची नेमा ने। लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम का अंतिम गीत।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम संग्रहालय से के अंतर्गत धारावाहिक सिसकियां की दूसरी कड़ी।

वैभवी पिक्चर्स प्रस्तुत करते हैं रेडियो धारावाहिक सिसकियां। ये धारावाहिक खेमलता वकलू के उपन्यास खिला फूल मुरझाया पर आधारित है।

तो प्रस्तुत है धारावाहिक की दूसरी कड़ी। पिछली कड़ी में आपने सुना कि सारे का निकाह अपने मामा करीम के लड़के मुश्ताक से हो जाता है। सारे अपने ससुराल में खुश है। उधर सारे की अम्मी बीमार हैं और उसे याद कर रही हैं। अब आगे।

0: वादा ये ले दवा, हकीम जी से लाया हूं, खा ले आराम आ जाएगा।
1: अब बर्दाश्त नहीं होता, नहीं बचूंगी शायद।
0: अरे ऐसा क्यों कहती हो, हकीम जी कहते थे दवा खाने और आराम करने से तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: आराम कहां से होगा, काम कौन करेगा?
0: तुम नाहक ही परेशान होती हो।
1: मैं ना परेशान हूं तो कौन होगा, और घर में है ही कौन? तुम तो काम पर चले जाते हो, दिन भर घर तो मुझे ही संभालना पड़ता है।
0: फाता, घर तो संभालने से ही संभलता है, तुम ठीक हो जाओ, समय पर दवा ले लेना, जिससे दवा का असर जल्द हो।
1: तुम इतनी फिक्र क्यों करते हो मेरी?
0: अरे मैं ना करूं तो कौन है जो तुम्हारी फिक्र करे?
1: सारे होती तो कम से कम दो रोटियां तो सेक कर खिलाती तुम्हें।
0: अरे बेगम, सारे अपने घर में खुश है, फिर उसे क्यों तकलीफ दें? और फिर बेटी अपने घर में रहे,

0: ये कौन सी अच्छी बात है।
1: बात अच्छे बुरे की नहीं है, समय की है। घर में 2 दिन से चूल्हा जला नहीं और तुम भी कुछ खाए नहीं हो। सारे होती तो
0: अरे बाबा, सारे हमेशा यहाँ थोड़े ही रहेगी।
1: बीमारी में भी देखने नहीं आएगी क्या? इतनी बदल गई मेरी बेटी कि माँ को देखने की भी फुर्सत नहीं उसके पास।
0: अरे ऐसा क्यों कहती हो फाता?
1: अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के इतने दिनों में मिलने क्यों नहीं आई?
0: शादी के बाद बेटी का घर ससुराल ही होता है, और सारे कहीं रहे, खुश रहे, और क्या चाहिए हमें?
1: तुम्हें काम पर नहीं जाना क्या?
0: जाऊंगा, बाजार भी जाना है, कुछ जरूरी सामान लेना है।
1: एक बात कहूं,
0: हाँ कहो, क्या बात है?
1: सारे को बुला लेते। आखिर बेटी है हमारी, उसका चेहरा देख लेती तो शायद मन कुछ हल्का हो जाता।
0: बाजार जा ही रहा हूं, कोई उधर मिल गया तो करीम भाई को संदेशा भिजवा दूंगा कि सारे को कुछ दिनों के लिए भेज दें।
1: करीम भाई कोई दूर तो रहते नहीं, तुम ही चले जाना।
0: देखूंगा, समय बचा तो जाऊंगा।
1: अरे नहीं जाओगे तो सारे को वे लोग नहीं आने देंगे।
0: करीम भाई कोई गैर तो नहीं कि सारे को नहीं आने देंगे? अरे तुम नाहक ही परेशान रहती हो।
1: मैं बेकार की परेशान नहीं होती। करीम भाई सारे को नहीं आने देंगे, कोई ना कोई बहाना बनाकर मना कर देंगे।
0: अरे उन्हें बहाना बनाने की क्या जरूरत है? सारे हमारी बेटी है, क्यों रोकेंगे उसे?
1: तुम जो कहो, मैं जानती नहीं क्या कि शादी के इतने दिनों तक ना आने दिया उसे, तो अब क्यों आने देंगे?
0: अरे बेगम, तुम तो परेशान हो जाती हो। अरे परेशान ना हो, आराम करो, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। मैं संदेशा भिजवा दूंगा।
1: ठीक है, जैसा बेहतर समझो।
0: अच्छा, मैं जाता हूँ बाजार।

0: करीम भाई, चलो अच्छा हुआ यहाँ बाजार में ही मुलाकात हो गई। सलाम करीम भाई।
1: अरे अरे हसन भाई, वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। हाँ भाई, सुनाइए कैसे हैं?
0: अल्लाह का रहमो करम है, सब ठीक है।
1: लेकिन आप कुछ परेशान लग रहे हैं।
0: करीम भाई, परेशानी तो जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है, कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है।
1: ओहो, अरे भाई कुछ बताएंगे भी, आखिर बात क्या है?
0: अब क्या बताऊं, फाता बीमार है 2 दिनों से, बुखार उतर ही नहीं रहा।
1: अरे अरे, तो भाई किसी डॉक्टर को दिखाया या नहीं?
0: दवा लाकर दी है, हकीम जी कह रहे थे दवा जल्द असर करेगी।
1: अरे भाई, मौसम का भी असर होता है। अल्लाह से दुआ करूंगा फाता बहन जल्द ठीक हो।
0: करीम भाई, वादा की

0: अच्छा है
1: क्या
0: कि सारे कुछ दिन उसके पास आकर रहे, जिससे उसका मन कुछ हल्का हो जाए।
2: अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। अरे भाई, मैं आज ही मुश्ताक के साथ सारे को भेज दूंगा।
0: बड़ी मेहरबानी होगी आपकी।
2: ओहो, कैसी बात कर रहे हैं हसन भाई। अरे भाई, सारे हमारी बहू है तो आपकी बेटी पहले है, और भाई उस पर आप लोगों का भी हक है।
0: लेकिन सारे के आने से आप लोगों को भी तकलीफ होगी।
2: अरे नहीं, ऐसी क्या बात है। भला सारे अपने घर से अपने घर ही तो जा रही है, और शादी के बाद वहाँ जाना भी नहीं हुआ। अब फाता बहन की इच्छा हो रही है, और भाई तबीयत भी ठीक नहीं है। ऐसे में सारे का अपनी अम्मी के पास होना तो जरूरी भी है। अच्छा, तो अब मैं चलूंगा। आपको भी देर हो रही होगी, और फाता अकेली होगी।
0: अरे नहीं नहीं, अरे रुकिए, एक एक कप चाय तो पी लें, बैठिए। अरे भाई, दो कप चाय देना।
2: हाँ भाई हसन भाई, अब काम कैसा चल रहा है अभी?
0: बाजार तो ठीक है, लेकिन काम आए तो ठीक, मगर अभी तो बिना काम के कई कई रोज गुजर जाते हैं। इसी तरह रहा तो रोजगार ही बदलना पड़ेगा।
2: अरे अरे, ऐसी क्या बात है। और भाई, कसीदाकारी के कपड़ों की तो अच्छी मांग है बाजार में, और सरकार भी तो मदद देती है।
0: आपको क्या लगता है, जिस तरह से सरकारी माहौल बदल रहा है, हम जैसे लोग भी रोजगार चला पाएंगे क्या?
2: आप भी।
0: अरे पहले की बात और थी, लोग बाहर से आते थे और वही लोग हाथों के बने कपड़े खरीदते थे। अरे अब तो उनका आना भी कम हो गया है।
2: अब हम सो तो है भाई, लेकिन हाथ की कारीगरी तो उन्हीं पर टिकी है, और जब वो नहीं तो काम नहीं। सही कहते हो, पर हाँ, अब सरकार भी पहल कर रही है। देखना, कुछ समय में फिर वही पुराना जैसा माहौल आ जाएगा। और भाई, अल्लाह ताला से दुआ करो कि वो वक्त जल्दी आए। हाँ,
0: आमीन।
2: अच्छा भाई, तो हसन भाई अब मैं चलता हूँ, वक्त मिला तो मैं जरूर आऊंगा।
0: अच्छा, सारे को भेजना ना भूलिएगा।
2: अरे नहीं नहीं नहीं, भूलूंगा भाई, आज ही मुश्ताक के साथ भेजूंगा उसे। हाँ
0: अच्छा, खुदा हाफिज।
2: खुदा हाफिज।

0: सारे
1: अरे आ गए आप,
0: हाँ,
1: मैं अभी चाय बना देती हूँ।
0: मैं जरा मुंह हाथ धो लूँ।
1: चाय के साथ रोटी ला दूँ?
0: नहीं, सिर्फ चाय ही दे दो, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा।
1: क्यों, तबीयत तो ठीक है ना आपकी?
0: हाँ, तबीयत तो ठीक है,
1: फिर परेशान क्यों लग रहे हैं?
0: कुछ नहीं सारे, बस काम का बोझ है और कुछ नहीं।
1: तो इतना काम ही क्यों करते हो जो परेशान रहो?
0: सारे, जिंदगी में पैसे का बहुत मोल है और पैसा आराम से कभी किसी को नहीं मिलता। अब पैसा कमाने के लिए मेहनत तो करनी ही पड़ती है।
1: वो तो ठीक है, पर पैसे से खुशी किसे मिली है भला?
0: सारे, पैसे से खुशी ना मिली हो, पर ये अच्छा तरीका तो जरूर है, और आज इसी की कीमत है। जिसके पास पैसा है वो खुशी के तमाम पल खरीद सकता है।
1: देखो जी, ऐसी खुशी मुझे तो नहीं चाहिए जिससे आप अपने आप को गला लें।
0: सारे, तुम्हें नहीं चाहिए, पर वो सारी खुशी मैं तुम्हें देना चाहता हूँ।
1: अच्छा छोड़ो ये बातें, चाय पी लो और कुछ आराम कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि काम के चक्कर में आप अपनी सेहत को ही भूल जाएं।
0: ठीक है सारे। अच्छा, अम्मी अब्बू कहाँ हैं?

0: कोई दिखाई नहीं दे रहा।
1: अम्मी पड़ोस में गई हैं और अब्बा बाजार गए हैं, कुछ जरूरी काम था, आते ही होंगे। लो अब्बा आ गए शायद, देखो तो जरा।
0: हाँ देखता हूँ। अरे अब्बू।
2: कौन मुश्ताक, आ गए काम से?
0: हाँ अब्बू। अब्बू आप बाजार गए थे?
2: हाँ हाँ भाई, वो कुछ जरूरी काम था। तुम्हारी मम्मी कहाँ है?
0: अब्बू अम्मी तो पड़ोस में गई हैं, आती ही होंगी।
2: और वो सारे कहाँ हैं?
0: सारे रसोई में खाना बना रही है, आप चाय लेंगे?
2: बनी हो तो दे दो।
0: सारे अब्बू के लिए चाय लेती आना, मैं भी यही चाय ले लूंगा।
2: हाँ, काम से कब लौटे बेटा?
0: बस अब्बू अभी थोड़ी देर हुई है। और बाजार में क्या हुआ अब्बू?
2: काम तो हो गया। और हाँ, वो सुनो, वो सारे के अब्बा मिले थे। हाँ,
0: अच्छा,
2: सारे को कुछ दिनों के लिए बुलाया है। देखो भाई, हो सके तो तुम भी साथ चले जाना।
0: नहीं अब्बू, मेरे पास समय नहीं है। और ऐसी भी क्या बात है अभी?
2: अरे अरे मुश्ताक भाई, वो फाता की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, दो दिनों से बुखार है और सारे को देखने की रट लगाई रखी है।
0: अब्बू, इस समय सारे का जाना मुमकिन है क्या? मेरे पास वक्त नहीं है।
1: मुश्ताक बेटा, कहाँ जाने की बात हो रही है?
2: अरे बेगम, वो हसन मियां मिले थे आज बाजार में। उन्होंने बताया कि फाता बीमार है और सारे को बुलाया है।
1: अरे तब तो सारे को जाना ही चाहिए।
2: अरे भाई, लेकिन मुश्ताक कह रहा है उसके पास वक्त नहीं है वहां जाने का।
1: वक्त नहीं है? ये क्या बात हुई भला? तो क्या बहू अकेली जाएगी यहाँ से? अरे लोग क्या कहेंगे? सारे है कहाँ?
0: अम्मी वो रसोई में है।
1: जा, सारे को बोल तैयार हो ले, और तू भी उसके साथ चला जा, शायद किसी की जरूरत पड़े वहां।
0: ठीक है अम्मी, बेहतर है।
2: और सुनो, वो मैं गाड़ी वाले को बोल आता हूँ, दोनों को छोड़ आएगा।
1: हाँ, सारे को बोल तैयार हो ले, रसोई मैं बना देती हूँ।
0: जी। सारे सारे
1: जी
0: जरा इधर आना।
1: आई जी, कहिए।
0: तुम्हारी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं, सो हमें जाना होगा।
1: क्या क्या हुआ मेरी अम्मी को?
0: घबराने की कोई बात नहीं, बस थोड़ा सा बुखार है। तुम अपने जरूरत के दो चार कपड़े ले लो, अब्बा अभी गाड़ी लाने गए हैं।
1: अम्मी की तबीयत ज्यादा खराब है क्या?
0: अरे नहीं, तुम बेकार में ही इतना घबरा रही हो। तुम्हारे अब्बा बाजार में मिले थे, उन्होंने ही मेरे अब्बा से कहा है, सब ठीक है। तुम्हारी अम्मी तुम्हें देखना चाहती है।
1: अम्मी से जाने को पूछ तो लेते।
0: हाँ, बात हो गई है और मैं भी तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। अब जल्दी तैयार भी हो लो, नहीं तो देर हो जाएगी। अंधेरा होने से पहले पहुंच जाए तो ठीक होगा।
1: हाँ ठीक है, मैं अभी तैयार हो लेती हूँ। आप भी अपने कपड़े ले लीजिए।
0: अब मेरे कपड़े रहने दो,
1: क्यों,
0: तुम्हें छोड़ मैं उसी गाड़ी से वापस आ जाऊंगा।
1: इतने दिनों बाद जाओगे तो रहोगे नहीं क्या?
0: नहीं, काम बहुत है, वैसे वहां जाने पर देखा जाएगा।
1: ठीक है, मैं अभी तैयार होकर आती हूँ। बस एक थैले में दो चार कपड़े ही तो रखने हैं।

0: कैसी हो अम्मी?
1: जिंदा हूं बस। 2 दिन से बुखार शरीर को तोड़े जा रहा है। अब तो लगता है उठ भी नहीं पाऊंगी।
0: ऐसा क्यों कहती हो अम्मी? तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी।
1: यकीन नहीं होता।
0: यकीन करो अम्मी, तुम ठीक हो जाओगी। मामूली सा बुखार ही तो है, दवा लेने से ठीक हो जाएगा।
1: मुश्ताक भी आया है क्या?
0: हाँ अम्मी, वो भी आए हैं।
1: मुश्ताक आया है तो अभी रहेगा ना? कुछ बना ले, ऐसा कर उससे पूछ ले क्या खाएगा, वही बना लेना।
0: अम्मी, मुश्ताक तो यहाँ शायद ना रहे, उनका काम बढ़ गया है और मौसम भी ठीक है। काम में जाया करने से बहुत नुकसान हो जाएगा।
1: अच्छा, मुश्ताक के लिए चाय बना दे।
0: जी अम्मी, अभी बना देती हूँ।
1: बेटी मैके आती है तो आराम पाती है, पर एक मैं हूं जो बेटी के पहले मैके वापसी पर भी उसी से काम करा रही हूं।
0: अम्मी, ऐसा क्यों सोचती हो? क्या अब ये मेरा घर नहीं रहा कि मैं यहाँ कुछ काम ना करूं?
1: तू माँ का दर्द नहीं समझ सकती। तू तो वहां भी दिन रात काम करती रहती होगी, यहाँ आई तो भी काम करना पड़ रहा है। ये अच्छा तो नहीं लगता बेटी।
0: अम्मी, तू भी क्या कहती है? पहले तू ठीक हो जा, फिर मैं आराम से कुछ दिन तेरे पास रह लूंगी।
1: मुश्ताक मानेगा क्या?
0: पहले तू ठीक तो हो जा, फिर देखूंगी।
1: अच्छा, जरा पानी तो पिला दे बिटिया।
0: हाँ, अभी देती हूँ।
1: अब तो 1 गिलास पानी भी पिलाने वाला नहीं है कोई।
0: अम्मी, लो पानी।
1: बेटी,
0: अम्मी, तू बेकार की बात सोच सोच कर परेशान क्यों होती है? अब मैं आ गई हूं ना, अब तू जल्दी से ठीक हो जाएगी।
1: तू एक माँ की बात नहीं समझ पाएगी सारे। मेरी बच्ची अभी तो छोटी है, ये दुनियादारी की बातें तेरी समझ से दूर हैं।
0: ये क्या कह रही हो अम्मी? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। तू आराम कर, मैं अभी चाय बनाकर लाती हूँ और देखती हूँ कि खाने में क्या बन सकता है।
1: अच्छा, मुश्ताक अगर अभी जाएगा तो जल्दी में जो हो सके वही बना ले।
0: ठीक है अम्मी, तुम फिक्र मत करो।
1: सारे,
0: हाँ अम्मी, कहो।
1: बेटी तो खुश तो है ना मुश्ताक के साथ?
0: तू ये क्यों पूछ रही है अम्मी? मैं खुश हूँ।
1: नहीं, वैसे ही करीम और फजी कैसे व्यवहार करते हैं?
0: बहुत प्यार है उन्हें मुझसे।
1: हाँ भाई, आखिर क्यों ना हो। तू सुबह से रात तक मजदूर की तरह कमर तोड़ मेहनत जो करती है, कोई मजदूर भी इतनी मेहनत ना करे। और तू?
0: अम्मी, तू भी कैसी बातें करती है? वो मेरा घर है और मैं काम ना करूंगी तो भला कौन करेगा?
1: तो कुछ समझती ही नहीं। वे लोग तुम्हें नौकरानी बना कर रखे हुए हैं और तू खुश हो रही है कि वो तेरा अपना घर है।
0: अम्मी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं, तू नाहक ही परेशान हुए जा रही है।
1: अरे सारे, तू ना उस घर गई होती तो क्या मुश्ताक कभी इतना कमा पाता? अरे वो तो तेरी किस्मत है कि तेरी दुआ से मुश्ताक कमा रहा है, और जिसके आमदनी पर तुम्हारा हक होना चाहिए उस पर करीम और फजी राज कर रहे हैं, और तुम नौकरानी की तरह दिन रात मेहनत करती हो।
0: अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हो? करीम और फजी कोई गैर तो नहीं कि वो मुश्ताक के पैसे को खर्च ना कर सके? आखिर वो मुश्ताक के माँ बाप हैं।

0: अरे तू ठहरी भोली भाली, पर करीम और फजी को तो शर्म मानी चाहिए जो बेटे के पैसों से ऐश करते हैं और बहू को नौकरानी बनाकर रखा है, और तू उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रही है।
1: अम्मी ऐसा ना कहा करो, अब तो वही मेरा घर है और मुश्ताक मेरा शौहर है। वो जैसी भी रखेगा मैं वैसी ही रह लूंगी अम्मी, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि करीम और फजी मेरे साथ गलत सुलूक कर रहे हैं।
0: अरे बिटिया सारे, तुम जो भी कहो पर मैं तेरी माँ हूँ और मैं तेरे भले की कहती हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो शादी के बाद करीम व फजी ने क्या एक बार भी तुम्हें आने ना दिया होता? क्योंकि वो चाहते हैं कि तू अपने माँ बाप को भूल जा और उनके घर नौकरानी बनकर रह। मुश्ताक कमाता है पर आज तक तुम्हें क्या दिया? काम करो तो दो रोटी कोई भी दे दे, पर क्या परिवार ऐसा होता है? जरा सोचो, आज अगर तुम यहाँ होती या मुश्ताक के साथ अलग होती बिटिया, तो क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे जमा ना होते? तुम्हारे पास ऐशो आराम होता और तुम खुश होती। मुश्ताक भी तुम्हें प्यार नहीं करता। अगर ऐसा होता तो तुम्हें उस नरक से निकाल कर अलग कहीं रखता जहां तुम खुश होती।
1: अम्मी, अम्मी, मुश्ताक मुझसे प्यार करता है। तू ऐसा मुझसे ना कहा कर अम्मी। और मुश्ताक का घर कोई नरक तो नहीं जो मैं वहां खुश नहीं हूं?
0: अरे जाने दे, सारे हर मर्द एक जैसा तो होता नहीं, पर होता तो मर्द ही है। और औरत को हमेशा से दूसरे दर्जे का ही मानता रहा है, और मुश्ताक भी तो एक मर्द ही है। अगर वो ऐसा ना होता और तुमसे प्यार करता होता तो वह तुम्हें उस नरक से बाहर कहीं और घर लेकर रखता जहां तुम रानी की तरह रहती। सारे मेरी बात मान, तो अब भी कुछ नहीं बिगड़ा। मुश्ताक को कहो कि वो अलग मकान लेकर रहे या यहीं आ जाए, यहाँ घर की कमी तो नहीं?
1: नहीं अम्मी, मैं मुश्ताक के साथ ठीक हूँ, खुश हूँ। और अलग मकान लेकर रहने की क्या बात हुई भला? यहाँ आकर रहने की तो मैं सोच भी नहीं सकती।
2: अभी आप सुन रहे थे संग्रहालय से कार्यक्रम के अंतर्गत रेडियो धारावाहिक सिसकियां की दूसरी कड़ी। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब पेश है इस घंटे की

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोपाल की ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। न्यायालय ने कहा कि जमानत देते समय सत्र न्यायालय ने पीड़िता के परिवार के आरोपों को नजरअंदाज किया। ट्विशा के शरीर पर पाए गए कुछ घाव उनकी मृत्यु के पहले से थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम की 134वीं कड़ी में लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800 11 7800 अथवा नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव 29 मई तक भेज सकते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान के बीकानेर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कहा कि देश की सीमाओं से 15 किलोमीटर के अंदर किसी भी अवैध निर्माण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने ऐसे सभी अवैध ढांचों को तुरंत ध्वस्त करने के निर्देश दिए हैं। स्वावलंबी गौशाला नीति 2025 के तहत राज्य में बड़े पैमाने पर गौशालाएं बनाने की तैयारियां की जा रही है। हर गौशाला में कम से कम 5000 गौवंश रखना जरूरी होगा, जिसमें 30% दुधारू नस्ल की गायें होंगी। इसके लिए सरकार 125 एकड़ तक जमीन उपयोग के लिए देगी। उज्जैन में सिंहस्थ 2028 को ग्रीन सिंहस्थ थीम पर सजाने की तैयारी शुरू हो गई है। ग्रीन सिंहस्थ के तहत 10 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। और आईपीएल क्रिकेट में कल शुक्रवार को दूसरे क्वालिफायर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस आमने सामने होंगे। इनमें से विजेता टीम 31 मई रविवार को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ अहमदाबाद में फाइनल मुकाबला खेलेंगी। आप सुन रहे थे इस घंटे की।

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए अब सुनिए महिला कार्यक्रम। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से है।

महिला सभा सुनने वाली हमारी सभी सखियों का स्वागत अभिनंदन उनके अपने महिला सभा कार्यक्रम में। और आज आपके साथ हूँ मैं, आपकी अपनी सखी रुबीना। आप सभी को हमारा नमस्कार। सखियों, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश का इतिहास बहुत समृद्धशाली और गौरवपूर्ण रहा है, जिसमें अनेक ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं जिन्हें आज भी याद किया जाए तो हम खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं। ऐसे अनेक आदर्श व्यक्तित्व हमारे देश में हुए हैं जिनकी चर्चा हमें आज भी रोमांचित कर देती है। ऐसे ही एक प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी थे वीर सावरकर, जिनका असली नाम था विनायक दामोदर सावरकर। वे क्रांतिकारी, स्वतंत्रता सेनानी, चिंतक, समाज सुधारक, कवि, ओजस्वी वक्ता थे। उनके वीरतापूर्ण कृतियों की वजह से ही उन्हें उनके समर्थकों द्वारा वीर सावरकर के नाम से संबोधित किया जाने लगा। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 28 मई 1883 में ब्रिटिश भारत के बंबई प्रेसिडेंसी में नासिक जिले के भागपुर गांव में हुआ था। जब वे 9 वर्ष के हुए तो उनकी माता और 16 वर्ष के हुए तो उनकी पिता का देहांत हो गया। दुख और कठिनाई के बीच उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और युवावस्था के साथ एक क्रांतिकारी के रूप में उभर कर आए। बंगाल विभाजन के बाद उन्होंने पुणे में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई। फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में, जहां वे पढ़ाई भी करते थे, राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत ओजस्वी भाषण देते थे और पत्रिकाओं में उनके लेख प्रकाशित होते थे, जिसमें उन्होंने प्रमाण सहित यह सिद्ध किया कि 1857 का संग्राम गदर नहीं बल्कि भारत की आजादी का प्रथम संग्राम था। इन्होंने अभिनव भारत नामक एक क्रांतिकारी संगठन की भी स्थापना की। लंदन में वकालत की पढ़ाई करने के दौरान वहीं लंदन में प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की स्वर्ण जयंती मनाई। उनके क्रांतिकारी कृत्यों के कारण उन्हें लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया और जब उन्हें जहाज के रास्ते भारत लाया जा रहा था तो वे सीवर होल के रास्ते भाग निकले। उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई और काला पानी की सजा मिलने पर सेलुलर जेल भेजा गया। यहाँ भी उनका आक्रोश उनकी कविताओं और लेख में स्पष्ट दिखाई देता रहा। सखियों, वीर सावरकर दुनिया के पहले राजनीतिक कैदी थे जिनका मामला हेग के अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में चला था और 10 वर्ष के बाद वे जेल से रिहा हुए। उन्होंने जाति भेद, छुआछूत जैसी कुरीतियों का विरोध किया और समाज सुधारक के रूप में उनका व्यक्तित्व सामने आया। देश प्रेम और भक्ति की भावना उनके द्वारा मराठी

भाषा में लिखे साहित्य के 10,000 पन्नों में और अंग्रेजी भाषा के 1,500 से अधिक लिखे पन्नों में स्पष्ट दिखाई देती है। सखियों, आपने एक पुरानी फिल्म काला पानी का नाम तो सुना ही होगा। वह फिल्म वीर सावरकर के व्यक्तित्व पर ही बनी थी। पोर्ट ब्लेयर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम भी वीर सावरकर के नाम पर ही रखा गया है। आज भी सावरकर के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए भारत में अनेक संस्थाएं कार्यरत हैं। आजाद भारत में वे हिंदू महासभा के अध्यक्ष बनकर कार्य करते रहे। उनका मानना था कि जब किसी व्यक्ति के जीवन का मिशन पूरा हो जाए और वह समाज के लिए और योगदान ना दे सके, तो उसे अपनी शर्तों पर जीवन त्याग देना चाहिए। इसे उन्होंने आत्मार्पण का नाम दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने 1 फरवरी 1966 से उपवास शुरू कर दिया। 26 दिनों तक भूखे प्यासे रहने के कारण धीरे धीरे उनका शरीर पूरी तरह कमजोर हो गया और 26 फरवरी 1966 को उनका देहांत हो गया। ऐसे साहसी ओजस्वी व्यक्तित्व के धनी वीर सावरकर की जयंती के अवसर पर हम उन्हें नमन करते हैं।

0: ए आर रहमान की आवाज़ में हमने सुना ये गीत। फिल्म का नाम था स्वदेश। ऐसा कहा जाता है सखियों कि अच्छे पड़ोसी किस्मत से मिलते हैं। बात भी सही है, पड़ोस अच्छा हो तो जीवन की आधी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। तो क्यों ना पड़ोसी से सद्व्यवहार बना कर रखा जाए। आइए इसी बात पर सुनते हैं विधि गौतम से यह वार्ता। विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें।
1: नमस्कार, आज की वार्ता का विषय है पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें। आज के समय में एकल परिवार बहुतायत से मिलता है, किंतु कुछ समय पूर्व संयुक्त परिवार हुआ करते थे। उस समय पड़ोसियों की परिभाषा भिन्न हुआ करती थी। इस संबंध में मैं सबसे पहले आपसे बात करना चाहूंगी। आज से लगभग 4 दशक पूर्व जनसंख्या का आंकड़ा इतना विस्फोटक नहीं हुआ था तथा संयुक्त परिवारों का चलन थोड़ा बहुत बाकी था। उस समय के लोगों के पास जमीन जायदाद के रूप में बड़े बड़े मकान हुआ करते थे। अधिकांशतः बड़े संयुक्त परिवारों के विभाजन में इन्हीं बड़े बड़े मकानों के बंटवारे हुआ करते थे और पड़ोसी के रूप में प्रायः पारिवारिक लोग और रिश्तेदार ही हुआ करते थे। उस समय के लोगों के पड़ोसी धर्म के रूप में पारिवारिक तथा सामाजिक मर्यादाएं जुड़ी रहती थी। बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ सामाजिक मान्यताएं तथा परंपराएं भी बदलने लगी। स्थानीय उद्योग व्यापार तथा खेती किसानी के सीमित साधनों के चलते लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद नौकरी अथवा व्यवसाय हेतु अन्यंत्र जाने लगे और किराए के आवास में रहने के कारण ऐसे लोगों के पड़ोस बदले, पड़ोसी बदले और उनके पड़ोसी धर्म में भी बदलाव आया। यही बदलता पड़ोसी धर्म सांस्कृतिक बदलाव का कारक भी बना। बढ़ती जनसंख्या ने ही छोटे बड़े शहरों में आवासीय समस्या के समाधान की दिशा में अपार्टमेंट कल्चर को जन्म दिया। इस बदले अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोस और पड़ोसी धर्म की धारणाएं तथा मर्यादाएं भी बदल गई। इस अपार्टमेंट कल्चर में पड़ोसियों से सद्व्यवहार जीवन को खुश

नुमा और दुर्व्यवहार जिंदगी को खौफजदा बना देता है। अपार्टमेंट कल्चर में साफ सफाई, पानी तथा सुरक्षा हेतु चौकीदार आदि की व्यवस्थाएं सामूहिक रहती हैं। इसीलिए अपार्टमेंट के रहवासियों को चाहिए कि वे उदार मना सहयोगी और सहिष्णुता से पड़ोसियों से आपसी तालमेल बनाकर रहें, क्योंकि हर सुख दुख एवं विपत्ति के समय आपके दरवाजे पर पड़ोसी ही सबसे पहले खड़ा होने वाला रहता है। ऐसे समय आपका सद्व्यवहार ही काम आता है। सामान्यतः पड़ोस में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई नौकरी पेशा तो कोई व्यापारी अथवा उद्यमी। सभी की प्राथमिकताएं और अपेक्षाएं अलग अलग रहती हैं। इनमें महिलाएं, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग सभी तरह के लोग होते हैं, जिनके स्वभाव में भिन्नता भी रहती है। इन सभी लोगों के साथ सद्व्यवहार का स्वरूप भी कमोवेश बदल ही जाता है। जहां बच्चे पड़ोसियों से प्यार भरा व्यवहार चाहते हैं, तो बड़े और बुजुर्ग आदर भाव और सम्मान भरा व्यवहार चाहते हैं। यह कहावत भी सही है कि जैसा हम बोएंगे वैसा ही काटने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य, जैसा व्यवहार आपका दूसरे लोगों से होगा वैसा ही व्यवहार आप उनसे पाएंगे। अब प्रश्न उठता है, सद्व्यवहार क्या होता है? इस पर भी विचार करना जरूरी है, जो सभी वर्ग और समुदाय पर लागू हो। सभी से संतुलित तथा मीठे बोल बोलना, किसी के भी प्रति विद्वेष अथवा नीचा दिखाने की भावना का न होना, पड़ोसियों के प्रति उचित सहयोग के लिए तत्पर रहना, किसी को भी अनुचित तथा अवैध एवं दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले कृत्यों से दूरी बनाए रखना, ये सभी सद्व्यवहार की श्रेणी में आते हैं। आपका पड़ोसी आपका मित्र भी हो सकता है या फिर संबंधी। यदि नहीं तो मित्रवत अथवा संबंधी सदृश संबंध बनाए जा सकते हैं, जो कि औपचारिक संबंधों से ऊपर उठकर होते हैं, जिनमें गहराई रहती है। ऐसे संबंध उत्कृष्ट सद्व्यवहार की कोटि के माने जाते हैं। इस तरह के संबंधों में जरा सी चूक विग्रह का कारण बन सकती है। इस बात को सदैव ध्यान रखना आवश्यक है। छोटी छोटी सी भूल चूक की नजरअंदाज करने में कोई कटुता की गुंजाइश नहीं रहती। इस तरह की बातें भी सद्व्यवहार की ही परिधि में आते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं, तो आपके सहकर्मी जो आपके अगल बगल या आमने सामने बैठकर कार्य करते हैं, वे भी एक तरह से पड़ोसी ही कहलाते हैं, क्योंकि उनके बीच में आपका 8 से 10 घंटे का समय बीतता है। इसीलिए उनसे भी सद्व्यवहार करना आवश्यक है। सहकर्मियों के साथ सद्व्यवहार आपके कार्यस्थल के वातावरण को शांतिमय बनाता है। सहकर्मियों के बीच में सद्व्यवहार बना रहे, इसके लिए आवश्यक है कि कार्यस्थल की वांछनीय गोपनीयता बनाए रखना, एक दूसरे सहकर्मी की शिकायत या चापलूसी करने से बचना, दूसरे के कामों में अनावश्यक दखल न देना, ये सभी बातें सहकर्मियों से सद्व्यवहार बनाए रखने में मददगार होती हैं और स्वयं तनाव मुक्त रह सकते हैं तथा अपना कार्य निष्पादन निश्चिंत होकर कर सकते हैं। अब बात आती है, जब पड़ोसी पारिवारिक या रिश्तेदार हो, ऐसे पड़ोसियों की अपेक्षाएं कुछ ज्यादा ही होती हैं और संबंध भी संवेदनशील रहते हैं। ऐसे पड़ोसियों से सतर्क रहने की जरूरत है और उलझन भरे मामलों से दूरी बनाकर रहने में ही भलाई रहती है। किंतु रिश्तेदारी वाले पड़ोसियों से मान सम्मान वाले बर्ताव का निर्वहन भी जरूरी है। अब बात आती है, जब पड़ोसी किसी और धर्म के अनुयायी हो, ऐसे पड़ोसियों से संबंध बेहतर रहे और उसके लिए चाहिए कि आप स्वयं अपने धर्म के आडंबर और हठ धर्मिता को स्थान न दें और पर धर्म अर्थात पड़ोसी के धर्म का सम्मान करें, साथ ही उन्हें अपनी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं पूरी करने दें और उनके धार्मिक उत्सवों पर अपनी शुभकामनाएं अवश्य दें, जिससे पड़ोसियों से धार्मिक सद्भाव सदा बना रहे। पड़ोसियों से कभी कभार
पैसों का लेन देन भी करना।

0: यह एक संवेदनशील मामला है, इसीलिए यह ध्यान रखना आवश्यक है कि ऐसा पड़ोसी कैसा है, पैसों के लेन-देन के मामले में पाक साफ है या नहीं। ऐसा पूरी तरह सोच विचार कर ही इस तरह के लेन-देन को एक सीमा तक ही करना चाहिए। वैसे भी अपने आसपास के पड़ोसियों की पूरी जानकारी आपको रहना चाहिए कि आपका पड़ोसी कैसा है। यह जानकारी आप परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि उनको इस बात की भनक नहीं लगना चाहिए कि आप उनके संबंध में पूरी जानकारी ले रहे हैं। पड़ोसी के विषय में जानकारी रहने पर आपको उससे कैसा बर्ताव करना है, इसमें मदद मिलेगी। आपके पड़ोसी सभी तरह के हो सकते हैं, किंतु सद्व्यवहार एक सामान्य सी भाषा है, जिसमें संतुलित एवं मीठे बोल सम्मान की भाषा के साथ बोले जाएं। यदि आपने यह मूल मंत्र अपने जेहन में उतार लिया है, तो पड़ोसी आपके सद्व्यवहार के कायल तो रहेंगे ही, आप उनसे भी उचित सम्मान और सद्व्यवहार पाएंगे। धन्यवाद।
1: पड़ोसी से सद्व्यवहार बनाए रखें, इस विषय पर हमने सुनी विधि गौतम से यह वार्ता। और आइए एक बार फिर आपको लिए चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनते हैं उदित नारायण और महालक्ष्मी अय्यर की आवाज में टशन फिल्म का ये गीत।

0: उम्मीद करते हैं सखियों आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। और अब दीजिए इजाजत अपनी सखी रुबीना को। नमस्कार।
1: आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे महिला कार्यक्रम। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। समय है एक अंतराल का।
2: भारत की संस्कृति का दर्पण प्रसार भारती है कराता। भारत के हर रूप का दर्शन कभी भारत की बदलती तस्वीर है, कभी भारत की बदलती आवाज, कभी भारत की बदलती सोच है, कभी भारत का बदलता अंदाज। प्रसार भारती भारत का आने वाला कल है प्रसार भारती भारत का बदलता आज।
3: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी।

Rotata. फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। रामायण दिखी लेखू दिखा, चित्रहार दिखा, महाभारत दिखा, एशियाड दिखा, पोखरण दिखा, मिस वर्ल्ड दिखी, वर्ल्ड कप दिखा, चंद्रयान दिखा, इनसैट।

0: दिखा, नई कहानियों ने नया भारत लिखा। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। कहानी नहीं है, फील नहीं है, बिली और फैमिली के साथ रील नहीं है। जुबली हिट्स भी है, न्यू हिट टॉप भी है, कंटेंट क्रिएशन भी है, हिप हॉप भी है, न्यू रिलीजेस, बॉलीवुड की न्यू थिंग भी है। एवरग्रीन भी है कहानी, एवर बीन टोल्ड। जेन जी भी है ऑल्सो जेन ओल्ड, नई पुरानी, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स, बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से अब प्रस्तुत किया जा रहा है कार्यक्रम लोक संगीत। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के भेंट है। आज इसमें आप सुनेंगे रेवाराम मेहरा के गाए लोकगीत। कार्यक्रम का आरंभ कर रहे हैं लोक

रेवा राम मेहरा के स्वर में अभी आप सुन रहे थे ये बारहमासी लोकगीत। इसी के साथ लोक संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट था। आकाशवाणी का ये मध्य प्रदेश प्रसारण है। लीजिए अब सुनिए सुगम संगीत। आज इसमें आप सुनेंगे जबलपुर केंद्र के योगदान से सुनुति महेश्वरी के स्वर में भजन। सबसे पहले सुनते हैं देशगान।

0: सुनीति महेश्वरी के स्वर में अभी आप सुन रहे थे भजन। आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र के योगदान से अभी आप सुन रहे थे सुगम संगीत। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, समय है एक अंतराल का।
1: सुनिए NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे आकाशवाणी भोपाल पर।
2: कभी हंसाकर, कभी रुलाकर, कभी कहानी बनकर तो कभी कविता बनकर, कभी कोई तराना तो कभी जिंदगी नामा, कभी खबरें हमारी जिंदगी में रंग भरे, मन की बात, जन जन की बात, 1936 से आकाशवाणी आपके

ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में हम आपको सुनवा रहे हैं आशा भोसले की आवाज में उमराव जान फिल्म की ये गजल।

आशा भोसले की ही आवाज में आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत। संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है जीने की राह। इस गीत में आशा भोसले के साथ आप सुनेंगे उषा मंगेशकर और हेमलता की आवाज।

0: जीने की राह फिल्म के इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत है प्रादेश

0: नमस्कार, समाचार के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। यह अवशेष भगवान बुद्ध के दो प्रमुख शिष्यों सारिपुत्र और मौद्गल्यायन से संबंधित है। इन अवशेषों को आज भोपाल के राजा भोज हवाई अड्डे से राजकीय सम्मान के साथ दिल्ली लाया जाएगा। नई दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय में कल इन्हें सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए रखा जाएगा। इसके बाद 30 मई को भारतीय वायुसेना का एक विशेष विमान इन्हें मंगोलिया ले जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज टू के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, किसानों की आजीविका को बेहतर बनाना और देशवासियों को पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि
1: कहने के लिए नहीं कह, देश के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारे खाद्यान्न के भंडार भरे रहे। 140 करोड़ का देश हमारा आज दुनिया पर डिपेंड नहीं रह सकता, और वो खाद्यान्न के भंडार भरने का, देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व हमारे किसान भाइयों और बहनों का है। और इसलिए मैं कहता हूं अन्नदाता मतलब जीवन दाता, और हम उनको सहयोग करने वाले। अभी सेक्रेटरी एग्रीकल्चर ने आपके सामने प्रेजेंटेशन किया, 2 दिन का ये कार्यक्रम केवल कर्मकांड नहीं है, प्रधानमंत्री जी के संकल्प और देश की जनता का सपना पूरा करने का सबसे प्रभावी माध्यम है।
0: देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ईद उल अजहा पर देशवासियों को बधाई देते हुए कहा कि ये त्योहार भक्ति, त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि ये पर्व हमें वंचितों की सेवा करने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी है। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई। इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। दोनों शहरों में आज भी तीव्र लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। शिवपुरी जिले में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग और रोजगार विभाग द्वारा कल युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। झाबुआ जिले में पड़ रही भीषण गर्मी और पेयजल आपूर्ति व्यवस्था को देखते हुए कलेक्टर ने पेयजल आपूर्ति कार्य में लगे अधिकारी और कर्मचारियों के अवकाश पर प्रतिबंध लगा दिया। और गुना में दिव्यांगजन जागरूकता, संवेदनशीलता एवं समावेशी अभिषण योजना विषय 3 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ हुआ। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर समाचार थोड़ी देर में आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12 की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमरीका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। और बैडमिंटन में पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। अब समाचार विस्तार से। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने विद्यार्थियों को आश्वस्त किया है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई द्वारा शुरू की गई नई ऑन स्क्रीन मार्किंग ओएसएम प्रणाली अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक प्रगतिशील साधन है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में सीबीएसई अधिकारियों के साथ बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में ये बात कही। सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा के पुनर्मूल्यांकन पोर्टल में ओएसएम प्रणाली में विसंगतियों और तकनीकी खराबी को लेकर श्री प्रधान ने स्वीकार किया कि कुछ मुद्दे सामने आए हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को आश्वासन दिया कि चल रही पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया के दौरान सभी शिकायतों का समाधान किया जाएगा।
2: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही है, इसको मैं दायित्व लेता हूँ, उसको इसे ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की ऑन आंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 तथा 7 जून को आयोजित की जाएंगी। ईद उल अजहा के कारण तिथियां पुनर्निर्धारित की गई हैं। एनटीए ने बताया कि 31 मई को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं। 6 और 7 जून की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिक्किम पुलिस को आज प्रतिष्ठित राष्ट्रपति पुलिस ध्वज से सम्मानित किया। अलंकरण परेड का आयोजन गंगटोक में पालजोर स्टेडियम में किया गया था। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाला सिक्किम देश का 15वां राज्य और पूर्वोत्तर का 3रा राज्य बन गया है। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बल को अधिक नागरिक केंद्रित बनने का आग्रह किया। उन्होंने पुलिस बल से विशेष रूप से महिलाओं, निर्धनों और बच्चों के प्रति संवेदनशील रहने का आग्रह किया।
3: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियाँ सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कर्नाटक के संसदीय कार्य मंत्री एच के पाटिल ने सिद्धारमैया द्वारा बुलाई गई बैठक के बाद ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि डी के शिवकुमार अब मुख्यमंत्री का पदभार संभालेंगे। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने आज बंगलुरु स्थित अपने आवास पर मंत्रिमंडल सहयोगियों को आमंत्रित किया था। हमारे संवाददाता ने बताया है कि उप मुख्यमंत्री डी के शिवकुमार भी इस बैठक में उपस्थित थे।
4: कर्नाटक की राजनीति में आज लंबे समय से चल रही अटकलों पर विराम लग गया। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच आज हुई नाश्ते की बैठक के दौरान दोनों नेताओं का गले मिलना इस बदलाव का साफ संकेत माना गया। मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार सिद्धारमैया आज दोपहर 2:30 बजे लोकभवन जाएंगे और 3 बजे मीडिया को संबोधित करेंगे। राज्यपाल के दौरे पर होने के कारण वे अपना इस्तीफा राज्यपाल सचिव को सौंपेंगे। श्री सिद्धारमैया कर्नाटक के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले मुख्यमंत्रियों में शामिल हैं। सुधींद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: भारतीय जनता पार्टी ने आज 3 राज्यों और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने पूर्वी दिल्ली के सांसद और केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली का, डॉ. अर्चना गुप्ता को हरियाणा का और केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब भाजपा का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा भाजपा अध्यक्ष बनाया गया है। अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य के पास एक दूसरे पर हमले किए हैं, इससे मौजूदा संघर्ष विराम और कमजोर हो गया है। एक रिपोर्ट।
5: अमेरिका ईरान संघर्ष विराम अब लगभग फिर से सीधे सैन्य टकराव में बदल चुका है। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास वाणिज्यिक जहाजों को निशाना बना रहे ईरान के 4 ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके जवाब में ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया है कि उन्होंने एक अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है। इस बीच इसराइली सेना ने लेबनान में अप्रैल में लागू हुए संघर्ष विराम के बाद अब तक का सबसे बड़ा निकासी आदेश जारी किया है। इसमें ज़हरानी नदी के दक्षिण में रहने वाले सभी नागरिकों को तुरंत उत्तर की ओर जाने को कहा गया है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मंगलवार को हुए हमलों में 31 लोगों की मौत हो गई तथा 40 लोग घायल हुए हैं। उधर दोहा में जारी शांति वार्ता का उद्देश्य मौजूदा संघर्ष को समाप्त करना और होर्मुज जल डमरू मध्य को दोबारा खोलना है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
1: भारत और चीन ने सीमावर्ती क्षेत्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए शांति तथा स्थिरता बनाए रखने में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया। दोनों देशों ने भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र WMCC की 35वीं बैठक के दौरान स्थिति की समीक्षा की। ये बैठक कल पेइचिंग में हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व पूर्वी एशिया के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया और चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यांची ने किया। विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने आज साइप्रस जिमनिच सम्मेलन के दौरान स्पेन के विदेश मंत्री जोस मैनुअल अल्वारेस से मुलाकात की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में डॉ. जयशंकर ने बताया कि बैठक में भारत और स्पेन के बीच व्यापार, प्रौद्योगिकी, रक्षा और जन संबंधों को लेकर आगे की योजनाओं पर चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर जिले के पिंगला के 2 व्यक्तियों को कल अदालत ने पाकिस्तानी ISI के लिए जासूसी के आरोप में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया है। आरोपी शेख मुरसलीन और गौतम खारा को पश्चिम बंगाल पुलिस की विशेष कार्यबल ने गिरफ्तार किया। बिहार के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में भीषण आंधी, बिजली गिरने और ओलावृष्टि के कारण 8 लोगों की मौत हो गई। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जानमाल के नुकसान पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि तुरंत देने की घोषणा की है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा हत्याकांड में सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है। भोपाल सत्र न्यायालय ने उन्हें 15 मई को जमानत दी थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसे बकरीद भी कहा जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति CP राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईद उल अजहा पर

0: देशवासियों को बधाई दी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ताजुल मस्जिद में नमाजियों ने देश में शांति, समरसता और न्याय के लिए प्रार्थना की।
1: मध्य प्रदेश के तमाम शहरों में आज ईद उल अजहा यानी बकरीद का त्योहार खुशी और अमन के साथ मनाया जा

0: की जाए। अभिनव गोयल, आकाशवाणी, भोपाल।
1: पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
2: ईद उल अजहा बलिदान का पर्व आज देश के हर एक जगह के साथ पश्चिम बंगाल में भी ये खुशी के साथ मनाया जा रहा है। कोलकाता में ईद की नमाज पारंपरिक रेड रोड के बजाय ब्रिगेड परेड ग्राउंड में अदा की गई। ऐतिहासिक नाखुदा मस्जिद में नमाज दो सत्रों में आयोजित की गई ताकि सड़कों पर भीड़ ना हो। राज्य सरकार ने शांति और अनुशासन बनाए रखने के लिए कोलकाता हाईकोर्ट के पुराने निर्देश की सख्ती से लागू किया है। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलकाता से कश्फिन नहार।
1: श्रीलंका से हमारे संवाददाता ने बताया है कि ईद उल अजहा का त्यौहार वहाँ हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है।
3: आज श्रीलंका में ईद उल अजहा यानी बकरीद श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई जा रही है। सुबह मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई, जहां लोगों ने अमन, भाईचारे और कुर्बानी के संदेश को याद किया। परिवारों और समुदायों ने मिलकर त्योहार मनाया तथा जरूरतमंदों में भोजन और सहायता वितरित की। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारादिसनायका ने भी सभी को ईद की शुभकामनाएं देते हुए देश में एकता और सद्भाव बनाए रखने का संदेश दिया। अहमद मुइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
1: कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। दो दिन के सम्मेलन का उद्देश्य आगामी खरीफ ऋतु के लिए रणनीतियों पर विचार विमर्श करना है। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर अपनी ही पार्टी के सांसद कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उन पर अपमानजनक तथा महिला विरोधी व्यवहार का आरोप लगाया है। बारासात निर्वाचन क्षेत्र से सांसद काकोली ने आरोप लगाया कि कल्याण बैनर्जी ने लोकसभा के अंदर बार बार उनका मौखिक उत्पीड़न किया। काकोली का मानना है कि कल्याण को इस मामले में दंडित किया जाना चाहिए। मेघालय मंत्रिमंडल ने फिटनेस प्रमाण पत्रों के नवीनीकरण न कराने पर लगने वाले जुर्माने में 90% की छूट देने वाली एकमुश्त निपटान योजना को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल ने इस एकमुश्त निपटान योजना के तहत मोटर वाहन कर और यात्री तथा माल कर से संबंधित जुर्माने में 80% की अतिरिक्त छूट को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और लोकप्रिय फिल्म अभिनेता एनटी रामाराव को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एनटी रामाराव जन कल्याण और शासन के प्रति अपनी वचनबद्धता के लिए याद किए जाते हैं। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज भारत का प्रदर्शन शानदार रहा। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु, पुरुष डबल्स की जोड़ी चिराग शेट्टी तथा सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और मिक्स डबल्स की जोड़ी ध्रुव कपिला तथा तनिषा क्रास्टो सभी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। महिला सिंगल्स के राउंड ऑफ 16 में सिंधु ने जापान के रिको गुंजी को सीधे गेम में 21-9, 21-12 से हराया। इस जीत के साथ सिंधु क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई, जहां उनका मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। मौसम विभाग ने पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कोंकण, गोवा, ओडिशा, पंजाब, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी आज लू की आशंका है। अगले दो दिन के दौरान आंध्र प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। ओडिशा में आज रात मौसम गर्म रहने की संभावना है, जबकि राजस्थान और उत्तर प्रदेश में कल तक धूल भरी आंधी चल सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस बलों से नागरिक केंद्रित और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील होने का आग्रह किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में विसंगतियों से संबंधित छात्रों की सभी शिकायतों के समाधान का आश्वासन दिया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफे की घोषणा की। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के पास अमेरिका और ईरान के हमलों से संघर्ष विराम

0: और कमजोर हुआ। कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अज़हा पूरे देश में धार्मिक उत्साह के साथ मनाया जा रहा है और बैडमिंटन में पीवी सिंधु तथा लक्ष्य सेन का सिंगापुर ओपन के सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में प्रवेश। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। दोपहर के 2:30 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। श्रोताओ, आपके पत्रों द्वारा भेजी गई फरमाइश को पूरी करने का वक्त आ गया है और इस कार्यक्रम में सबसे पहले सुनते हैं मृत्यु दंड फिल्म का गीत उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में। इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत आनंद मिलिंद का है। इस गीत को सुनना चाहा है कनेरा मोहल्ला पटियाला से बत्ता परिवार, मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका और वंश। आप है दिल्ली से हमारे श्रोता कन्हैया लाल, रीता देवी, शिल्पा रानी और आकाश कुमार। विद्यानगर तेंदुखेड़ा जिला दमोह से ये हमें फरमाइश मिली है ओम प्रकाश नेमा, श्रीमती किरण नेमा, आकाश, विकास, नंदनी, शिवांश और समस्त नेवा परिवार की। और साथ ही साथ इस गीत की पसंद में हम शामिल कर रहे हैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा, संगीता, भावना और प्राची नेमा का ये पत्र। हमारे इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर सुनते हैं मृत्युदंड फिल्म का ये गीत।

आपकी फरमाइश कार्यक्रम में अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अमृत फिल्म से मनहर और अनुराधा पौडवाल की आवाजें हैं। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है और इस गीत को सुनना चाहा है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से ये हमारे श्रोता है अभिजीत गवाड़कर, राही, सरिता, सिद्धांत, प्रिंस, एकांश, सुखी और विश्वकर्मा नगर नागपुर से शैलेश गवाड़कर, वैशाली, श्वेता, सुमित गवाड़कर और कुमारी ध्वनि गवाड़कर। साथ ही साथ इसकी फरमाइश हमें मिली है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा और सौरभ शर्मा और इसी गीत को पसंद किया है। ग्राम धुरा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, डेविड साहू, रुस्तम साहू, नेतराम साहू और भूपेंद्र साहू ने।

अगला गीत जो हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आपकी फरमाइश कार्यक्रम के अंतर्गत, उसके लिए हमें फरमाइश मिली है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाब साविर राही महराज जहां, मेहर नगर उमर खेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवाड़कर, श्रीमती सरिता प्रिंस सिद्धांत, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शैलेश सुमित और ध्वनि, छत्तीसगढ़ भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, दीपक कुमार और जावेंद्र कुमार वर्मा, और इसी गीत को पसंद किया है धमनी छत्तीसगढ़ से समेलाल धीवर, युवांश धीवर, कुणाल गोविंद, ममता और मुन्नी धीवर ने। आप सभी सुनना चाहते हैं अवतार फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में, जिसे संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने।

कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं प्यासा सावन फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में। गीत को लिखा है संतोष आनंद ने और इसे संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इस गीत को सुनना चाहा है छत्रपति संभाजी नगर से राजेश सावले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और शीतल राजेश ने। इसी गीत को पसंद किया है प्रमिलागंज आलोट जिला मध्य प्रदेश, रतलाम मध्य प्रदेश से बलवंत कुमार वर्मा, राजूबाई, माया वर्मा, शोभा वर्मा, राहुल, ज्योति, अतुल, पायल वर्मा, प्रियांश वर्मा और ऋषि वर्मा ने। साथ ही साथ ये खत हमें मिला है पटेल नगर मलोट पंजाब से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप और बेबी आरजू जाजोरिया, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन ठाकुर, मिथिलेश ठाकुर, तारनी ठाकुर, सूरज, ज्योति, रेयांश और गुड़िया ठाकुर। और इसी गीत को पसंद किया है सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला ठेकेदार, नसीम बेगम, आयशा खान, हृदया खान, अस्मा सालिया, शोएब खान, पोतरा मुजदाबा खान और राउफ भाई, शाहिद भाई। इन सभी की पसंद पर प्यासा सावन फिल्म का गीत।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में प्यासा सावन फिल्म के इस गीत के साथ ही आपकी फरमाइश का ये कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है। ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, सुनते हैं इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल सांची स्तूप के पवित्र अवशेष मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। ये अवशेष भगवान बुद्ध के दो शिष्यों सारिपुत्र और मौदगल्यायन से संबंधित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। केंद्र सरकार द्वारा सार्थक पीडीएस फेज 2 के लिए 25,530 करोड़ रुपए मंजूर किए जाने पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में एफआई और आधुनिक तकनीक के जरिए राशन वितरण पहले से ज्यादा पारदर्शी और बेहतर होगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारें, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार कर रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अता की गई। बाद में लोगों ने

एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है और मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 46 जिलों में हीट वेव और भीषण गर्मी की चेतावनी जारी की है। छतरपुर जिले के खजुराहो और नौगांव लगातार 10 दिनों से प्रदेश के सबसे गर्म शहर बने हुए हैं। आप सुन रहे थे इस घंटे की खास खबरें।

मीडिया व्यू पर सभा समाप्त करने से पूर्व लीजिए सुनिए हमारे सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की जानकारी। मीडिया व्यू पर सांध्यकालीन सभा आरंभ होगी 5 बजे से। 5:02 पर आप सुनेंगे युवा साथियों का कार्यक्रम युववाणी। आज का ये कार्यक्रम आकाशवाणी के जबलपुर केंद्र की भेंट है। सांध्यकालीन सभा के अंतर्गत फिल्म संगीत हम आपको सुनवाएंगे 5:33 पर, 6:30 पर, 8:15 पर और रात 9:30 पर। शाम 6 बजे सुनिए एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम और 7:21 पर सुनवाएंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सुर्खियों में। रात 10 बजे आपकी फरमाइश कार्यक्रम होगा और 10:30 पर शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा राग रजनी, जिसमें आज आप सुनेंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग होगा गौरख कल्याण। ये थी जानकारी सांध्यकालीन सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रमों की। मीडियम वेव 188.32 मीटर यानी 1593 किलोहर्ट्ज, डीटीएच के ऑडियो चैनल और न्यूज ऑन एआईआर एप्लीकेशन पर ये आकाशवाणी का भोपाल केंद्र है। दोपहर के 3:02 और 30 सेकेंड हुए हैं। मीडियम वेव पर अब हमारी ये सभा यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे इन्हीं मीटर्स पर आपकी सेवा में पुनः उपस्थित होंगे। अब अनुमति दीजिए, इस दौरान डीटीएच के ऑडियो चैनल पर प्रसारण जारी रहेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को

0: दोस्तों, कार्यक्रम की अगली कड़ी में अब समय है एक विशेष वार्ता का, जिसका विषय है भारत में युवा और सतत विकास। आज के दौर में युवा केवल देश का भविष्य नहीं बल्कि वर्तमान की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: सतत विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों और अवसरों को भी सुरक्षित रखे। तो आइए इन्हीं महत्वपूर्ण विचारों पर प्रकाश डालने के लिए सुनते हैं ये वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार हैं कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: प्रिय श्रोताओं नमस्कार, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, भारत में युवा और सतत विकास। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। हमारे देश की लगभग 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु की है। यह केवल एक आंकड़ा नहीं है बल्कि यह भारत की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमारे युवा केवल रोजगार की तलाश में है या वे देश और पृथ्वी के भविष्य को भी सुरक्षित करने की जिम्मेदारी उठा सकते हैं। यहीं से शुरू होती है सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात। सतत विकास क्या है? सतत विकास का सरल अर्थ है ऐसा विकास जो आज की जरूरतों को पूरा करे लेकिन आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों से समझौता न करे। यह शब्द पहली बार वैश्विक स्तर पर 1987 में चर्चित हुआ जब संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में इसे स्पष्ट किया गया। आज पूरी दुनिया 2030 तक के लिए सतत विकास लक्ष्य पर काम कर रही है। भारत भी इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। भारत के युवा एक जनसांख्यिकीय शक्ति। भारत में आज करोड़ों युवा हैं, गांवों में, शहरों में, कॉलेजों में, स्टार्टअप में, खेती में और तकनीक में। अगर यही युवा सही दिशा में काम करें तो भारत न केवल आर्थिक शक्ति बन सकता है बल्कि पर्यावरणीय दृष्टि से भी एक उदाहरण बन सकता है। जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, युवा शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। पर्यावरण संरक्षण में युवाओं की भूमिका। आज भारत जिन समस्याओं से जूझ रहा है उनमें शामिल है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जंगलों की कटाई, प्लास्टिक कचरा और जलवायु परिवर्तन। यह समस्याएं केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। युवा क्या कर सकते हैं? पेड़ लगाना और उनकी देखभाल करना, केवल पौधारोपण नहीं बल्कि उसे बड़ा होने तक संभालना, सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार, कपड़े के बैग, स्टील की बोतलें, पर्यावरण मित्र का उत्पादन करना, जल संरक्षण, घर में टपकते नल ठीक करना, वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना और साइकिल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग, इससे कार्बन उत्सर्जन कम होता है। जल संरक्षण युवाओं की प्राथमिक जिम्मेदारी। भारत के कई हिस्सों में जल संकट गंभीर होता जा रहा है। कई युवा समूह गांवों में तालाबों की सफाई, वर्षा जल संचयन और जल जागरूकता अभियान चला रहे हैं। अगर युवा आगे आए तो गांव आत्मनिर्भर

0: बन सकते हैं, खेती सुधर सकती है, पलायन कम हो सकता है। जल बचाना केवल पर्यावरण नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करना है। कचरा प्रबंधन और स्वच्छता। भारत में रोजाना हजारों टन कचरा निकलता है। अगर युवा आगे बढ़ें और गीले और सूखे कचरे को अलग करें, घरों में कंपोस्ट बनाएं, प्लास्टिक रिसाइकलिंग को बढ़ावा दें, तो शहर और गांव दोनों स्वच्छ हो सकते हैं। स्वच्छता केवल सफाई नहीं है, यह स्वास्थ्य और सम्मान से जुड़ी हुई है। नवीकरण ऊर्जा और स्टार्टअप संस्कृति। भारत में आज सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और हरित तकनीक के क्षेत्र में बड़े अवसर हैं। कई युवा सौर पैनल इंस्टॉलेशन, इलेक्ट्रिक वाहन, बायोगैस प्लांट जैसे क्षेत्रों में स्टार्टअप शुरू कर रहे हैं। इससे तीन लाभ होते हैं, रोजगार सृजन, प्रदूषण में कमी, ऊर्जा आत्मनिर्भरता। सतत कृषि और ग्रामीण युवा। भारत की आधी से अधिक आबादी कृषि पर निर्भर है। अगर ग्रामीण युवा जैविक खेती अपनाएं, कम रसायनों का उपयोग करें और जल संरक्षण तकनीक अपनाएं, तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ेगी और किसानों की आय भी बढ़ेगी। भारत कृषि भविष्य की आवश्यकता है। तकनीक और डिजिटल जागरूकता। आज का युवा डिजिटल है। सोशल मीडिया के माध्यम से पर्यावरण अभियान चलाए जा सकते हैं, जागरूकता फैलाई जा सकती है, गलत जानकारी का विरोध किया जा सकता है। तकनीक अगर सही दिशा में उपयोग हो तो वह परिवर्तन का सबसे बड़ा साधन बन सकती है। शिक्षा और मूल्य आधारित सोच। सतत विकास केवल तकनीक से नहीं आएगा बल्कि सोच से आएगा। स्कूल और कॉलेजों में पर्यावरण शिक्षा, नैतिक मूल्य, सामुदायिक सेवा, इनका समावेश जरूरी है। भारत की वैश्विक भूमिका और युवा। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर सक्रिय भूमिका निभा रहा है, लेकिन केवल सरकार के प्रयास काफी नहीं है। जब भारत का हर युवा यह सोच ले कि मैं पृथ्वी का संरक्षक हूं, तभी वास्तविक परिवर्तन आएगा। व्यक्तिगत जीवन में छोटे बदलाव। सतत विकास बड़े भाषणों से नहीं, छोटे कदमों से शुरू होता है, जैसे बिजली बचाना, पानी बचाना, स्थानीय उत्पाद खरीदना, भोजन की बर्बादी रोकना, पेड़ लगाना इत्यादि। हर युवा अगर अपने जीवन में 5 बदलाव करे तो देश बदल सकता है। इन सभी के लिए युवाओं का स्वस्थ होना आवश्यक है, अतः उन्हें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। स्वस्थ युवा ही राष्ट्र निर्माण कर सकता है। योग, व्यायाम, नशा मुक्त जीवन, मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान। स्वास्थ्य ही धन है। यदि शरीर स्वस्थ है तो समाज और राष्ट्र भी स्वस्थ रहेगा। एक सुंदर पंक्ति है, धरती हमें पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है बल्कि हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। यही सतत विकास का मूल संदेश है। प्रिय श्रोताओं, भारत का भविष्य केवल सरकार की योजनाओं से नहीं बनेगा। भारत का भविष्य बनेगा जागरूक श्रोताओं से, जिम्मेदार नागरिकों से, पर्यावरण के प्रति संवेदनशील समाज से। आज का युवा केवल नौकरी तलाशने वाला व्यक्ति नहीं है, वह परिवर्तन का वाहक है, वह समाधान का निर्माता है। अगर भारत का युवा सतत विकास को अपना लक्ष्य बना ले तो 2047 तक, जब हम स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे, तब भारत केवल आर्थिक महाशक्ति नहीं बल्कि पर्यावरणीय महाशक्ति भी होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आइए हम सभी मिलकर संकल्प लें, मैं सतत जीवन जीऊंगा और दूसरों को भी प्रेरित करूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।
1: आप सुन रहे थे वार्ता भारत में युवा और सतत विकास, और वार्ताकार थे कौशलेंद्र चंद्र जैन।
2: साथियों, सुनते हैं कार्यक्रम के अगले गीत को, जिसे हमने लिया है फिल्म केदारनाथ से और जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: दोस्तों, हमारा देश भारत विविधताओं का देश है। यहाँ अलग अलग धर्म, भाषाएं, संस्कृतियाँ और परंपराएं मिलकर हमारी पहचान बनाती हैं। यही विविधता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जी हाँ दोस्तों, और हमारी अगली चर्चा का विषय है अल्पसंख्यक कल्याण में युवाओं की भूमिका।
1: आद्या, कई बार समाज के कुछ वर्ग, विशेषकर अल्पसंख्यक समुदाय, शिक्षा, रोजगार और संसाधनों की कमी के कारण मुख्य धारा से पीछे रह जाते हैं। ऐसे में युवाओं की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है।
0: आज का युवा जागरूक है, शिक्षित है और तकनीक से जुड़ा हुआ है। अगर युवा चाहे तो ये समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं।
1: बिल्कुल आद्या, युवा शिक्षा के क्षेत्र में मदद कर सकते हैं, जरूरतमंद बच्चों को पढ़ना सिखा सकते हैं, डिजिटल साक्षरता फैला सकते हैं और लोगों को सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूक कर सकते हैं।
0: सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं, जैसे छात्रवृत्ति योजनाएं, कौशल विकास कार्यक्रम, स्वरोजगार योजनाएं और शिक्षा सहायता कार्यक्रम।
1: लेकिन जानकारी की कमी के कारण बहुत से लोग इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते। ऐसे में हम युवा एक माध्यम बन सकते हैं जो सही जानकारी सही लोगों तक पहुंचाए।
0: और आज सोशल मीडिया का दौर है और अगर इसका सही उपयोग किया जाए तो ये समाज में सकारात्मक सोच और भाईचारे का संदेश फैलाने का सबसे मजबूत माध्यम बन सकता है।
1: बिल्कुल आद्या, युवाओं को चाहिए कि वे नफरत और भेदभाव फैलाने वाली बातों से दूर रहें और एकता, समानता और सद्भाव का संदेश दें।
0: जब समाज का हर वर्ग आगे बढ़ेगा तभी देश मजबूत बनेगा।
1: और इस बदलाव की सबसे बड़ी ताकत है हम युवा, क्योंकि युवाओं में नई सोच है, नई ऊर्जा है और समाज को बदलने का जज्बा है।
0: तो आइए हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम शिक्षा, समान अवसर और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे।
1: दोस्तों, अब वक्त है कार्यक्रम के अगले गीत का, जिसे हमने लिया है फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया और जिसे आवाज दी है सचिन जिकर, राघव चैतन्य और

0: दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम की शुरुआत में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने का। आज का पहला प्रश्न था, भारत में पहला एल्गी ट्री कहाँ लगाया गया है? इसका सही उत्तर है भोपाल।
1: और हमारा दूसरा प्रश्न था कि जनवरी 2026 में किस राज्य ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग नीति को मंजूरी दी है, जिसका सही उत्तर है राजस्थान। तो दोस्तों वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, अनुमति दीजिए अपनी रेडियो दोस्त आद्या नायक
0: और आयुषी द्विवेदी को। फिर मिलेंगे नए विषय और नई प्रेरणा के साथ।
1: नमस्कार।

0: युवाश्रोता सुन रहे थे उनका अपना कार्यक्रम युववाणी।
1: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है। रुकिए, वरना घर आ जाएंगे।
2: क्यों, लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए। आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो।
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1 लाख दो, बन जाओगे।
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए, अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा।
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है। डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है, इसीलिए पैनिक ना करें। पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें। उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें।
4: हेलो मम्मा।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। यहाँ आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ, कहीं भी, प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।

0: पहुंचाएं हम जन जन तक, सपनों को दें हम आकार।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक।
2: मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं, 5:33 हुए हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत, पहला गीत बरसात की एक रात फिल्म का, आवाज लता मंगेशकर की, साहिर का गीत और रोशन का संगीत।

और अब सुनिए अलग अलग फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और यशदास की आवाज़ें हैं, आनंद बख्शी का गीत और आर डी वर्मन का संगीत।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम। अगला गीत दाता एक ग्राम फिल्म से हरिओम शरण की आवाज में, गीत हरिओम शरण का और मुरली मनोहर स्वरूप का संगीत।

0: इज्जत फिल्म से सुनिए मन्ना डे को, साहिल लुधियानवी का गीत और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: अरे हाँ, बांट के खाओ इस दुनिया में, बांट के बोझ उठाओ, जिस रास्ते में सबका सुख हो वो रास्ता अपनाओ। इस तालीम से बढ़कर जग

और अब सुनिए मिलन फिल्म का ये नगमा मुकेश की आवाज़ में, आनंद बख्शी के लिखे गीत को सुरों में पिरोया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: ये आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है।
1: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं, मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहे उस वक्त।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
1: आकाशवाणी शिवपुरी का प्रातःकालीन सूचना पर दैनिक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी सुनिए रोजाना सुबह 7:45 पर। इसमें आपको मिलेंगी समसामयिक जानकारी प्रतिदिन। तो सुनते रहिए हर सुबह 7:45 पर सूचना परक कार्यक्रम नमस्कार शिवपुरी आकाशवाणी शिवपुरी से।
3: सुनो ना।
2: हाँ?
3: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
2: तो रोका किसने है? हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
2: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
2: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
2: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
2: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700001-4।
4: दशक पूरे हो रहे हैं, ये सूचना निश्चित रूप से हम जैसे लोगों के लिए बहुत ही खुशी की सूचना है। हम भी आकाशवाणी की इस यात्रा में एक आवाज के रूप में हम सफर रहे हैं। कहते हैं कि नदियों का गोमुख बहुत छोटा होता है। एक छोटी सी झील के रूप में कोई नदी निकलती है अपने अमृत कुंड से और अपनी यात्रा में अनेक कूल किनारों को तय करते हुए एक समंदर में जाकर मिल जाती है। आकाशवाणी के साथ भी ऐसा ही है। दरअसल आवाजों का एक भरा पूरा घर ही आकाशवाणी है। और कितनी सारी आवाजें, वो आवाजें जो भरोसा बनकर आकाशवाणी के स्टूडियो से श्रोताओं तक पहुंचती रही है। श्रोता और आकाशवाणी के बीच में दरअसल एक विश्वास तैर कर इन 90 वर्षों में जाता रहा है। आकाशवाणी के इस अवधि को पूरा करने के अवसर पर मैं अपनी आंतरिक शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जिस निहित उद्देश्य को लेकर सूचना, शिक्षा और मनोरंजन, इन तीन पदों को साथ में लेकर आकाशवाणी ने जो अपनी यात्रा शुरू की थी वो नए उत्कर्ष पर पहुंचे। सभी आकाशवाणी से जुड़े साथियों और श्रोताओं को एक बार फिर हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। लीजिए सुनिए इस घंटे की खास खबरें।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश और विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम का 134वां एपिसोड होगा। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 पर कॉल करके नरेंद्र मोदी ऐप या MyGOV ओपन फोरम के माध्यम से अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। NTA के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 पर दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में केंद्र, राज्य सरकारों, ICAR और कृषि संस्थान मिलकर आने वाले खरीफ सीजन की तैयारियों पर विचार किया। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। उनके निधन की खबर से लाखों प्रशंसकों में शोक की लहर है। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय खेल डिजिटल इकोसिस्टम के अंतर्गत राष्ट्रीय खेल संघों में सूचना प्रौद्योगिकी सलाहकारों को नियुक्त करेगा। देश के विभिन्न हिस्सों में आज ईद उल अजहा धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। सुबह ईदगाह और मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की गई। बाद में लोगों ने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की बधाइयां दी। और भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामेघारा में शुरू होने वाले अंडर 18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह
2: कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री DK शिवकुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। कांग्रेस की विधानसभा चुनावों में जीत के बाद सिद्धारमैया मई 2023 में दूसरी बार कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। श्री DK शिवकुमार को 2023 के कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका थी। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से हर घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
3: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमीशन कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की भी चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
2: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आशीष शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने वर्तमान विधायक अभिषेक देवरॉय को पार्टी की त्रिपुरा प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। अभिषेक देवरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि देवरॉय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर कल रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्थागंडी के SIRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येनेज यांशा को स्लोवानिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया और प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की है। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की पुरुष डबल्स जोड़ी तथा ध्रुव कपिला तनिषा क्रास्टो की मिक्स डबल्स जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

फिल्म कश्मीर की कली से ये दिलकश गीत सुना आपने आशा ताई और रफी साहब की आवाज में, और अब सुनिए फिल्म लीडर से हमारा अगला सदाबहार नगमा लता दी और रफी साहब की आवाज में। कौन सा है लीजिए।

0: अब से कुछ ही देर में आप सुन सकेंगे संस्कृत में समाचार। सुनते रहिए आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका वंदना कश्यपः। आदौ मुख्य वार्ताः। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया स्वपदात् औपचारिक रूपेण त्यागपत्रं प्रदत्तवान्। डीके शिवकुमारः नूतन मुख्यमंत्रित्वेन पदभारं ग्रहीष्यति। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः सिक्किम आरक्षक दलाय राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदत्तवती। अत्रांतरे सिक्किम राज्यं पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। होर्मुज जलडमरु मध्यस्य समीपे आक्रमणान्तरं अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये अवसादः वर्तितः। गृहमंत्री अमित शाहः गांधीनगरे जनसभायां अवैध प्रवासीनां देशात् निष्कासनार्थं सर्वकारस्य दृढसंकल्पं पुनः प्रत्यपादयत्। अपि च बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां पीवी सिंधुः तथा च लक्ष्य सेनः सिंगापुर ओपन इत्यस्य प्रागुपान्त्यचक्रे प्रविष्टवन्तौ। अथ वार्ताः विस्तरेण। कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री सिद्धरमैया इत्यसौ अद्य लोकभवने राज्यपालस्य सचिवाय औपचारिक रूपेण स्वकीयं त्यागपत्रं समर्पितवान्। वार्ताहरान् संबोधयन् सः स्वयं प्रमाणितवान् यत् त्यागपत्रं सचिवाय औपचारिक रूपेण प्रदत्तमिति। अत्रावसरे सः राज्यपालं नूतन मुख्यमंत्रिणः पदभारं ग्रहणाय आमन्त्रयितुं साग्रहं निवेदितवान्, यतोहि विधानसभायां 37+1 शतात् अधिक विधायकानां समर्थन सहचारेण कांग्रेस दलस्य पूर्ण बहुमतं वर्तते। तेन सूचितं यत् कांग्रेस उच्चाधिकारिभिः तस्मै राज्यसभायाः सदस्यता प्रस्ताविता आसीत्, परञ्च सः राष्ट्रिय राजतीना स्वकीयं अरुचिं प्रकटयन् प्रोक्तवान् यत् सः राज्यस्य जनानां कृते एव निरन्तरं कार्यं करिष्यति। सिद्धरमैया इत्येषः 23+2000 वर्षे द्वितीयवारं कर्णाटकस्य मुख्यमंत्री संजातः। इतः पूर्वं सः 23+18 यावत् मुख्यमंत्रित्वेन कार्यम् अकरोत्। सः राज्ये 8 वर्षाणां कार्यकालद्वयं पूरयित्वा सर्वाधिक समयमुपविशता मुख्यमंत्रित्वेन गौरवम् अर्जितवान्। मुख्यमंत्रित्वेन वित्तमंत्रित्वेन च तेन राज्यस्य 17 आयव्ययकानि उपस्थापितानि। तस्य त्यागपत्रेण राज्ये सुदीर्घकालतः जायमानः सत्तासङ्घर्षः समाप्तः। अत्रान्तरे राज्यस्य उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमारः कर्णाटक कांग्रेस दलस्य वरिष्ठतमेषु नेतृषु कश्चन प्रमुखः अस्ति। 23+2000 विधानसभानिर्वाचने कांग्रेस दलस्य महत् विजये तेन प्रमुखा भूमिका निर्व्यूढा आसीत्। राष्ट्रपति पदासीना द्रौपदी मुर्मुः अद्य आरक्षक बलाय बोधितवती यत् आरक्षाः अधिकं नागरिकाभिमुखा भवेयुः। सहैव समाजस्य दुर्बल वर्गाणां विशेषतः महिलानां निर्धनानां बालकानां च विषये संवेदनशीलतां धारयेयुः। राष्ट्रपतिः अद्य प्रातः गंगटोक नगरे आयोजिते अलंकरणं संचलने सिक्किम आरक्षक दलाय प्रतिष्ठितं राष्ट्रपति ध्वज सम्मानं प्रदाय संबोधितवती। तया राज्ये विधिव्यवस्थायाः पालने सहैव आपत्प्रबन्धने सिक्किम आरक्षकदलस्य भूमिकायाः भूरिशः प्रशंसा कृता।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाए जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
1: अत्रांतरे उल्लास योजनायाः अन्तर्गतं सिक्किम राज्यं आधिकारिक रूपेण पूर्ण साक्षर राज्यत्वेन घोषितम्। घोषणेयं यावत् गतदिवसे गंगटोक नगरे राष्ट्रपतिः मुर्मुः इत्यस्याः गरिमामय उपस्थितौ सिक्किम विश्वविद्यालयस्य दीक्षांत समारोहे विहिता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चल दूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। अमेरिका ईरान देशयोः मध्ये जायमाना शिथिल युद्ध विरामावस्था इदानीं गंभीर संकटे समापतिता, यतः हि द्वाभ्याम् अपि पक्षाभ्याम् होर्मुज इत्यस्य समीपे परस्परं सैन्य आक्रमणानि कृतानि। अमेरिकी सेनायाः कथनमस्ति यत् तया ईरान देशस्य चत्वारि आक्रामक ड्रोन विमानानि निपातितानि, तथा च बंदर अब्बास क्षेत्रे स्थिते ड्रोन नियंत्रण केन्द्रे भीषण प्रहारः कृतः। अत्रांतरे ईरानस्य इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉप्स इति दलेन अपि एतस्य प्रहारस्य प्रमाणत्वेन प्रोक्तं यत् प्रतिकार स्वरूपेण तैः अमेरिकी सैन्य शिविरे आक्रमणं विहितम्। कुवैत प्रशासनेन पूर्वमेव सूचितम् आसीत् यत् ते स्वकीये क्षेत्रे शत्रुपक्षस्य ड्रोन आक्रमणानां दृढ प्रतिकारं कुर्वन्ति। अस्याः सद्यो जातायाः सैन्य उत्तेजनायाः कारणेन वाशिंगटन तेहरान नगरयोः मध्ये युद्ध विरामस्य विस्ताराय जायमानैः कूटनीतिक प्रयासैः सहसा महती क्षतिः अभवत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः अद्य पुनरेकदा अवैध प्रवासीनां अभिज्ञानार्थं निर्वासनार्थं सीमा सुरक्षा सुदृढीकर्तुं च सर्वकारस्य प्रतिबद्धतां पुनरपि दृढतया प्रतिपादितवान्। गांधीनगरे 44.30 कोटि रूप्यकाणां विकास परियोजनानां उद्घाटनस्य शिलान्यासस्य च अनन्तरं जनसभां संबोधयन् श्री शाहः पश्चिम बंगाल सर्वकारस्य अपि प्रशंसाम् अकरोत्, यतः एकसप्ताहभ्यन्तरे सीमा सुरक्षा बलाय 600 हेक्टर परिमिता भूमिः प्रदत्तः। वीर सावरकर महोदयस्य जन्म वार्षिक्याः अवसरे गृहमंत्री तस्य योगदानाय त्यागाय च तस्मै श्रद्धांजलिं प्रदत्तवान्। गुजरात राज्यस्य त्रिदिवसीय यात्रायां श्री शाह अनेकेषां सार्वजनिक सौकर्याणाम् उद्घाटनम् अकरोत्। अत्रांतरे सः अहमदाबाद नगरे आगामीनां ओलंपिक क्रीडानां कॉमनवेल्थ क्रीडानां विश्व आरक्षक क्रीडानां अग्निक्रीडानां च सज्जतायाः समीक्षा करिष्यति। केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान अद्य CBSE इति द्वादश कक्षायाः मूल्यांकनं प्रक्रियायां सहैव एतस्य नूतन पटलाधारित अंकन प्रणाल्यां च जातानां प्राविधिक त्रुटीनां च संज्ञानं गृहीतवान्। मन्त्रणां एतेषां विसंगतीनां विषये छात्राणां शंका समानार्थं दृढ आश्वासनं प्रदत्तम्। शिक्षामंत्री प्रोक्तं यत् इयं पटलाधारित अंकन प्रणाली पारदर्शितां सुनिश्चेतुं कश्चन प्रगतिशील उपायात्मक मञ्चः वर्तते। सः नवदिल्ल्यां CBSE अधिकारिभिः सह उच्चस्तरीयोपवेशनं विधाय अनन्तरं वार्ताहरान् संबोधितवान्। तेन स्पष्टीकृतं यत् सर्वे अधिकारिणः इदं सुनिश्चयन्ति यत् कस्यापि छात्रस्य जिज्ञासा यथावत् न तिष्ठेत, तथा च सर्वेषु स्तरेषु उत्तरदायित्वं सुदृढं स्यात्।
3: बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया, उसमें कुछ विसंगति ध्यान में आ रही, इसको मैं दायित्व लेता हूँ उसको ठीक करा जाए। हम एक भी विद्यार्थी की अनआंसर्ड क्वारी को असमाधित नहीं छोड़ेंगे।
1: पुर ओपन बैडमिंटन प्रतिस्पर्धायां अद्यतनः दिवसः भारतस्य कृते अतीव गौरवपूर्णः आसीत्। भारतस्य प्रमुख क्रीडकाः लक्ष्य सेनः, PV सिंधुः, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज, रंगी रेड्डी इत्यनयोः पुरुष युगलदलं तथा च ध्रुव कपिल तनीसा क्रेष्टो इत्यनयोः मिश्रित युगलदलं च स्व प्रतिस्पर्धासु विजयं प्राप्य प्रागुपान्त्य चक्रे प्रविष्टवन्तः। महिला एकल क्रीडायां 16 चक्रे PV सिंधु जापान देशस्य रीको गुंजी 21:09, 21:12 इत्यंकांतरालेन पराजितवती। आगामी स्पर्धायां सा दक्षिण कोरिया देशस्य NK यंग इत्यनेन सह स्पर्धिष्यन्ते। अत्रांतरे पुरुष एकल क्रीडायां थाईलैंड देशस्य द्वितीय वरीयता प्राप्त क्रीडक कुनलावुत विदितशार्नः स्पर्धायाः आरम्भे एव आहतो भूत्वा क्रीडाङ्गणात् बहिर्जातः, येन लक्ष्यसेनः आसयान स्वकीय स्थानं सुरक्षितवान् इति वार्ताः।
4: लीजिए सुनिए एक विशेष कार्यक्रम। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज दोपहर मशहूर शायर बद्र साहब हमारे बीच नहीं रहे। हमारे संग्रहालय से प्राप्त रिकॉर्डिंग के माध्यम से आज हम आपको सुनवा रहे हैं काफी समय पूर्व शायर बद्र साहब से ली गई एक भेंट वार्ता।
5: डॉक्टर साहब, बीते हुए वर्ष में जो कुछ आपने महसूस किया है, हम जानना चाहेंगे कि क्या आपको लगा जो कुछ सपने संजोए थे बीते वर्ष के लिए, क्या फलित हुए?
6: कुल मिलाकर के तो मुझे ऐसा लगता

है कि मुझे हमेशा पॉजिटिव और होपफुल दुनिया नजर आती है और पहले से ज्यादा खूबसूरत और रहने लायक होती जा रही है। लेकिन फिराक साहब का एक शेर है कि देख रफ्तार इनकलाब फिराक कितनी आहिस्ता और कितनी तेज। तो दुनिया जिस तरह से खूबसूरत हो रही है, बन रही है, और हर शख्स को किया जाए, वो इतना अंदरूनी जरूर है, लेकिन कुल मिलाकर के मुझे से कहा जाए कि 99 अच्छा था कि 2000 अच्छा था, 2000 जितना अच्छा था उतना 2001 अच्छा है।

0: मेरे जो जिनसे मैं कमिटेड हूँ वानी, उन्होंने मेरी खूब किताबें छापी, और जिनसे मैं चाहता था कि काश कभी, मुझे याद है साहब, एक दफ़ा मैं ले करके बचपन में पूरा गया था ये राजपाल वालों के पास, इन्होंने रखा रहे 4-6 महीने, फिर मैं एक दफ़ा गया कि मैं कनाडा जा रहा हूँ, आप मेरी किताब छाप दीजिए, तो उन्होंने कहा लेते जाइए, अभी जब तक आप 4 दफ़ा कनाडा हो आएंगे, इनके बाप वगैरह ने किया होगा, भाई नहीं छापा था, और उन्हीं ने जब इस तरह से चुरा करके 3 किताबें छापी, एक उसकी पाकिस्तान वाला जो है अहमद फराज की, एक 2 हम लोगों की, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह लग रहा है कि सब कुछ कांटे के दरमियान से गुजर रहे हैं और फूल महफूज है, तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो कांटे तो लाइफ है, वो तो उसके बगैर तो कुछ होता ही नहीं। तो बार बार याद आता है कि हमारे साथ ये हुआ, हम संसद पे हमला हुआ, फला हुआ, ये मर गया, इसको चोट आई, तो अगर और हर साल से मुकाबला करें तो कुछ बेहतरी हो रहा है, कम से कम मेरे हैसियत में, मेरे साथ तो मैं बहुत ही पॉजिटिव हूँ। अभी भी मैं रहा, मैंने मुझे बहुत ज़्यादा आप अपना पर्सनल बातें कहना नहीं चाहता, लेकिन कई दफ़ा मुझे लगा कि जो लोगों ने, मेरे पाकिस्तानी दोस्तों ने झल्ला के कन्वीनर से कहा कि तुम भी पाकिस्तानी हम भी पाकिस्तानी, तो मगर उसकी भी मशहूरी थी कि भाई मशहूर और टिकट तो बशीर भट्ट के नाम से बिक रहे थे, तो ये सब कुछ कुल मिला के अच्छा लगा।
1: एक आम आदमी की नज़र से आप आने वाले वर्ष को कैसा देखते हैं?
0: सबको होपफुल, जो मैं समझता हूँ कि अगर आदमी थोड़ा समझदार है, और ये तो कि दुख सुख तो सबके साथ लगे रहते हैं, कोई अगर बीमार है इस वक्त, कोई किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, कोई डिसअपॉइंटेड है, लेकिन कुल मिला के जनरल आप ये देखिए कि जो रहन सहन, और आप 25 साल के अंदर जो चीज़ें सिर्फ बादशाहों के लिए थीं, उससे भी ज़्यादा हमारे घर के एक छोटे से मुलाजिम के लिए ज़िंदगी मेहरबान हो गई हो, सब चीज़ें मुहैया हैं, रेडियो है, टीवी है, घर है, मकान है, सही पहले ही कौन, मतलब जब पहले तो बड़े बड़े आदमी एक एक अंधेरी रात कुएं में गुजार देते थे, अब तो कोई मुझे अंधेरे में चाहे एक ही बल्ब जला कर रहे, तो दुनिया पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो रही है, लेकिन उससे ये ज़्यादा खुश बहुत नहीं होना चाहिए, इसलिए कि वो जैसे पेड़ बड़ा होता है वैसे ही ज़िंदगी बड़ी हो रही है, खूबसूरत हो रही, लेकिन जिम्मेदारियाँ और ख़तरे हमेशा रहते हैं, और अदब है काहे के लिए, मैं तो उसी का गुलाम हूँ, मुझे फ़ख्र है कि मेरा ये काम ही है कि सब चीज़ों को एक जैसे एक मामूली सा आदमी होता है उसको अपने लिखता रहता है, और अपने हमारा काम ही क्या है, हम प्रैक्टिकल तो बहुत कम करते हैं, हम तो जो आप लोग अच्छा बुरा करते हैं उसकी एक तरह से खूबसूरत क्रिएटिव पब्लिसिटी करते रहते हैं ज़िंदगी की, और वो जब कुछ अच्छा हो रहा तो मेरा ख्याल है कि साहित्य में भी और अदब में भी और शायरी में भी पहले से बेहतर होगा, और हो रहा है,
1: जो कुछ बेहतर है उससे और ज़्यादा बेहतर हो, इसके लिए क्या किया जाना चाहिए?
0: ज़्यादा बेहतर हो तो जैसे बिल्कुल देखिए, हर आदमी के मुझसे आप कहेंगे किस तरह टीवी अच्छा बनेगा तो ये मैं नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना ही कह सकता हूँ कि हमारे सबके घर कलर टीवी हो जाए, लेकिन जैसे मैं साहित्य का आदमी हूँ, अदब का आदमी हूँ, तो मुझे बेहद अच्छा लग रहा है कि 30-35 साल में मैंने ये जाना कि हमारी जो बोली है उसमें जो जितनी दुनिया में जितने भी जबान के शब्द आएंगे वो हम इस शर्त पे कबूल करेंगे कि वो अपनी शनाख्त, अपने भाषा, अपने मुल्क की शनाख्त छोड़ करके जब हिंदुस्तानी हो जाएं, मसलन ये कि ट्रेन आ रही है, लेट हो गई, हमें क्लास में जाना है, हमारा पेन हमें दे दो, हमारा माइक ख़राब है और टेबल गिर गई है और रूम हमारा बहुत ही गंदा हो रहा है, किसी से हमें ना तो मतलब है ना हम जानना चाहते हैं कि इनका प्रोनंसिएशन क्या है, इनका उच्चारण क्या है, जो हमारे कौ आदमियों ने तय कर दिया रूम का जो साउंड, जो वजन, तो वो मतलब सब कुछ हिंदी बनता जा रहा है, और अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वही होता जैसे बड़ी जबानें मरी, मसलन हिंदुस्तान में पुरानी संस्कृत कैसे सो गई, परछन कैसे बेकार हो गई, परछन के लफ्ज से शेर आज मारना हो तो उसे परछन का वो लफ्ज डाल दीजिए जो हिंदी नहीं बना, बाकी तो सभी बन गया, सुबह शाम सवेरा घर मकान, ये तो सब परछन ही है जो कुछ भी है, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ये सिर्फ हिंदुस्तानी लफ्ज है, इसलिए कि जैसे आप परछन वाले से मकान और विरासत और दुकान और खाना ये सब सुनेंगे तो उनका लहजा और उनका प्रोनाउंसिएशन इतना बिल्कुल डिफर करेगा, इसी तरह अंग्रेजी का हाल है, हमारा स्टेशन पटरी टिकट रेल रिजर्वेशन, तो इतनी बड़ी दुनिया एक जो ये जैसे हमारी हमारी भाषा यानी जिसे हिंदी भी कहते हैं और उर्दू भी कहते हैं, दोनों एक जबान है, बिल्कुल ये खुशी की बात है कि ये तीन भाषाओं में लिखी जाती है इस वक्त। मैं तो यहाँ कहता हूँ आप सबूत देख लीजिए, मेरी जो सबसे ज़्यादा किताब बिक रही है वाणी ने छापी है और एक तो आपने छापी उसमें भी मैंने उर्दू में लगा दिया, राजुल का साहब बिल्कुल उर्दू में भी वही लगा दिया आपके शेर
1: जी, जी।
0: अच्छा और उन्होंने तो छान के मतलब हर शेर को मेरा अंग्रेजी लिपि में लिखा, तो वो लिपि भी मैं छीन रहा हूँ वो तुम भी छोड़ जाओ हमारे काम आ रही है, और उर्दू में भी वही शेर और वही अंग्रेजी में और वही सबसे ज्यादा बिक रही, तो अब तो दुनिया बहुत खूबसूरत और बहुत खुली खुली होती जा रही है। ये जो खाने में हम बंद करके जकड़ करके दरवाजा बंद करके थोड़ी सी हवा में 50 आदमी सांस लेके घुटन में जीते थे, वो मैंने कहा नहीं मेरी बातों में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वही साहित्य का और अदब का होगा तो गजल का आदमी, तो आप गजल की जबान ही में जितने भी 150 साल में शब्द हिंदुस्तान में

बड़ी सी हवा में 50 आदमी सांस लेके घुटन में जीते थे वो। मैंने कहा नहीं, मेरी बातों में तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस वही साहित्य का और अदब का होगा, तो गजल का आदमी तो आप गजल की जबान ही में जितने भी 150 साल में शब्द हिंदुस्तान में

0: आई है, पूरे में आई है। तो जो बादशाहों को पहले फैसिलिटी सिर्फ मिलती थी, उससे ज्यादा आज एक कॉमन आदमी को मिलती है। लेकिन दुनिया पूरी ने इतनी तरक्की की, खाली हिंदुस्तान नहीं, और दुनिया से अलग हमारा हिंदुस्तान नहीं है, एक बात। और दूसरे ये भी है कि हिंदुस्तान के बगैर दुनिया है क्या, ये भी एक लहजे से सोच लेने दीजिए। अगर मैं कहूँ कि दुनिया के बगैर हिंदुस्तान क्या, तो आप यकीन जाने कि इतना बड़ा, इतना खूबसूरत, इतना बड़ा साहित्य का, इतना बड़ा शायरी का, इतना बड़ा आर्ट का, इतनी दफा हमारी लड़कियाँ मिस वर्ल्ड हुई हैं, तो हमारे माइनस करने के बाद दुनिया तो बहुत ही अधूरी अधूरी हो जाएगी। चाहे शायरी हो, चाहे हुस्न की बात हो, चाहे बदन की बात हो, चाहे क्या कहते हैं ये हमारे जो वो हो गए प्राइम मिनिस्टर साहब, यहाँ कह रहे थे हम शायरी करते थे, तो हमारी हिम्मत नहीं पड़ी उनसे कहने की कि जो तो आप कर रहे थे इससे पहले मतलब साइंटिफिक, वो भी शायरी ही थी। तो जो कर रहे हैं वही आप करते रहिए। खैर अगर आप गदल उदल कहो तो हम भी बम बनाने लगेंगे और मिटाने लगेंगे, तो दुनिया अच्छी हो रही है। मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ।
1: डॉक्टर साहब आपने इसने बात की, बहुत अच्छा लगा और बहुत ही आत्मीय बात रही। आपके यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: शुक्रिया। क्या कहा सर मैंने
1: उनका, फिर से बोल दीजिए जो शायरी के सिलसिले में।
0: यहाँ आप अभी हमारे जो प्रेसिडेंट साहब तशरीफ लाए थे, तो सवेरे बिल्कुल उन्होंने चाय पी थी हमारे गवर्नर साहब के यहाँ, तो हम तो दूर बैठे हुए थे, लेकिन दोनों जब दोनों एक ही मेज पे थे, तो गवर्नर साहब ने कुछ कहा तो उन्होंने कहा बुलाइए, तो फिर उन्होंने मुझे ऐसे ही बुलाया जैसे कहा वजीर यहाँ जरा यहाँ आओ। तो कहा कि तो इसके माने वो बता चुके थे कि मैं ठीक शायर हूँ, तो वो उन्होंने कहा कि आपकी बड़ी तारीफ कर रहे हैं ये, और मैं भी शायरी करता हूँ लेकिन तमिल में करता हूँ, तो मैंने कहा तो दे दीजिए फिर और मैं उसे गदल बना दूंगा। ये हुई थी बात हमारे जब प्रेसिडेंट साहब यहाँ तशरीफ लाए थे।
1: कुछ शेर हम
0: जी मैंने इधर मैंने जैसे आपसे कहा कि मैंने एक डेढ़ या पौने दो महीने में अमेरिका में रहा हूँ, और मुझे खुशी है कि मेरी जो गज़ल की थ्योरी है वो बिल्कुल ये है कि वो शेर जो होते ही ये दावा करने लगे कि मैं बहुत दिन जीऊँगा और लाखों इंसान का हो करके उस आदमी का भी रहूँगा जिसने मुझे कहा है, उस मियार पर मैं आपको तीन शेर सुनाना चाहता हूँ। ये मैंने पौने तीन शेर जो थे वो दो महीने या डेढ़ महीने में हिंदुस्तान से बाहर अमरीका में कहे हैं, और आपको लग ही जाएगा कि वही है, लेकिन यहाँ मैंने इसको फिनिश किया है। पहला तो एक शेर ये है कि आपका शहर खूबसूरत है, ये मैंने अमरीका ही कहा था, आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते। और दूसरा शेर था कि मुलाजा कीजिए कि रात पर्दे पे थी उदास गजल,
1: रात पर्दे पे थी
0: उदास गजल, मैंने टीवी के होंठ चूम लिए।
1: क्या बात,
0: रात पर्दे पे थी उदास गजल, मैंने टीवी पे के होंठ चूम लिए। ये दोनों तो शेर बिल्कुल ऐसे लगता है कि नई जिंदगी से पहले नहीं हो सकते थे, लेकिन एक चीज है जो पहले दिन की का सच है, वो भी देखिए कपड़े बदल के आता है। शेर सुनाता हूँ, सुनिएगा कि पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: क्या बात,
0: तो ये शेर अगर अमीर खुसरो के जमाने में भी इसी भाषा में कहा जा सकता था। देखिए मरता कुछ नहीं, और ये मगर हाँ कि आपका शहर खूबसूरत है, क्या यहाँ आदमी नहीं रहते, बगैर अमरीका जाए नहीं हो सकता था। फिर मैं अपना शेर सुना दूं जो अमीर खुसरो के तलवे की धूल है, कि पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पहला खत ऐसा लगता था तितली ने फूलों को चूमा, पलकों पलकों मोती झलके झिलमिल झिलमिल रात हुई।
1: बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे मशहूर शायर बद्र साहब की से ली गई एक पुरानी भेंट वार्ता।

0: आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: खुशखबरी, जी हाँ, आकाशवाणी शिवपुरी हुई अब हाईटेक। जी हाँ, आप अब हमें सुन सकते हैं अपने एंड्रॉइड और आईफोन दोनों प्लेटफॉर्म पर एक साथ कहीं भी। प्रसारण के समय जब जी चाहे तब सुनिएगा। प्ले स्टोर से न्यूज ऑन AIR ऐप को डाउनलोड करें और रेडियो ऑप्शन में जाएं। मध्य प्रदेश में आकाशवाणी शिवपुरी यानी कि AIR शिवपुरी को सिलेक्ट करें और सुने अपने एंड्रॉइड पर पूरी दुनिया में जब चाहें उस वक्त।
1: एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन, कहानी नहीं बदली स्टाइल गया है बदल, जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल। डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: दूरदर्शन की डायरेक्ट टू होम सेवा
1: डीडी डायरेक्ट
0: निशुल्क, न केबल का झंझट, न बार बार हर महीने भुगतान की समस्या।
1: डायरेक्ट टू होम सेवा बिल्कुल मुफ्त है।
0: स्पष्ट आवाज, सुंदर तस्वीर,
1: साथ में आकाशवाणी के 10 लोकप्रिय चैनल।
0: आज ही करें कनेक्ट
1: दूरदर्शन की डीटीएस सेवा डीडी डायरेक्ट।
2: सुनो ना।
3: हाँ?
2: सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
3: तो रोका किसने है? हाँ?
2: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
3: मुझसे।
2: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
3: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
2: पर उससे मेरा क्या फायदा?
3: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
2: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
3: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 8700014242।
2: ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल को नामित मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने पार्टी की राज्यसभा सीट की पेशकश विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर दी है। उन्होंने कहा कि वे राज्य की जनता के लिए काम करते रहेंगे। 2023 में राज्य विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद श्री सिद्धारमैया दूसरी बार राज्य के मुख्यमंत्री बने थे। उनके इस्तीफे के साथ ही राज्य में चल रहा लंबा सत्ता संघर्ष समाप्त हो गया है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत में श्री डी के शिव कुमार की महत्वपूर्ण भूमिका थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्या का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबोरॉय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबोरॉय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधाकृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में भाग लेंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेलथंगड़ी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांचा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद, विचार विमर्श, आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिड़ला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिड़ला ने कहा कि ये संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए एक अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने आज दिल्ली नगर निगम के भलसवा अपशिष्ट निपटान स्थल संबंधी सुधार कार्यों की समीक्षा की। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने बताया कि अपशिष्ट की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आई है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने आज सिंगापुर के रक्षा सचिव जोसेफ लियोंग के साथ 16वीं रक्षा नीति वार्ता की सह अध्यक्षता की। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि इस वार्ता ने भारत और सिंगापुर के बीच मजबूत द्विपक्षीय रक्षा साझेदारी की पुष्टि की। सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन और पीवी सिंधु ने अपने अपने वर्ग के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी तथा मिक्स डबल्स में ध्रुव कपिला और तनिषा क्रेस्टो की जोड़ी ने भी क्वार्टर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पीवी सिंधु का अगला मुकाबला दक्षिण कोरिया की एन से यंग से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। 7:05 हुए हैं। लीजिए सुनिए कार्यक्रम विवरण।

कार्यक्रम विवरण में पहले सुनिए आज की इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। रात 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम सुर्खियों में। फिल्म संगीत का आनंद आप ले सकेंगे रात 8:15 बजे और रात 9:30 बजे। आपकी फरमाइश, ये कार्यक्रम सुना जा सकेगा।

रात 10 बजे। 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में हम आपको सुनवाएंगे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन। राग होगा गौरख कल्याण। आज शाम 7:21 पर आकाशवाणी भोपाल से आप सुनेंगे कार्यक्रम ग्राम लक्ष्मी, जिसमें हम आपको सुनवाएंगे अनीता सक्सेना से ली गई भेंटवार्ता। विषय है लोक कला मांडना। ये थे आज के कुछ मुख्य कार्यक्रम और अब जानकारी देते हैं आपको कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। पहले सुनिए आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण कल सुबह 11 बजे से होगा, जिसमें 11 बजे आप सुनेंगे फोन इन कार्यक्रम फोन करें गीत सुने। आपकी फरमाइश कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 12 बजे, 2:30 बजे और रात 10 बजे। 12:30 बजे संग्रहालय के अंतर्गत सुनिएगा धारावाहिक सिसकियां की तीसरी कड़ी। कल दोपहर 1 बजे महिला कार्यक्रम, 1:30 बजे लोक संगीत, 1:45 पर सुगम संगीत और शाम 5:02 पर युववाणी कार्यक्रम। ये चारों ही कार्यक्रम आकाशवाणी छतरपुर की प्रस्तुति होंगे। फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल दोपहर 2 बजे, शाम 5:33 पर, 6:30 बजे, रात 8:15 बजे और रात 10:15 बजे।

एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुन सकेंगे कल शाम 6 बजे। सुर्खियों में ये कार्यक्रम हम आपको सुनवाएंगे कल रात 8 बजे। कल रात 9:30 बजे खेल जगत कार्यक्रम में सुनिएगा मोहम्मद सोहेब की वार्ता, विषय है कौन बनेगा आईपीएल 2026 का विजेता। कल रात 10:30 बजे शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन सुन सकेंगे, राग होगा भाव कोस। ये थे आकाशवाणी मध्य प्रदेश से कल प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम, और अब एक नजर डालते हैं आकाशवाणी भोपाल से कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रम।

कल सुबह 7:20 पर सुनिएगा दैनिक सूचनात्मक कार्यक्रम नमस्कार भोपाल। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम सुरमई सवेरा आप सुन सकेंगे कल सुबह 8:30। कल सुबह 9:15 सुनिएगा गांधी चर्चा। 9:30 फिल्म संगीत और 10:00 प्रसारित की जाएगी जिले की चिट्ठी। कल सुबह 10:05 पर महिला संसार कार्यक्रम के अंतर्गत सुनिएगा सजीव फोन इन कार्यक्रम आओ सखी बातें करें। कल सुबह 10:30 शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम रागमाला में हम आपको सुनवाएंगे पूर्वी मुखर्जी का ख्याल गायन राग होगा चारुकेशी। कल शाम 7:21 पर ग्राम सभा कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पाती आपके फिल्मी गीत। ये थे आज की सभा के शेष कार्यक्रम और कल की सभाओं में प्रसारित होने वाले कुछ मुख्य कार्यक्रम। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 7:10 होने को है। थोड़ी ही देर में प्रादेशिक समाचार होंगे।
1: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर। हर घर

नमस्कार, समाचारों के साथ मैं पूर्वा त्रिवेदी। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। भगवान बुद्ध के परम शिष्यों के अस्थि कलश आज भोपाल से दिल्ली भेजे गए, सांची में दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर।

0: विस्तार से। भगवान गौतम बुद्ध के परम शिष्यों अरिहंत सारिपुत्र और महामोदयान की पवित्र अस्थि कलश आज विशेष विमान से दिल्ली भेजे गए। रायसेन जिला मुख्यालय स्थित विश्व धरोहर बौद्ध तीर्थ सांची में इन अस्थि कलश को सशस्त्र सुरक्षा बलों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया। पवित्र अवशेष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशेष पहल पर मंगोलिया भेजे जा रहे हैं। रायसेन जिले के कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि
1: आज मॉर्निंग में ही जो भगवान शिष्य थे उनकी पवित्र जो अस्थियां हैं दर्शन के लिए मंगोलिया ले जाने के संबंध में आज भारत सरकार के प्रतिनिधि भी और साथ में ही जो हमारे यहाँ सोसाइटी है महाबोधि सोसाइटी उनके प्रतिनिधि सभी उपस्थित थे और उनकी सबकी उपस्थिति में आज पवित्र अस्थियों को इसको बाहर निकाला गया डबल लॉक से। और एक जो परंपरा यहाँ है जब भी पवित्र अस्थियां बाहर निकाली जाती हैं रिलिक्स बाहर आते हैं तो सबसे पहले जो स्थानीय स्तर पर दर्शन के लिए श्रद्धालु रहते हैं वो दर्शन करते हैं, उसके बाद पूजा अर्चना के बाद एक गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीर सावरकर को उनकी जयंती पर नमन किया। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वीर सावरकर का साहस और देशभक्ति लोगों को सदा प्रेरित करती रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामाजिक सुधारों पर वीर सावरकर का अत्यधिक जोर था और इस दिशा में उनका ज्ञान उल्लेखनीय है। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के मेहनती किसानों के अथक प्रयासों के कारण देश में पर्याप्त खाद्य भंडार मौजूद है। नई दिल्ली में खरीफ अभियान 2026 के लिए राष्ट्रीय कृषि सम्मेलन के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए श्री चौहान ने बताया कि इस वर्ष देश में अनुमानित खाद्यान्न उत्पादन 376 करोड़ टन से अधिक है जो पिछले वर्ष की तुलना में 5.3% अधिक है। उन्होंने कहा कि सरकार ने कृषि और किसान कल्याण पर विशेष जोर दिया है। केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि
2: हर एक राज्य का हमें कृषि रोड मैप बनाना है। हर एक राज्य हम पूरा सहयोग करेंगे। यहां आपके कृषि का रोड मैप बनाइए, आपकी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हुए माटी माटी में उपस्थित तत्वों को ध्यान में रखते हुए कौन सी फसल आपके लिए उपयुक्त है, डाइवर्सिफिकेशन के लिए कौन सी उपयुक्त है और उसके साथ साथ फसल बाद भी रोड मैप बनेंगे। खेत बचाओ अभियान के बारे में आज आपको गंभीरतापूर्वक सोचना है। प्रधानमंत्री जी विजनरी लीडर है, उनको धरती के स्वास्थ्य की भी चिंता है, भारत की जनता के लिए उनकी हर सांस चलती है, किसानों के हित ऐसी है। लगातार खेत बचाओ अभियान पे जोर दे रहे हैं, उस पर कल प्राकृतिक खेती पर भी चर्चा होगी। संतुलित फर्टिलाइजर के उपयोग पर बात करना है। जैसे विकसित कृषि संकल्प अभियान में हम लोग जुटे थे, सारे हमारे वैज्ञानिक जाएं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री अमित शाह ने देश के हर अवैध अप्रवासी की पहचान करके उसे निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। आज गांधीनगर लोकसभा क्षेत्र में 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। श्री शाह ने कहा कि सरकार सीमाओं की सुरक्षा और देश में अवैध अप्रवासन को समाप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी है। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। हिंदी फिल्मों के गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने ट्वीट कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पद्मश्री से सम्मानित मशहूर शायर बशीर बद्र जी के निधन पर गहन दुख जताया और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डॉक्टर बद्र ने अपनी शायरी के माध्यम से मानवता के साथ जीने का संदेश दिया। समाचारों में अब वक्त है एक छोटे से अंतराल का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन यूट्यूब पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। देश सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों में

0: ईद उल अजहा का पर्व अकीदत, भाईचारे और सौहार्द के वातावरण में मनाया गया। सुबह से ही लोगों ने विशेष नमाज अदा कर देश में अमन, चैन और तरक्की की दुआ मांगी। नमाज के बाद एक दूसरे को गले लगाकर ईद की मुबारकबाद दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेशवासियों को ईद की मुबारकबाद दी। देवास जिले में ईद का पर्व हर्षोल्लास, भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। धार में नमाज अदा करने के बाद लोगों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि सीबीएसई की कक्षा 12वीं की परीक्षा मूल्यांकन प्रक्रिया में कुछ कमियां आने के बाद अब पुनर्मूल्यांकन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री प्रधान ने कहा कि अधिकारी ये सुनिश्चित करेंगे कि सभी विद्यार्थियों की शिकायत का समाधान किया जाए और सभी स्तरों पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। श्री प्रधान ने बताया कि लगभग 4 करोड़ स्कैन किए गए प्रश्नों का मूल्यांकन पहली बार सीबीएसई द्वारा ओएसएम प्रक्रिया के माध्यम से किया गया है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की परीक्षा की संशोधित तिथियां और प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। एनटीए के अनुसार परीक्षाएं अब 31 मई, 6 और 7 जून को आयोजित की जाएंगी। आज होने वाली परीक्षा ईद उल अजहा के कारण पुनर्निर्धारित की गई थी। एनटीए ने बताया कि रविवार को परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं और इन्हें एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट cuet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। 6 और 7 जून को परीक्षा देने वाले शेष उम्मीदवारों के प्रवेश पत्र जल्द ही जारी किए जाएंगे। प्रदेश में नौतपा के दौरान भीषण गर्मी के साथ आंधी और बारिश का मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। पिछले 3 दिनों से कई जिलों में बारिश दर्ज की गई, इसके बावजूद लू और तेज गर्मी का असर कम नहीं हुआ। मौसम वैज्ञानिक अरुण शर्मा ने बताया है कि
1: अभी आगे आने वाले मौसम की बात की जाए तो फिलहाल अभी 2 दिनों के अंदर जो है वो सीवियर हीट वेव का रेड अलर्ट जो है वो डे 1 के लिए निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर जैसे जिलों के अंदर दिया गया है। साथ ही दतिया और भिंड जैसे जिलों के अंदर डे 1 के अंदर ऑरेंज हीट वेव का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है। डे 2 के अंदर भी हीट वेव जो है वो प्रदेश के जो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल पार्ट से हैं उसके ऊपर देखने को फिलहाल अभी मिलेगी, लेकिन साथ ही एक पश्चिमी विक्षोभ भी हमारे उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने जा रहा है कल से, तो उसके होते हुए जो है वर्षा की गतिविधि हमारे प्रदेश के संभागों के डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो काफी बढ़ेगी। और कल जो ऑरेंज अलर्ट जो है वो शिवपुर, मुरैना जैसे जिलों के अंदर हेल स्टॉर्म का भी, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग और हेल स्टॉर्म का 50-60 केएमपीए के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
0: भारतीय टीम कल से 6 जून तक जापान के काकामिघारा में शुरू होने वाले अंडर-18 एशिया कप हॉकी 2026 में खेलने के लिए पूरी तरह तैयार है। पुरुषों के वर्ग में भारत को पूल ए में रखा गया है। पूल ए में मेजबान जापान, कोरिया, चीनी, ताइपे और कजाकिस्तान की टीमें सम्मिलित हैं। भारत कल कजाकिस्तान के खिलाफ अपना पहला मैच खेलेगा। इसके बाद 31 मई को जापान, 1 जून को कोरिया और 3 जून को चीनी ताइपे के खिलाफ मैच होंगे। अब कुछ समाचार संक्षेप में। भोपाल की ट्विसा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द किए जाने के बाद सीबीआई ने उन्हें आज गिरफ्तार कर लिया है। राजगढ़ में श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर के दौरान 109 श्रमिकों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। प्रदेश शासन द्वारा बच्चों की रचनात्मक प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है। शहडोल जिले में मध्य प्रदेश को 100% साक्षर बनाने के लिए उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है और कटनी द्वारा नगरवासियों को निमित्त एवं सुचारू पेयजल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।

0: जय जवान जय किसान। चौपाल में बैठे और चौपाल कार्यक्रम सुन रहे बारे सभी बहन भैयन को रेणु राजा की राम राम। और आज हमारे संग बैठे हैं रूपेश भैया। सुरूपेश भैया आपको भी हमारी राम राम।
1: हाँ बहन, और आपको भी हमारी राम राम। और चौपाल कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहन का जय रूपेश भैया की राम राम।
0: भैया देखो कैसी कसी गर्मी पड़ रही है।
1: हाँ बहन,
0: तो अपन किसान भैया से सबसे पहले तो जो ही कहेंगे कि गर्मी से अपनों बचाव रखो, अपने पशुओं को बचाव रखो, और अपने जो घर के बड़े बूढ़े हैं बुजुर्ग हैं उनको विशेष ध्यान रखो। छोटे बाल बच्चन को तो ध्यान रखना ही है।
1: सही बात कह रही है बहन आप।
0: कैसे के अगर थोड़ा भी देखो गर्मी में कोई बीमार पड़ गो तो भैया खेती किसानी को काम बैठ जाएगा, और खेती किसानी को काम बैठ गया तो अपन बहुत परेशान हो जाएंगे।
1: सही कह रही हैं
0: तो
1: आप।
0: खेती किसानी का जो भी काम है सवेरे संध्या ठंडी में करें।
1: हाँ बहन आप सही कह रही हैं। और हम भी भैया से यही कहना चाहेंगे कि आपको कोनो बहुत ही जरूरत है काम करवे की, तो आप दोपहरिया में ना निकले, अपनों काम जहाँ जरूरत है तो बस सवेरे या संध्या के निपटा लें।
0: हाँ।
1: और अपनों भी ध्यान रखें और बुजुर्गों को भी ध्यान रखें, अपने बच्चे बच्ची इनको ध्यान रखें और अपने पशुओं को भी ध्यान रखें।
0: बिल्कुल
1: पशुओं को जैसे अपन अपनी सेहत को ध्यान रख रहे हैं वैसे ही अपने अपनी पशुओं को भी ध्यान रख रहे हैं।
0: बिल्कुल भैया। तो जी तो अपन ने गर्मी से बचाव की बात कर ली। अब
1: हाँ
0: भैया
1: बहन।
0: बात कर रहे थे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की।
1: हाँ बहन।
0: तो भैया देखो जो है कि जामे का है कि जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन है जो भारत सरकार द्वारा 2000 में शुरू करी गई एक प्रायोजित योजना है। जा योजना का उद्देश्य उन्नत तकनीकों के माध्यम से गेहूं, चावल, दाल, मोटे अनाज और वाणिज्यिक फसलन की उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि करवा है। और भैया देखो जाको मुख्य उद्देश्य जो है कि जाको उत्पादन बढ़ावो है। तो किसानन को उन्नत किस्म के बीज, सूक्ष्म पोषक तत्व, उर्वरक और कृषि मशीनरी जो है वे उपलब्ध कराते हैं शासन अपने। जैसा भैया कहो के देखो जो है अपनो जो उत्पादन है खाद्यान्न को वो बढ़त है
1: सही है।
0: हैं। और देखो भैया मिट्टी को स्वास्थ्य सुधार हुआ है। आजकल अपन देख रहे हैं कि रासायनिक दवाइयों के उपयोग कर रहे हैं तो बात में भैया अपन देख रहे हैं खेत की जो मिट्टी है वो खराब हो रही है, बाकी जो उत्पादन क्षमता है वो कम हो रही है।
1: और बहन जी रासायनिक दवाइयों की जो मात्रा है, अब अपन जैसे कम डाल था शुरू में, फिर भी इनकी मात्रा जैसे अपने अंग्रेजी दवाई अपन खाते हैं
0: हाँ
1: ऐसे गोलियों को असर कम हो जाता है अपने शरीर पे, फिर
0: हाँ
1: अपने गोलियों की दवाइयों की मात्रा बढ़ाने पड़ते हैं।
0: हाँ
1: जैसे खेती में जो ये हाल है कि कीटनाशक अब अपन डाल रहे हैं फिर उनकी मात्रा बढ़ाना पड़ता है।
0: हाँ
1: मात्रा बढ़ाते बढ़ाते एक तो अपना खर्चा ज्यादा होता है और
0: हाँ
1: जमीन जो है
0: हाँ
1: वो भी अपनी मतलब काम की नहीं रह रही, वो भी दिनों दिन खराब हो जा रही है
0: बिल्कुल बिल्कुल सही
1: और
0: कह रहे हो।
1: बीमारी अलग से हो रही है।
0: हाँ भैया तो जामे जो ये है कि मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधार हुआ है। और भैया जैसे आर्थिक लाभ भी हैं, आर्थिक
1: हमें
0: लाभ जो है कि उन्नत तकनीकन को उपयोग करके किसानन की शुद्ध आय में वृद्धि करवो है। जामे कुछ प्रमुख फसलें हैं जैसे कि समय के संग संग जामे सन को विस्तार करो गो है। वर्तमान में जामे जी फसलें हैं जैसे खाद्यान्न में चावल, गेहूं और दालें, पोषक अनाज में श्री अन्न, मक्का, जौ, ज्वार और बाजरा है, और
1: हमें
0: वाणिज्यिक फसलन में कपास, गन्ना और जूट।
1: सही कह रही हैं मैंने आप। और हम भी भैया से यही कहेंगे भैया तो अपन देखें कि आज खेती में खर्चा बढ़ जा रहा है
0: बिल्कुल भैया
1: और पानी की स्थिति कम हो जा रही है
0: हाँ
1: और मौसम बदल रहा है, कब कौन सा मौसम बदल जाए,
0: हाँ
1: और ऐसे में तो भैया जो है कि पुराने तरीका से खेती करने में कम बचत होते हैं
0: बिल्कुल
1: और अब
0: भैया
1: जरूरत है कि अपन नई नई तकनीक अपनाएं।
0: हाँ भैया। और जा योजना में किसानन को मिलने वाली तमाम सुविधाएं भी हैं। जाके
1: हमें
0: अंतर्गत किसानन को उन्नत किस्म के बीज मिलते हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, सिंचाई के लाने, पंप सेट और कृषि उपकरण सब्सिडी अनुदान पे उपलब्ध कराए जाते
1: ये
0: हैं।
1: तो बहुत अच्छी बात है मैम।
0: हाँ कैसे कि जो ये कृषि योजना है जो किसानन को फसल उत्पादन बढ़ावे के लाने मदद देते हैं। और जहाँ मिशन में किसानन के लाने कछु सहायता भी दी जाते हैं जैसे कि उन्नत बीज है, प्रमाणित बीज और संकर बीजन पे सब्सिडी मिलत है।
1: अच्छी बात है मैम।
0: हाँ और जो किसान भैयान को कहा है कि प्रभावित कर प्रमाणित और हाइब्रिड जो बीज है वे खरीदे थे
1: हाँ हाँ
0: उन्हें वापस सब्सिडी मिला था, उससे बास भैया उनको उत्पादन भी अच्छे होते
1: हाँ
0: हैं।
1: मैम।
0: और कृषि यंत्र जैसे ट्रैक्टर है, पंप सेट है और उन्नत कृषि उपकरण है उन पर वित्तीय सहायता मिला थे, तो जो भी लाभ है किसान उनको। और जहाँ एक फायदा जो है कि तकनीकी प्रशिक्षण यानी कि कृषि वैज्ञानिकों द्वारा खेतन में जाके नई तकनीकी सिखावे की सुविधा भी जा योजना में मिलत है। और अगर किसान मन भैया नई तकनीक से खेती करवो चाहते हैं तो कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को प्रशिक्षण दाव जावे की व्यवस्था है। और जो मिशन को मुख्य उद्देश्य जो ये है कि उन्नत तकनीकी और कृषि प्रबंधन पद्धतियों के प्रसार के माध्यम से इन फसलन की पैदावार में अंतर को कम करो जा सके।
1: सही बात करें बहन आप, और बहुत अच्छी जानकारी बताई। और अम्मी जी कहेंगे भैया आपके खेती में हमेशा

0: प्रमाणित और उन्नत बीजों का उपयोग करें, समय से बुवाई करें, खेत की मिट्टी का परीक्षण जरूर कराएं और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत किसान भैयाओं से यही कहेंगे कि अपने उन्नत बीज, कृषि यंत्र प्रशिक्षण और नई नई तकनीकी जानकारी दी जाऊत है, और जैसे कि अपनी जो मोटी अनाज दालें हैं, अनाज की खेती
1: बढ़ाए जोर दे रही है। अब भैया देखो, जे बात को तो बताइए खत्म कर रहे थे, अब अपन दूसरी चर्चा कर रहे थे कि बेटा बेटी एक समान।
0: हाँ बहन,
1: तो भैया देखो रूपेश भैया, अपन देख रहे हैं
0: हाँ
1: कि आजकल अपने गाँव में या शहर में अपन देख रहे हैं कि खूब पढ़ लिख गए हैं बच्चा।
0: सही,
1: अपन भी कह रहे हैं कि हम बहुत आगे बढ़ गए, हमने बहुत तरक्की कर ली, लेकिन कितम कितम अभी भी आप देखो 50% परिवार में बेटा बेटियन में भेद कर हो जाते हैं। बोलो हम सही कह रहे हैं भैया कि नहीं?
0: सही याद करी मैंने, संस्कार से दूर हो जा रहे हैं बच्चे, पढ़े में भले ही आगे हो जा रहे हैं।
1: हाँ, तो अपन भी थोड़ा जो रखें, सबसे पहले कि देखो जो काम बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है।
0: हाँ
1: है, तो बेटियन को अपन भेदभाव ना करें, बेटियन में बेटियन को पढ़ावें लिखावें, खूब प्यार लाड़ करें, उन्हें समय पे स्कूल भेजें। कैसे? देखो शासन द्वारा दुनिया भर की सुविधाएं, फ्री पुस्तकें हैं और बस्ता साइकिल सब कुछ तो मिल लो, बस अपन को क्या करना है कि बेटियन को पढ़ावे भेजने हैं और इनमें भेदभाव नहीं करने।
0: सही बात कही बहन, और अपन देखें कि आजकल बेटियां ऐसे कोनो क्षेत्र नहीं है जो उनमें पीछे हो।
1: हाँ।
0: चाहे आज अपन देखें हर क्षेत्र में वो अपाओ परिवार, गांव, शहर, देश का नाम रोशन कर रही हैं।
1: बिल्कुल भैया, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं।
0: हाँ,
1: और बेटा बेटियन को सरकार द्वारा अधिकार भी समान है, है? माता पिता की संपत्ति में भी उन्हें बराबरी को हिस्सा मिला था।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है
1: ना। अब जो नहीं है कि नहीं साहब मोड़न को ज्यादा मिले और मोड़ियन को कम मिले, तो जो सब चीज भी खत्म हो गई है, तो अपन को दोयन को बराबरी से लाड़ प्यार करने हैं और बेटा बेटियन में कोई भेदभाव नहीं करने भैया। और देखो दोयन को समान जिम्मेदारी है, बल्कि बिटिया और ज्यादा जिम्मेवारी निभाती है भैया। तो हमारा तो जो ही कह वो है अपने किसान बहन भैया से, बेटा बेटी में बिल्कुल भेद ना करें और बेटा बेटी दोनों एक समान, यह है भारत की शान। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देश का भविष्य उज्जवल बनाओ।
0: सही बात करी बहन, और कछु भैया वहाँ का होता है कि बेटा नहीं होता है और बेटों की चाहत में
1: हाँ।
0: बेटियों की बलि भी चढ़ा देते हैं, उन्हें जन्म लेवे से पहले ही उनकी भ्रूण हत्या करवा देते हैं।
1: बिल्कुल,
0: तो सोचो भैया कि आपने कौन को भविष्य ऐसे कैसे देख लो।
1: हाँ भैया,
0: हो सकता है कि वो, और आजकल अपन देख रहे हैं कई बेर बेटे एक वक्त अपन को धोखा दे सकते हैं।
1: हाँ।
0: जरूरी नहीं है कि अपने बुढ़ापे में भी रोटी दें।
1: हाँ।
0: लेकिन बेटियों पर भरोसा आप बेटों से कहीं ज्यादा कर सकते हैं।
1: बिल्कुल सही,
0: इसलिए आप हमारा क्या चाहिए आपसे कि बेटियों पे आप बेटों से ज्यादा भरोसा करें। हाँ। विश्वास करें। और रही बात आगे
1: समानता को अधिकार दें।
0: हाँ, रही बात आगे कमावे की और पालवे की और घर चलावे की, तो ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो उनमें बेटियां अपनों सहयोग नहीं कर रही और आगे नहीं बढ़ रही, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे वो वकील हो, चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे पुलिस में हो, चाहे फोर्स में हो, हर क्षेत्र में बेटियां अपनों नाम कर रही हैं।
1: बिल्कुल भैया सही कह रहे हैं। तो भैया रो चौपाल कार्यक्रम से विदा लेते हैं।
0: हाँ बहन
1: है, तो भैया रो राम राम।
0: हाँ भैया राम राम, जय जवान जय किसान।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: रर रर क्या कर रहा है?
2: इधर इधर इधर हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहा
2: है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। तो पहली वाली बात कहा,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।

0: अच्छा
1: बेटे एक्सपीरियंस से बता रहा है, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
0: ठीक है भाई, मैं भी आज तक जैविक खेती शुरू करूंगा।
2: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
3: जय जवान जय किसान। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी भैया बहनों का रूपेश भैया और
4: रेणु राजा की राम राम।
3: भैया बहनों, कार्यक्रम किसान वाणी में आप सभी को स्वागत है।
4: बिल्कुल भैया, देखो अब अपन तनक देर पहले चौपाल में बातचीत कर रहे थे, अब भैया किसान वाणी कार्यक्रम लेके आ जा रहे हैं अपन, तो अब भैया किसान भैया से बात कराते हैं। तो भैया देखो क्या बातचीत करें भैया, कि देखो खेती किसानी तो भैया करते ही है।
3: सही बात है।
4: ओ भैया देखो क्या उतर आके सहब व्यवसाय हमारे भैया कराते हैं, कछु भैया पशुपालन कराते हैं, कछु मुर्गी पालन कराते हैं, कछु बकरी पालन कराते हैं, कछु मछली पालन कराते हैं, और हमारे भैया कछु मधुमक्खी पालन भी कराते हैं। जैसे भैया कहा है कि खेती किसानी के अलावा सह व्यवसाय जो उनको जो धंधो होते हैं संग खेती के बाद उनको अतिरिक्त आमदनी हो जाते हैं और आर्थिक लाभ भी मिल जाते हैं। सो भैया रो आज बात कर रहे थे मधुमक्खी पालन की।
3: सही बात कह रही बहन आप, और बहुत अच्छे एक आप व्यापार की बात कर रही है। क्या है बहन की अपन देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि फसल हमेशा साथ दे, कभी कभी मौसम की मार पड़ जाते हैं।
4: हाँ।
3: तो अपन एक ऐसा संग व्यवसाय लेकर चल लेंगे जोन से अपनी नगदी पैसा आए और जल्दी आए और रोजाना अपने एक आय का स्रोत बनो रहे। जय की लाने आप जो बहन अच्छो विषय लेके आई है।
4: हाँ, और भैया देखो के शहद को इकट्ठो करवे के लाने भारत में मधुमक्खी पालन बहुत पुराने समय से करो जा रहा है, जो एक परंपरा रही है अपने तो मधुमक्खी पालन करवे की। और भैया आजकल अपन देख रहे हैं कि देसी और अंतरराष्ट्रीय बाजार में शहद की लोकप्रियता और मांग की वजह से मधुमक्खी पालन तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। जैसे न केवल किसानन को अच्छी आमदनी हो रही है, बल्कि मधुमक्खी पालन में होबे वाली परागण को इस्तेमाल करवे से खेतन में जो कृषि उत्पादन है वहाँ में भी बढ़ोतरी हो रही है। और भैया रो मधुमक्खी पालन से शहद, मोम, रॉयल जेली, ये सब चीज़ें अतिरिक्त उत्पाद हैं जो ये भी मिलते हैं, जो कि किसानन की अतिरिक्त आमदनी को जरिया साबित होते हैं।
3: सही बात करें मैंने आप, और ये बहुत अच्छे फायदे बताए। और संग संग आज अपन देखे मैंने कि जिस चीज़ों के संग संग अपने स्वास्थ्य के लाने सेहत कितने लाभदायक है, अपन कोनो डॉक्टर के पास जाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाए, कोनो भी वो दवाई देते हैं तो हमेशा सेहत के संग खावे की सलाह देते हैं।
4: बिल्कुल भैया,
3: है ना बहन?
4: बिल्कुल भैया। और भैया देखो पारंपरिक फसलन में लगातार हो रहे नुकसान से अपन देख रहते हैं कि कहूँ पानी बरस गो, कबू सूखा पड़ गो, कबू कछु हो गो, कहूँ कीड़ा लग गए, तो भैया जे सब को मद्देनजर रखते हुए किसानन को आकर्षण मधुमक्खी पालन की तरफ लगातार बढ़ रहा है।
3: सही बात कर
4: है भैया। और करीब 80% फसलीय पौधे क्रॉस परागण करते हैं, कैसे कि इन्हें अपने ही प्रजाति के पौधों से परागण की जरूरत होते हैं, जो कि इन्हें बाह्य एजेंट के माध्यम से मिलते हैं। मधुमक्खी एक बाह्य एजेंट होते, ऐसे किसानन को जो पेशेवर ढंग से मधुमक्खी पालन करवो चाहते हैं उन्हें एपिकल्चर यानी मधुमक्खी पालन को प्रशिक्षण लेना चाहिए। आमतौर पर मधुमक्खी के छत्ता में एक रानी मक्खी, कई हजार श्रमिक मक्खी और कछु काटे वाली मधुमक्खी होती है।
3: हाँ बहन, वो सही है।
4: हैं, और मधुमक्खियों को समूह भैया जो के श्रम विभाजन और विभिन्न कार्यन के लाने विशेषज्ञ को उत्तम उदाहरण होते हैं। और मधुमक्खी श्रमिक मधुमक्खियों की मोम ग्रंथि से निकल वाले मोम से अपना घोंसला बनाते हैं, जैसे शहद को छत्ता कहते हैं अपन। और भैया छत्ते के जो ऊपरी भाग है जाको इस्तेमाल शहद जमा कर विकलाने
3: बहनों। और आपने बहुत अच्छी विधि बताई भैया का, आज शहद को काम कैसे होता है और कैसे कर जाते हैं। हम भी यही भैया से कहेंगे कि भैया के अपन अगर ऐसे सोचते हैं कि मधुमक्खी पालो कोनो कठिन काम है, पर ऐसा नहीं है। अगर अपन ने जानकारी हो तो अपन कोनो व्यवसाय को बड़े आसानी से कर सकते हैं।
4: हाँ,
3: शुरुआत में भैया हमारे किसान भैयाओं का अपन जाए 5 से 10 बक्सा से भी लगातार आगे काम की शुरुआत कर सकते हैं, और धीरे धीरे जैसे अपने अनुभव मिले तो अपन जाके बक्सन की संख्या बढ़ा के और अच्छे व्यापार कर सकते हैं। और भैया हमेशा हम जी और एक बात कहेंगे कि कौन आप व्यवसाय करें, बामे जी सोचें अपन के अपन जरूरी नहीं है कि अपन क्षेत्र में ही वह चीज के लाने बेचें। आज अपन देखें कि अपन ऑनलाइन को जो माध्यम है, मोबाइल हर हाथ में है, अपन ऑनलाइन के माध्यम से ही वह चीजें बेच सकते हैं, दूर बाजार में जाके वह चीजें बेचें तो निश्चित रूप से बाको अपने अच्छे पैसे मिलते हैं, अच्छे दाम मिलते हैं।
4: बिल्कुल भैया,
3: है ना बहन?
4: तो भैया देखो हम किसान मन भैया से जो ही कहेंगे के मधुमक्खी पालन करें और ज़्यादा से लाभ लें। और भैया रो हम सोच रहे हैं कि आपको एक जो भेंट वार्ता सुनवा दी मैं।
3: हाँ बहन, तो कौन सी भेंट वार्ता लेके आई हैं बहन?
4: भैया आज हम भेंट वार्ता लेके आए हैं गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल, और वार्ताकार हैं डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता।
3: हाँ बहन,
4: और इनसे बता रहे हैं भैया समर्थ अग्रवाल। कैसे भैया देखते हैं ना कि गर्मियन में दूध कम हो जाते हैं पशुअन को, कछु कछु समस्या हो जाते हैं। तो हम किसान मन में इनसे जो ही कहेंगे कि जाए ध्यान से सुनो, और भैया अपन भी जो ध्यान से सुनाते हैं मैट वार्ता, तो भैया रो सुनो।
1: ग्रामीण श्रोताओं नमस्कार, इस कार्यक्रम में हम जो भेंटवार्ताएं और बातचीत आप तक पहुंचाते हैं, इनका उद्देश्य होता है कि समय के साथ हम जो खेती का काम कर रहे हैं इसके साथ साथ हम कुछ सपोर्टिंग व्यवसाय भी करें, यानी कि कुछ दूसरे कार्य भी करें जिससे हम अपनी आमदनी बढ़ा सकें। क्योंकि सरकार का भी लक्ष्य है कि किसान की दुगनी इनकम, और हर इंसान की भी इच्छा होती है कि अच्छे से अच्छी उसकी आमदनी हो, ताकि वो अपना खुद का, अपने परिवार का, अपने बच्चों का भरण पोषण कर सके, उन्हें बेहतर सुविधाएं दिला सके। इसके लिए जरूरी है कि हम खेती के साथ दूसरे काम करें। तो खेती के साथ किसान के लिए जो सबसे बड़ा पैरेलल कार्य जुड़ा हुआ है वो है पशुओं का पालन करना। लेकिन पशु है या खेती है, बीमारी दोनों में आती है। खेती में ही बीमारी आती है तब हम रासायनिक दवाएं डालते हैं, और पशुओं में भी आती है तो फिर हम उसका डॉक्टर के द्वारा इलाज भी करवाते हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल, इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता है। आप भेड़ प्रजनन केंद्र शिवपुरी में पशु चिकित्सक सहायक शल्यज्ञ हैं। डॉक्टर साहब सुनने वालों के बीच में स्वागत है, नमस्कार।
5: जी आपका बहुत नमस्कार, आपका और मेरे सभी पशुपालक भाइयों सबको मेरा नमस्कार।
1: डॉक्टर साहब इस ग्रीष्म ऋतु में पशुओं में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और उन दिक्कतों से क्या दुष्परिणाम निकलते हैं, और उनसे हम कैसे बच सकते?
5: सर मैं इसको थोड़ा सिलसिलेवार बताना चाहूंगा जिससे कि मतलब समझने वालों को ये समझ में आए, सारे पशुपालक भाइयों को, कि किस तरह बचा सकते हैं, किस तरह दुग्ध उत्पादन बढ़ा सकते हैं, और क्या क्या ऐसे किए जा सकते हैं जिससे कि तापमान कम हो तो दुग्ध उत्पादन बढ़े, जिससे आमदनी में बढ़ोतरी हो। सबसे पहले तो जैसा अपन सभी देख रहे हैं समय पे अत्यधिक गर्मी का समय है, और पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर तो भीषण गर्मी पड़ ही रही है, समय पे भी अत्यधिक गर्मी है। जिस तरीके से इंसानों के अंदर इसके दुष्प्रभाव होते हैं उसी तरह पशुओं में दुष्प्रभाव देखे जाते हैं इनके। अब चूंकि पशु है वो बोल सकता नहीं है वो, तो उसके अंदर ये चीजें जो है वो ज्यादा एग्रेसिव रूप में दिखती है, क्योंकि इसमें बताने वाला कोई नहीं है, पशु नहीं बताने वाला कि गर्मी कितनी पड़ रही है या उसको क्या तकलीफ हो रही है। इसके लिए मैं आपको पहले बताऊं कि जो बाहर का टेम्परेचर है गर्मियों के अंदर, जब अत्यधिक गर्मी पड़ती है तो लगभग 45 से 48 डिग्री के आसपास आराम से पहुंच जाता है। पशु का जो तापमान होता है वो लगभग 38-39 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो अब चूंकि करीब जब बाहर का टेम्परेचर है और पशु का खुद का टेम्परेचर है, दोनों टेम्परेचर में देखेंगे लगभग से लगभग 10 डिग्री का अंतर आ जाता है। और आपको एक सामान्य जानकारी के लिए चीज बता दूं कि एक डिग्री बढ़ने पर लगभग 10-15% जो है दुग्ध उत्पादन में कमी आती है एक डिग्री बढ़ने पर। अब 10 डिग्री बढ़ेगा तो दूध प्रोडक्शन, मिल्क प्रोडक्शन पूरा कम हो जाएगा,
1: जीरो हो जाएगा।
5: हाँ, वो जीरो तो क्या प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन हाँ आधे से भी कम रह जाता है समय पर। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका ध्यान रखा जाए, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे स्तर पर हैं, क्योंकि बाहर का तापमान तो हम कम कर नहीं सकते, तो हम कुछ व्यवस्थाएं ऐसी कर सकते हैं जैसे तापमान कम हो और जो पशु है उसका जो तापमान है वो लगभग स्थिर रहे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, और कैसे भी करके 2 महीने तो निकालना ही है, तो उसमें बहुत ज्यादा विपरीत परिस्थिति नहीं हो। क्योंकि गर्मियां और लपट का सीजन है समय पर, पशु बहुत जल्दी बीमार होता है, और जल्दी बीमार होगा तो उसके मृत्यु के चांस बहुत ज्यादा हो जाते हैं समय पर, क्योंकि इलाज करने का मौका बहुत कम मिल पाता है लपट केस में। अब इसके अंदर एक एक करके बात करें, जैसे मैं दुधारू पशु की बात करूं तो गाय और भैंस ये दोनों अपन दुधारू पशु में मानते हैं लगभग, जिनका कमर्शियल या व्यावसायिक तरीके से अपन जिनका दुग्ध बेच के अपन आमदनी अर्जित करते हैं। इनमें भी कुछ मूलभूत अंतर हैं गाय और भैंस के अंदर भी। जो भैंस है उसका सामान्यतः रंग काला ही होता है, तो उसके अंदर गर्मी के दुष्प्रभाव ज्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि काला रंग अपने को पता है कि ऊष्मा का बहुत अच्छा अवशोषक होता है, गाय के कंपैरिजन में मैं बता रहा हूँ आपको, गाय से तुलना करते हुए। दूसरा, जो भैंस है उसके अंदर जो स्वेट ग्लैंड्स होती हैं, मतलब पसीने वाली जो ग्रंथियां हैं, वो ना के बराबर होती हैं, तो भैंस को अपना तापमान बाहर के तापमान से मिलाने में अत्यधिक श्रम करना पड़ता है। तीसरा, जो गाय होती है, गाय के ऊपर आपने देखा होगा उसका जो स्किन के ऊपर, खाल के ऊपर बालों का एक कोट होता है जो भैंस के ऊपर ना के बराबर होता है, तो बाल भी उसके बहुत ज्यादा ऊष्मा परावर्तित नहीं कर पाते हैं, हटा नहीं पाते हैं, तो वो भी एब्जॉर्ब होती है। तो इसका जो दुष्परिणाम है वो दुष्प्रभाव वो भैंस में ज्यादा देखने को मिलता है कंपैरेटिव गाय के, एक चीज। दूसरा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जो इनका तापमान है गाय और भैंस का, सामान्यतः जो बॉडी टेम्परेचर है वो लगभग 39 के आसपास डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, बाहर का टेम्परेचर लगभग 48-49-50 तक पहुंच जाएगा। तो 10 डिग्री के तापमान को सामंजस्य बिठाना, उसमें क्या होता है कि पशु के जो एनर्जी होती है, पशु जो भोजन करता है, अपन जो भोजन लेते हैं उससे अपने को ऊर्जा मिलती है, उस ऊर्जा का एक पार्ट, एक हिस्सा जो होता है दुग्ध उत्पादन में काम आता है। अब गर्मियां बहुत हैं तो ऊर्जा का बहुत बड़ा हिस्सा क्या होगा कि शरीर का जो तापमान है उसे सामंजस्य बढ़ाने में लग जाएगा, तो इससे दो अपने को नुकसान होंगे। पहला तो क्या कि पशु का जो सामान्य स्वास्थ्य है जो वो ठीक नहीं होगा, वो बैलेंस नहीं रहेगा उसमें। और जो दूसरा है जो दुग्ध उत्पादन है वो तो कम होगा ही होगा। तो कुछ चीजें हैं ऐसी जिसमें हम कर सकते हैं, जिसमें एक आवास व्यवस्था है, एक भोजन व्यवस्था है और कुछ सामान्य प्रबंधन है, जिसमें हम एक एक करके बात करेंगे समझने को।

0: कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से कम किया जा सके। सर, आवास के अंदर कई सारी चीजें हैं इसके अंदर, जैसे जिस जगह अपन पशु रखते हैं उसकी जो पशुशाला की जो हाइट है वो 10 फीट से कम ना हो,
1: ऊंचाई बढ़ा दें,
0: ऊंचाई बढ़ाए,
1: गर्मी भरे
0: जो, हाँ, जो वेंटिलेशन रहे, क्रॉस वेंटिलेशन रहे, सफोकेशन ना हो, जो पशु जो गोबर करता है उससे भी कई गैसें उत्सर्जित होती है,
1: मीथेन
0: गैसें निकलती है,
1: उसे हटाए तुरंत,
0: वो गर्मी बढ़ाती है वो भी, तो वेंटिलेशन रहेगा तो वो गैस निकलेंगे, प्लस बाहर की हवा आती जाती रहेगी। दूसरा, जो छत होती है उसके ऊपर भूसे का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर भूसा डाल दें, तो जो एस्बेस्टॉस शीट जो होती है, लोहे की शीट ज्यादा जल्दी गर्म होती है, तो उससे भी टेम्परेचर 1 से 2 डिग्री कम हो सकता है।
1: भूसा रख देंगे तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, अंदर कमरे का
0: तो जो अपन उद्देश्य है, जो अपना
1: एक ये आवास के लिए हो गया जी। खानपान हमें कुछ बदलाव करना पड़ेगा कि बढ़ाना पड़ेगा?
0: सर, इसमें आवास में भी मैं थोड़ी सी और चीजें जोड़ना चाहूंगा इसके अंदर। पहले तो मैंने बताया कि एस्बेस्टॉस शीट के ऊपर भूसे की पॉल रखें, दूसरा उसकी हाइट इतनी रखें, और जो तीसरा है वो है कि एक जो पशु है, वयस्क पशु है, गाय भैंस, उसको लगभग लगभग 35 से 40 स्क्वायर फीट की जगह जरूरत होती है एक के लिए 35 से 40 स्क्वायर फीट। तो मतलब बहुत ज्यादा क्राउडिंग नहीं करें या बहुत सारे जानवर एक ही जगह ना बांधें, क्योंकि ज्यादा पशु होंगे तो गर्मी ज्यादा होगी, ऑब्वियस बात,
1: सांसें भी छोड़ते हैं,
0: उससे भी टेम्परेचर बढ़ता ही है। चौथा पॉइंट बताना चाहूंगा कि इसके अंदर पशुओं को जो चराने के लिए ले जाएं वो सुबह के समय पे, जब गर्मी बहुत ज्यादा ना हो, या शाम के समय पे। अगली बात, जो पीने का पानी है वो स्वच्छ पानी रखा जाए और 24 घंटे पानी रखा जाए उनके ऊपर। और अगली, इसके अंदर जो कुछ अच्छे पशुपालक हैं वो जो कूलर और पंखे हैं उसका भी यूज कर सकते हैं, और जो व्यावसायिक रूप से जो कमर्शियल डेयरी फार्म होते हैं वहां पर तो पानी के फुहारे भी लगाए जाते हैं, जैसे कि पानी का स्प्रे पशुओं पर होता रहता है, तो उससे उनका तापमान नहीं बढ़ता है, तो उनके जो दुग्ध उत्पादन है उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आवास से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो हमको ध्यान रखनी चाहिए।
1: खान पान पे बात करें,
0: खाने का इस समय पे गर्मियों में क्या होता है कि जो पशु सभी का, पशुओं का, इंसानों का जो भोजन आहार होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि बॉडी बहुत ज्यादा ले ही नहीं पाती है, तो आप ऑब्वियस सी बात है कम खाएंगे, पशु का भी ऐसा ही है। तो अपने को ऐसी चीजें ज्यादा देनी है जो पानी की मात्रा जिनमें ज्यादा हो, जैसे कि हरा चारा
1: जी,
0: हरा चारा अपने को ज्यादा देना है, जो पानी है वो ज्यादा रखना है। एक रेडीमेड पशु आहार भी आता है, इसे संतुलित पशु आहार कहते हैं। संतुलित पशु आहार देने से उसके अंदर उसकी जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो उसके जो पोषक तत्व है, उसकी कमी भी नहीं होगी, और जो उसका सामान्य जो पशु का शरीर है उसके अंदर किसी चीज की कमी भी नहीं आएगी। तो बहुत सारी कोशिश ऐसी रहेगी कि वो जो नॉर्मल उसका रूटीन है वैसे ही बना रहे, तो दुग्ध उत्पादन उसका बहुत ज्यादा ना गिरे।
1: तो ये खाने का हो गया, आवास का हो गया, ट्रेवलिंग, जानवर को हम ले भी जाते हैं उसमें उसकी एनर्जी वेस्ट होगी, और एनर्जी वेस्ट होगी तो वो थकेगा भी और गर्मी भी बढ़ती है, जैसे अपन चलते हैं तो पसीना आता है, तो नेचुरली जानवर को भी आता होगा।
0: जी सर,
1: तो घर पे रखना उसे उचित है कि चलाना भी जरूरी है?
0: अब इसमें दो चीजें हैं कि यदि पशु को अपन घर पर रखकर ही अपन उसको दाना भूसा वहीं दे रहे हैं, चराने के लिए नहीं ले जा रहे हैं यदि अपन, तो अच्छी बात ये रहेगी कि अपन उसको पशुशाला में ही रखें, छांव में रखें उसे, जो उसकी पशुशाला है उसका जो खिड़कियां और दरवाजे हैं उसको अपन टाट से कवर करके रखें, उसमें पानी का छिड़काव करते रहें। पूरा उद्देश्य यह है कि तापमान कैसे भी करके कम हो, और यदि उसको चराने के लिए ले जाते हैं तो उसको धूप निकलने के पहले ले जाएं, थोड़ा सा जैसे 8-9 बजे के पहले उसको चरा लें अपन, और चरा के उसको बंद कर दें,
1: मतलब 9 बजे तक वापस ले आए,
0: 9 बजे तक वापस ले आए, और फिर शाम को ले जाएं उसको अपन 5-6 बजे के आसपास, जब भीषण गर्मी ना पड़ती हो, तो टेम्परेचर जितना कम रहे, क्योंकि जितना अपन इसको चलाएंगे थकाएंगे, ऊर्जा के रूप में उसकी जो ऊर्जा का नुकसान होगा उसका सामंजस्य बिठाने में, तो अपने को नुकसान ज्यादा होगा फायदा कम होगा।
1: कभी कभी हीट स्ट्रोक आते हैं, जब हीट स्ट्रोक मानव को प्रभावित करते हैं जिसे हम लू कहते हैं, तो क्या जानवर को भी प्रभावित करते हैं?
0: जी सर, जानवर को भी प्रभावित करते हैं, इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। अब तेज गर्मी पड़ रही है तो अपना जिस तरह होता है सर, पशुओं का भी होता है, क्योंकि पशु कह नहीं पाते हैं, तो वो जो पशु मालिक है, जो पशुपालक है, उनको देख के समझ में ऐसा आ जाना चाहिए। तो मैं कुछ सामान्य लक्षण ऐसे बताऊंगा जिसको देख के आपको लगेगा कि हाँ, इसको लू या लपट या हीट स्ट्रोक के कोई चांस हुए हैं।
1: जैसे
0: इसमें पहला होता है कि पशु खाना बहुत कम कर देगा, दूसरा उसको गर्मी बहुत लगेगी तो उसका जो नाक है जो उसकी, और आंखें हैं वो सूख जाएंगी, जो उसकी जो सामान्यतः नम रहती हैं। तीसरा, उसका जो शरीर का तापमान होगा वो बढ़ जाएगा, आपको उसके कान पकड़ने पर या शरीर पर हाथ रखने पर उसको आपको गर्म महसूस होगा।
1: थर्मामीटर लगाया जा सकता है कि जानवर को अगर कान के नीचे पकड़ के हम लगाएं?
0: नहीं, कान के अंदर नहीं है वो, उसकी जगह अलग है, लेकिन सामान्यतः ये है कि अब सब वो थोड़ा टेक्निकल काम है, वो सब लोग नहीं देख पाएंगे, लेकिन कान पकड़ के सामान्यतः पशुपालक पता कर लेते हैं,
1: उससे इतना अनुभव
0: हो चुका होता है कि इसका सामान्य से तापमान ज्यादा है इसका, और बाकी सारे सिम्टम भी दिखेंगे कि वो खाना भी कम कर रहा है, पानी भी कम पी रहा है, ज्यादा चल फिर भी नहीं रहा है, और आलस भी है उसके शरीर के अंदर। और क्या होगा, उसको जीभ निकाल के हांफने कोशिश करेगा, वो सांस नहीं आएगी उसे, तो मुंह से लार टपकना शुरू हो जाएगी, आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसे लक्षण है जिसको देख के ऐसा लग सकता है कि हमारे पशु को लू लपट या हीट स्ट्रोक कुछ हुआ।
1: बचाएं कैसे इससे?
0: बचाएं कैसे? इसके जो प्रबंधन की चीजें हैं वो मैंने कुछ आपको बताई शुरुआत में, जो अपन कर सकते हैं। और इसके अंदर आप उसको कम से कम 2 से 3 बार नहलाएं, उसे उसको पानी दें, उसको पीने के लिए स्वच्छ पानी रखें।

0: उसके पास में 24 घंटे बाल्टी भर के, वो जब उसकी मर्जी हो तब वो पी ले। और खाने में बहुत ज्यादा एनर्जी वाले फूड नहीं दें, जैसे पशु आहार बहुत ज्यादा ना दें, या जो ये अनाज है अनाज बहुत ज्यादा ना दें, क्योंकि अनाज के चक्कर में क्या होगा कि एनर्जी रिच डाइट है ये, तो एनर्जी ज्यादा लेगा और शरीर थोड़ा सा वीक है तो वो पचा नहीं पाएगा, तो वो दस्त होंगे उसको और फिर वो और बीमार होगा।
1: इस चीज का ध्यान रखें।
0: उसको पानी दें, उसको ग्लूकोज मिला के दें पानी, जिससे ऊर्जा की पूर्ति होती रहे।
1: जैसे मैं वही कहना चाह रहा था कि जैसे इंसान को होता है तो उसे हम ORS का घोल देते हैं
0: जी,
1: तो क्या जानवर के लिए भी इस तरह का कोई घोल आता है जो हम दें तो उसकी हीट कम हो और हीट स्ट्रोक से वो बच सके?
0: अलग से तो कोई नहीं आता है, जो अपन ग्लूकोज और ये सारे जो पीते हैं अपन, जो यही अपन उसको बाल्टी में डाल के दे सकते हैं,
1: यानी कि उसके पानी में नमक और शक्कर का
0: घोल मिला दें, आम
1: वही ORS जैसा,
0: वो ORS जैसा काम करेगा, तो उसके डिहाइड्रेशन नहीं होगा, जिसको निर्जलीकरण कहते हैं वो नहीं होगा, तो अपन अपने पशु को स्वस्थ रख सकते हैं। और यदि इसमें यदि पशु को आपको ऐसा लग रहा है कि हीट स्ट्रोक हुआ है तो आप बहुत ज्यादा समय बर्बाद ना करें, क्योंकि इसके अंदर पशु मालिक अपने स्तर पर बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, तो नजदीकी जो पशु
1: डॉक्टर से
0: पशु चिकित्सक हैं उनको बुलाएं आप और उनसे इलाज करवाएं।
1: एक प्रश्न आता है कि हम उन्हें एक्स्ट्रा डाइट दे रहे हैं, एक्स्ट्रा पानी दे रहे हैं, हम उनसे पूरा मटेरियल लें, मतलब दूध हमें, जैसे अगर हमारा जानवर 10 किलो देता है, गर्मियां हैं 9 किलो उसकी मात्रा रह गई, तो हमें 9 किलो ही लेना चाहिए कि उसमें भी कुछ छोड़ना चाहिए ताकि उसकी बॉडी को भी वो कुछ फायदा पहुंचाए?
0: नहीं सर, इसमें फिर थोड़ा ये थोड़ा तकनीकी चीज है, इसके अंदर दूध जितना भी हो पूरा निकालना चाहिए हमेशा, दूध नहीं छोड़ना चाहिए। यदि दूध छोड़ेंगे उसके अंदर तो दो चीजें होंगी, एक तो क्या होगा बॉडी में दूध रहेगा शरीर में उसके थनों में, तो जानवर दूध बनाना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता ऑलरेडी दूध है तो वो नहीं बनाएगा। और दूसरा क्या है कि यदि उसके अंदर दूध रहा थनों में तो उसको जो थनेला बीमारी है उसके चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो वो फायदा कम होगा, उससे नुकसान ज्यादा होगा। तो वो तो जितना निकाल सके अपन उतना निकालें, पूरा निकालें जितना अपन निकल रहा है उसके थनों के अंदर से, तो छोड़ना नहीं है दूध, तो अपने दूध निकालना है, पानी की मात्रा बढ़ाते हैं उसको पिलाने के लिए।
1: सबसे ज्यादा जरूरी है कि उसे लिक्विड डाइट हमें
0: लिक्विड डाइट ज्यादा दें, उसको हरा चारा दें, उसको हरे चारे के अंदर हरा चारे में मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी है, प्लस पानी भी साथ में जाएगा उसके, तो उसे कमी
1: पूरी। गर्मियों में हरे चारे की थोड़ी सी दिक्कत ज्यादा हो जाती है कि हरा चारा उतना मिलता भी नहीं है। तो डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता जी, आप हमारे किसान श्रोताओं के मध्य में रहे कि गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल के किस किस तरह से सिलसिलेवार आपने जानकारी दी, कि उनके आवास की भी जानकारी दी, उनकी डाइट की भी दी, उनकी ट्रेवलिंग की भी दी, और अगर हीट स्ट्रोक यानी कि लू भी हमारे जानवर को लग जाए तो हमें कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना चाहिए, किसी बात का विशेष जिक्र करना चाहेंगे?
0: एक आध दो चीज ही है कि अपने को सारी कोशिश ये करनी है कि तापमान कम से कम रहे जहां पर पशु को बांधते हैं, और यदि वो बीमार हो, यदि आपको लगे से लक्षण आ रहे हैं तो आप तुरंत पशु चिकित्सक को बुलाएं, इससे अपन पशु हानि होने से बचा सकेंगे।
1: हमारी भैंस अक्सर अपनी गर्मी को कम करने के लिए पानी में बैठना पसंद करती है, अगर हमारे घर में ही मतलब जो हमारा खलियान है जहां है वहां पानी की व्यवस्था है, वहां संयोग से कोई कीचड़ है उसमें बैठे तो फिर उसे बैठने दे, रेस्ट करने दे, वापस निकालें उसे?
0: नहीं नहीं नहीं सर, ये अच्छी बात है, गाय और भैंस का जो मूल उनका जो स्वभाव है वो ऐसा है कि गाय हमेशा सूखे बैठना पसंद करेगी
1: और
0: भैंस हमेशा पानी में जाना पसंद करेगी, इसलिए आप देखेंगे जो हाईवे के जो रोड होती है वहां गाय बैठी मिलेंगी, भैंस आपको एक भी बैठी नहीं मिलेगी, क्योंकि गाय सूखा पसंद करती है। और भैंस की मैंने आपको बताया था, तीन पॉइंट बताए थे मैंने, कि एक तो उसके बाल कम होते हैं, रंग काला होता है, और जो उसकी ग्रंथियां होती हैं पसीने वाली वो कम होती हैं, तो उसको नेचुरली गर्मी ज्यादा लगती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए वो पानी में बैठती है। यदि पानी बैठती है तो वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसको बैठे देना चाहिए और समय निकालना चाहिए उसको, जब ठंडा मौसम हो जाए जब शाम के टाइम पे तब निकालें, उसको बैठने दें उसको आराम से,
1: जबरदस्ती हम अपने
0: नहीं नहीं
1: उसके रहने के कमरे में लाने की जरूरत
0: नहीं, जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ भी टेम्परेचर उसको ज्यादा ही लगेगा, अपन कितना भी कम कर लेंगे
1: वो उसके लिए मुफीद है और अच्छी फेवरेबल है,
0: फेवरेबल है उसके लिए, और उसकी वो निकलेगी भी नहीं है, वो निकलेगी भी नहीं उसमें से, मतलब वो उसका अच्छी चीज है, और गर्मी अपने को लगेगी अपन भी ठंडी जगह,
1: हमारे दूध पे प्रोडक्शन पे कोई अंतर नहीं आएगा उससे?
0: नहीं नहीं नहीं, प्रोडक्शन कोई अंतर,
1: और जानवर भी स्वस्थ रहेगा,
0: जानवर स्वस्थ रहेगा, मन खुश होगा, जानवर प्रसन्न रहेगा यदि अंदर से, तो सारी चीजें ठीक है, दूध उत्पादन भी सामान्य रहेगा,
1: यानी कि वही इंसान के संग जो हैप्पी इंसान है तो वो अच्छा काम करता है, अच्छी रिजल्ट्स देता है, तो वही भी अच्छे रिजल्ट्स।
0: जी जी जी।
1: तो डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता जी, गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल इस विषय पर बातचीत आपसे हुई, हम उम्मीद करते हैं हमारे किसान श्रोता इससे अवश्य लाभान्वित होंगे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
0: जी धन्यवाद सर, आप सभी का धन्यवाद।
2: भैया अभी आपने सुनी जो भेंट वार्ता जी को विषय है तो गर्मियों में डेयरी पशुओं की समुचित देखभाल, हमें जानकारी दे रहे थे डॉक्टर नितिन मोहन गुप्ता और उनसे बातचीत कर रहे थे डॉक्टर समर्थ अग्रवाल। जैसे कि भैया डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी बताई, और वाकई में गर्मियों में विशेष ध्यान रखने की जरूरत है अपन काजे अपने पशुओं की, चाहे अपनी ध्यान रखना हो या सही अपने पशुओं को ध्यान रखना है। अब जानकारी उन्होंने पूरी बता दी है, फिर भी अपन हम यही कहेंगे भैया हो कि अपन जैसे कि पशुओं को बिल्कुल पानी जो है उनको बिल्कुल सवेरे संजय और दोपहर तीन बजे पानी पिवाएं, उन्हें नहवात रहें, और उनकी जो पशुशाला होते हैं वहाँ में बिल्कुल उनकी ठंडक को ध्यान रखें, आप चाहें तो कूलर पंखा भी लगा सकते हैं,
3: बिल्कुल भैया आप सही कह रहे हैं। और अब हम सोच रहे हैं कि अपन किसानवन भैया को मनोरंजन करवा दे।
2: हाँ बहन, तो बहन कौन से लोग सुनवा रहे हैं भैया?
3: तो भैया हम सोच रहे हैं डोरीलाल गोला को गाओ भाव जो लोग सुनाते हैं, अपन भैया को सुनवाते हैं, तो भैया रो सुनो जो लोग गीत।

0: तो भैया अब हम जो अभी आपने लोकगीत सुनो, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आओगे। और भैया देखो, अब हम आपको शिवपुरी जिला के मौसम की जानकारी दे रहे हैं। तो आज को अधिकतम तापमान रहो 43 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम रहो 28 डिग्री, आर्द्रता 31% और हवा की गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से रही। और रूपेश भैया, आप घड़ी इशारों कर रही है कि कार्यक्रम से विदा लें। तो आप ही रेणु राजा और
1: रूपेश भैया की राम राम,
0: जय
1: जय
0: जवान
1: जवान, जय
0: जय
1: किसान।
0: किसान।
2: इस कार्यक्रम के

0: आयोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार।
1: हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए।

0: आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं। क्योंकि
1: सुरक्षित फसल, निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान।
0: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।

0: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम किसान वाणी।
1: यह आकाशवाणी का शिवपुरी केंद्र है। रात्रि के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। इसे हम अपने भोपाल केंद्र से

0: तिथियों में। इसके अंतर्गत सुनिए विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन।
1: सर्वोच्च न्यायालय के कल के अहम फैसले में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR को पूरी तरह वैध ठहराया गया है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव आयोग के पास SIR करने का पूरा अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद विपक्षी पार्टियों के SIR की प्रक्रिया पर सवाल उठाने पर पूरी तरह विराम लग गया। विपक्ष के इन सवालों और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों को आसान शब्दों में समझने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं चुनाव आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत जी, स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम को शुरू करने के पहले आइए हम सुनते हैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
3: सर्वोच्च न्यायालय ने निर्वाचन आयोग द्वारा कराई गई मतदाता सूचियों की विशेष गहन पुनरीक्षण SIR प्रक्रिया की वैधता को बरकरार रखा है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों की संवैधानिक अनिवार्यताओं को आगे बढ़ाती है। न्यायालय ने फैसला सुनाया कि निर्वाचन आयोग लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अनुच्छेद 324 और उसके अधीन निर्मित नियम के तहत SIR करवाने की शक्ति रखता है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची की एक पीठ ने उन रिट याचिकाओं पर फैसला सुनाया जिनमें पिछले साल जून महीने में चुनाव आयोग द्वारा बिहार में SIR आयोजित करने के लिए जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि SIR प्रक्रिया का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लक्ष्य को हासिल करना है। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा सुनाए गए फैसले में कहा गया कि विवादित प्रक्रिया को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता क्योंकि यह नियमित पुनरीक्षण के लिए निर्धारित सामान्य तौर तरीकों के अनुरूप नहीं है। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि निर्वाचन आयोग ने अपनी वैधानिक शक्तियों से अधिक कार्रवाई की है। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि चुनाव आयोग द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम 1960 के विपरीत थी। न्यायालय ने इस तर्क को भी खारिज कर दिया कि इस प्रक्रिया से मतदाता सूचियों में पहले से मौजूद व्यक्तियों की नागरिकता की अनुमानित मान्यता समाप्त हो जाती है।
1: आपसे मेरा पहला सवाल ये होगा, ये जो इलेक्टोरल इंटीग्रिटी की हम बात करते हैं, जो स्वच्छता की बात करते हैं इलेक्टोरल रोल की, इसमें SIR का कितना महत्व रहता है?
2: बहुत ही महत्व रहता है।

0: है, क्योंकि इलेक्टोरल इंटीग्रिटी जो है शुरू होता है इलेक्टोरल रोल से। कोई भी देश का, खाली भारत का नहीं, कोई भी देश का इलेक्टोरल रोल जो है वो अगर सही हो तो फिर इलेक्शन साफ होता है, फ्री फेयर होता है, और इलेक्शन के नतीजे लोगों का विल को रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए सारी चीज का शुरुआत है वोटर लिस्ट से, जिसको इलेक्टोरल रोल बोला जाता है। और भारत के इलेक्टोरल रोल जैसे है कि करीब करीब 100 करोड़ तक पहुंचने वाला था। दुनिया की सबसे बड़ा इलेक्टोरल रोल है, शायद बहुत सारे कंट्री का पॉपुलेशन मिलाकर भी 100 करोड़ नहीं होगा, लेकिन वो 100 करोड़ में अभी एक पॉज लग गया है SIR के जरिए। अभी थोड़ा सा रिवर्स होगा, कुछ नंबर्स घटेंगे, और घटेंगे क्यों? अच्छे कारण से घटेंगे। अच्छे कारण से इसलिए घटेंगे क्योंकि सब घोस्ट नेम्स थे, ये नेम का कोई महात्म्य नहीं था। जो इलेक्टोरल रोल में जो मरे हुए लोगों का नाम हो, या जो चले गए हैं उस कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के उन लोगों का नाम हो, या जो लोगों का नाम दो तीन जगह में हो उनका नाम हो, तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो इस सब को साफ करने के लिए, और जो लोगों का नाम इलेक्टोरल रोल में नहीं रहना चाहिए उनको नाम को निकालने के लिए, और खास करके आर्टिकल 326 के अनुसार कौन कौन एलिजिबिलिटी है हमारा भारत की इलेक्टोरल रोल में रहने के लिए, नागरिक होना चाहिए, 18 साल के होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूएंसी का ऑर्डिनरी रेसिडेंट होना चाहिए, ये सब तो देखना होगा ना। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन में ये सब चीज को अच्छी तरह देखा गया, क्योंकि उसमें एन्यूमरेशन होता है फ्रेश। एक बार मान लीजिए कि एक बार एक फ्रेश लिस्ट जैसे बनता है वो बात है, क्योंकि हर साल जो होता है समरी रिवीजन उसमें क्या है कि उसी लिस्ट के ऊपर करेक्शंस होते हैं, मॉडिफिकेशंस होते हैं। इसमें लेकिन मान लीजिए कि पूरा एक बार एक समूचा नया इलेक्टोरल रोल आपके सामने रखा गया है, और जो लोग रहना चाहिए वो रहते हैं, जो लोगों को नहीं रहना है उनको निकाला जाता है, मतलब वो नाम को, लोगों को नहीं उस नाम को, और 20-22 साल के बाद हो रहा है। तो इससे लगता है कि जो अगर प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल अगर इलेक्शन कमीशन का एक दायित्व है आर्टिकल 324 के तहत, तो वो काम जो 20-22 साल के बाद एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से वो काम दुरुस्त तरीके से होता है, तो इसलिए होना चाहिए।
1: जो प्रक्रिया हुई, जो बिहार से शुरू हुई और बाद में फिर 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में किया गया सेकेंड फेज में, और थर्ड फेज का काम अभी चल रहा है, इस बीच में एक विवाद खड़ा हो गया SIR को लेकर, तो इन सब को आप कैसे देखते हैं? ये जो पूरा विवाद रहा सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग आने के पहले।
0: देखिए, जितने अथॉरिटीज होते हैं देश में, या मान लीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, गवर्निंग एजेंसीज होते हैं, ये सबसे इलेक्शन कमीशन थोड़ा अलग तरह के है। इनका काम ही एक हिसाब से पॉलिटिकल लोगों के साथ, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, कैंडिडेट के साथ, रोज काम इन्हीं के साथ ही होता है। इनका पंजीकरण करना, इनका कैंपेन को रेगुलेट करना, इनका इलेक्शन कंडक्ट करना, इनका नतीजे निकालना, यही सब इलेक्शन कमीशन काम है। सिंबल्स देना, ये सब काम है। तो ये पॉलिटिक्स से अलग नहीं रह सकता है एक हिसाब से। तो उसका मतलब नहीं है कि जरूर विवाद हो, उसका मतलब नहीं है कि जरूर पॉलिटिकल एक्यूजेशंस हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। सवाल जरूर होना चाहिए, क्वेश्चंस होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि भाई SIR इस तरीके से क्यों कर रहे हो, पूछा जाना चाहिए कि हाँ भाई ये जो है लोगों को तकलीफ देता है, इस तरह से नहीं करके ऐसे करना चाहिए, समय इतना लगना चाहिए, जो प्रोसीज्योर एलिमेंट है उस पर बार बार सुझाव आना चाहिए, और बार बार प्रश्न भी हो सकते हैं। इलेक्शन कमीशन का दायित्व तो बनता है उस सुझाव को लेके कुछ परिवर्तन करना है, कुछ मॉडिफिकेशन, करेक्शन, कोर्स करेक्शन करना है, किया भी है इलेक्शन कमीशन, कुछ अपने आप में किया है, कुछ सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पर किया है। 60 करोड़ लोगों का SIR हो चुका है, करीब 40 करोड़ लोगों का होना बाकी है, बड़े बड़े स्टेट्स में जनरली हो चुका है। तो इसमें जो सवाल आए लोगों की सहूलियत के लिए, लोगों का जो मार्जिनल पॉपुलेशन है, जैसे अर्बन नहीं है, जो लिखा पढ़ी में बहुत ज्यादा नहीं है, जिनका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छी तरह से होता नहीं है, और वो जाके पेपर के पीछे भाग रहे हैं या कहां अपील करने के लिए भाग रहे हैं, तो वो डिफिकल्टीज को एक्नोलेज करना पड़ेगा, और कुछ हद तक एड्रेस भी हुआ है। लेकिन उसका राजनीतिकरण एक अलग बात है। वो राजनीतिकरण जब हो जाता है, उसका मतलब यह है कि आपका पॉलिटिकल आउटकम को नजर में रखते हुए आप किसको काठगड़े में खड़ा कर सकते हो, जैसे कि आप इलेक्शन कमीशन को आरोप लगा सकते हो और कुछ कर सकते हो, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़िया बात है ही नहीं। आप देखिए, एक तरफ बात चल रहा है कि भाई इन्फिल्ट्रेटर घुसपैठिया को निकालना है, एक तरफ बात चल रहा है कि लोगों का अधिकार से वंचित नहीं करा जाना चाहिए, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट लोगों का हो रहा है, मुझे लग रहा है ये सब है राजनीतिक अल्फाज। लेकिन इलेक्शन कमीशन का जो अल्फाज है वो है दो चीज, एक है कि भाई जो डेड है जो डुप्लीकेट हैं, जो माइग्रेटेड हैं, इनका नाम को जरूर निकालना है एएचडी वोटर्स, और बाकी जो 326 में जो वोटर लिस्ट में जिनका होना चाहिए लोगों का एलिजिबिलिटी उनके हिसाब से, उनको अगर नहीं है तो उनको निकालना चाहिए, बाकी लोग जो एलिजिबल है उनको जोड़ना चाहिए. नो वन एलिजिबल शुड बी लेफ्ट आउट, नो वन इनएलिजिबल शुड बी इन. इस तरह का बात अगर हो तो तरीके की बात चलता है, फिर ये लोकतांत्रिक होता है, संविधानिक बात होता है. राजनीति को एक बार छोड़ देना चाहिए. लेकिन राजनीति जैसे आप और हम जानते हैं और देखे भी हैं इस सिलसिले में, राजनीति बहुत हद तक इसके अंदर आ गया और राजनीतिक सवाले आए और उसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, तो आरोप तो किसी के ऊपर भी आप लगा सकते हैं. वो सब थोड़ा अनफॉर्चुनेट है. जैसे अंग्रेज में कहावत है ना, टू थ्रो द बेबी टुगेदर विद बाथ वाटर. अब बाथ वाटर को आप निपटाइए लेकिन उसका मतलब बच्चा को भी फेंक देंगे क्या? तो ये जो है मुझे लग रहा है कि ये अवॉइडेबल था. लेकिन आज की तारीख में खास करके आपने अभी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद ही ये चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का मोहर लगाया है उसके बाद विवाद अंत होना चाहिए और पीसफुल स्मूथ तरीके से सबका कोऑपरेशन के साथ बाकी एसआईआर के जितना प्रक्रिया है, ये वाली और आने वाली कभी भी एसआईआर होगा वो ठीक से हो जाना चाहिए. लेकिन इलेक्शन कमीशन का भी जिम्मेवारी बनता है जो जो सवाल करें सुझाव दें, सुने, जो सवाल करें उसके जवाब दें.
1: सुप्रीम कोर्ट के ओवरऑल जजमेंट को कैसे व्यू करते हैं?
0: एक तो है कि आप आर्टिकल 3326 में जो वोटर इंडिया में इलेक्टर होने के लिए जो एलिजिबिलिटी है आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं. उसमें एक है कि वो सिटीजन होना चाहिए. तो भारत की सिटीजन को ही खाली वोटर लिस्ट में डाल सकता है कौन? डालेगा इलेक्शन कमीशन, डालेगा तो इलेक्शन कमीशन रख सकता है, हाँ भाई ये सिटीजन है इसलिए वोटर लिस्ट में है, ये सिटीजन नहीं है इसलिए वोटर लिस्ट में नहीं है. ये तो इलेक्शन कमीशन का एक ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी बनता है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोला है बहुत सही बोला है, क्योंकि एसआईआर सिटीजनशिप या घुसपैठिया या इन्फिल्ट्रेटर बाहर के नागरिक, ये चीजों का सोल्यूशन नहीं है. एसआईआर सोल्यूशन नहीं है ना. नागरिकता किसका है नहीं है उसका पुलिसिंग करना इलेक्शन कमीशन का काम है. सिटीजनशिप एक्ट अलग है, उसका अथॉरिटीज अलग है और वो जो अथॉरिटीज है वो देखें कैसे लोगों को बाहर देश के लोग हमारे यहाँ आके नहीं रहे, यहाँ के नागरिक नहीं बने, या नागरिक को जो मिलना चाहिए उनको नहीं मिले, ये सब देखने का काम अलग है. सिटीजनशिप एक्ट है इनका है, एक है आर्टिकल 324 इलेक्शन कमीशन का, दूसरा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट. इसी के तहत लेकिन जो इलेक्टोरल रोल में रखेंगे वो नागरिक होना चाहिए. तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो डायलेमा को या ये जो चीज को बहुत अच्छी तरह से संभाला है और पहले भी ऑब्जर्वेशन दिया था इलेक्शन कमीशन. ये तो मेरे को लगता है कि जो जजमेंट था बहुत हद तक एंटिसिपेटेड था. ये इतना सारे महीनों से चल रहा है ये सारे हियरिंग्स कि इसमें बहुत कीमती ऑब्जर्वेशंस दिया है बीच में सुप्रीम कोर्ट, वो फाइनली जजमेंट में कन्वर्ट हुआ कल. लेकिन उसने बोला है कि जो फाइनल सिटीजन कोई है या नहीं है उसको डिसाइड करेगा सिटीजनशिप एक्ट, इलेक्शन कमीशन का नहीं है. लेकिन इलेक्शन कमीशन को अगर लगा कि किसका सिटीजनशिप का वैलिडिटी नहीं है वोटर लिस्ट में होने के लिए, तो वो वोटर लिस्ट से उसको निकाल सकता है. वो एक लिमिटेड पर्पस अगर माने, लिमिटेड पर्पस है, लेकिन उसका सिटीजनशिप का जो समूचा पर्सनालिटी है एक सिटीजन का वो डिसाइड करेगा. उसके लिए एक्ट है, अथॉरिटीज अलग है. इस तरह का सुप्रीम कोर्ट ने भी अलग अलग करके दिखाया है और ये भी सही है. पहले भी इस तरह का ऑब्जर्वेशन आया है और ये भी सही है.
1: सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आने के बाद इशू सेटल्ड माना जाए?
0: मैं तो सोच रहा हूँ बिल्कुल सेटल्ड है, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर इसमें कोई सेंसिटिवनेस था वो बॉर्डर स्टेट ऑफ जैसे वेस्ट

0: अपडेट करूं, मान लो रफली थे 2024 में शायद वही था, करीब 100 करोड़ वोटर होने वाले थे, और उसमें से अगर 60 करोड़ का हो गया, 40 करोड़ का तो हो जाने का तो कोई नहीं होने का मुझे नहीं लग रहा है। और खास करके सुप्रीम कोर्ट जब फाइनल मोहर लगा दिया, तब तो ये सब कुछ क्लियर क्लियर क्लियर हो गया, तो उसके बाद कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन एक चीज मैं बताऊंगा आपको और आपके श्रोताओं को कि इलेक्शन कमीशन पिछले 10-15 साल से एक बड़ा मुहिम में जुड़ा हुआ था। उसका है कि जो जो लोग हैं एलिजिबल सब पंजीकृत हो, और जो पंजीकृत हैं सब वोट दें। तो लोगों का भागीदारी बढ़ाने के लिए लोकतंत्र में बहुत बड़ा मुहिम चला है, और उसका नाम एक आप स्वीप जानते हैं, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन। बहुत अच्छे नतीजे आया था, जो टर्नआउट में जो लास्ट 10-15 साल में इजाफा हुआ है, रजिस्ट्रेशन में भी, वो इसी का कारण से ये एक इलेक्शन कमीशन का मुहिम था। मुझे लग रहा है कि ये SIR ने जो लोग एलिजिबल नहीं है उनको निकालने का जो एक कैरेक्टर बन के उभरा है, यही उसका कैरेक्टर है बेसिकली, क्योंकि जो नहीं है उनको निकालो, लेकिन जो एलिजिबल हैं देश में उनको जोड़ो, वो भी इसका एक पर्पस है। लेकिन जो देखा लोगों ने, इस चीज ज्यादा उभर कर आया कि भाई नाम लोगों का निकल जा रहा है। मुझे लग रहा है कि एक बार और वो माहौल बनना चाहिए, कैंपेन बनना चाहिए कि जो जो लोग देश में जहां जहां हैं, जो एलिजिबल हैं आर्टिकल 326 के अंदर, तो उनको सबको जोड़ा जाए। फिर जोड़ने का एक मुहिम अच्छी तरह हो, पंजीकरण और वोटिंग में, तो फिर डेमोक्रेसी में थोड़ा भागीदारी का और एक परिवेश या माहौल बनेगा और अच्छा रहेगा। लेकिन SIR के ऊपर मुझे लग रहा है कि डिबेट जो है अंत है, और उसके हमें आगे बढ़ना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को, सिटीजन्स को, वोटर्स को, और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सबको आगे बढ़ना चाहिए अभी।
1: धन्यवाद सर। अभी आप सुन रहे थे विशेष गहन पुनरीक्षण पर सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय, चुनावी पारदर्शिता की नई दिशा पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे निर्वाचन आयोग के पूर्व महानिदेशक अक्षय राउत और वरिष्ठ पत्रकार मुकेश रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOn AIR पर भी सुन सकते हैं।
2: सुर्खियों में अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुर्खियों में, यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है।

हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत। पहला गीत मिली फिल्म से, आवाज़ किशोर कुमार की, योगेश के लिखे गीत की धुन बनाई है SD वर्मन ने।

रजनीकांता। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा लता मंगेशकर की आवाज़ में, योगेश का गीत और सलील चौधरी का संगीत।

खट्टा मीठा। लीजिए सुनिए इस फिल्म का गीत, लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में, गुलजार का गीत और राजेश रोशन का संगीत।

लता मंगेशकर की आवाज़ में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं खानदान फिल्म का ये नगमा, नक्श लियालपुरी का लिखा हुआ और संगीतबद्ध खय्याम का।

मुकद्दर का सिकंदर। लीजिए सुनिए इस फिल्म का नगमा आशा भोसले की आवाज़ में। अनजान के लिखे गीत की धुन बनाई है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: स्वर्ग की धरती कश्मीर की कलियां लगी महकने,
1: नई नई तकनीकियां भारत में है लगी थिरकने।
2: आज ये धरती भारत की है।
3: ये आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। 8:45 होने को है अगला प्रसारण आकाशवाणी दिल्ली से थोड़ी ही देर में।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठी की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
1: घुसपैठियों को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धरमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
2: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धरमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धरमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देबराय को पार्टी के प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री अभिषेक देबराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देबराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन कल कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। उपराष्ट्रपति कल कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के वैश्विक समारोह में शामिल होंगे। शनिवार को श्री राधा कृष्णन पणजी में गोवा के राज्य स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति 31 मई को बेल्तागंडी के CRI औद्योगिक पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
4: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न रहे।
5: 2016 से ही प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के माध्यम से हर आवासहीन को पक्का मकान उपलब्ध कराने का अभियान चल रहा है। अब तक इस योजना के अंतर्गत केवल ग्रामीण क्षेत्र में हमने 3,91,00,000 घरों को मंजूरी दी और उनमें से 3,05,00,000 से ज्यादा पूरे हो गए। शहरी आवास योजना के मकान अलग है, उनको मिला के तो 4 करोड़ बहुत पहले पूरे हो चुके हैं। तो राज्यों को मैंने अपील की है कि समय पर लक्ष्य पूरा करें और जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन उपलब्ध कराने का काम करें।
4: महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली स्थित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड मुख्यालय में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की।

बैठक में बोर्ड की कक्षा 12वीं की परीक्षाओं के मूल्यांकन और परिणाम के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित विषयों की समीक्षा की गई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने अधिकारियों को छात्रों की समस्याओं का समय पर पारदर्शी और छात्र हितैषी तरीके से समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। सरकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI पाठ्यक्रम में व्यापक सुधार के लिए उद्योग जगत के साथ मिलकर काम कर रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज नई दिल्ली में AI पाठ्यक्रम कार्यबल के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में AI शिक्षा को भविष्य की तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप ढालने पर चर्चा हुई। कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि कोयले से गैस बनाने की योजना देश के औद्योगिक और आर्थिक परिवर्तन का एक प्रमुख स्तंभ बन रही है। नई दिल्ली में कोयला और लिग्नाइट से गैस बनाने की परियोजनाओं को प्रोत्साहन से जुड़े प्रदर्शनी के दौरान श्री रेड्डी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आत्मनिर्भरता और सुरक्षित ऊर्जा व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि लोकतंत्र संवाद विचार विमर्श आम सहमति और असहमति के वातावरण में फलता फूलता है। श्री बिरला ने आज दिल्ली विधानसभा में 1924 से 1930 तक केंद्रीय विधानसभा की सभी 407 बैठकों की कार्यवाही के 89 खंडों के अनूठे संकलन का विमोचन किया। श्री बिरला ने कहा कि यह संग्रह भावी पीढ़ियों और लोकतांत्रिक संस्थाओं के लिए अमूल्य मार्गदर्शक साबित होगा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के गंभीर मुगला क्षेत्र के दोरीमाल इलाके में घने जंगलों में जारी आतंकवाद रोधी अभियान के आज छठे दिन भी संदिग्ध आतंकी ठिकानों पर गोलीबारी और ग्रेनेड लॉन्चर से हमले किए। 2 से 3 पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस क्षेत्र में छिपे होने की आशंका है। छिपे आतंकवादियों को मार गिराने के लिए संदिग्ध ठिकानों पर गोलीबारी की गई। आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगातार कड़ी नजर रखी जा रही है और क्षेत्र में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यनेज यांशा को स्लोवेनिया का प्रधानमंत्री चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि वे दोनों देशों के लोगों की साझा समृद्धि और पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की दिशा में स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। आकाशवाणी समाचार की श्रद्धांजलि।
2: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए।
3: उर्दू अदब और गजल की दुनिया आज उस वक्त गहरे सन्नाटे में डूब गई जब मशहूर शायर बशीर बद्र ने हमेशा के लिए दुनिया को अलविदा कह दिया। 15 फरवरी 1935 को जन्मे बशीर बद्र की गजलों में मोहब्बत, तन्हाई, रिश्तों की नजाकत और इंसानी जज्बात की गहरी झलक दिखाई देती है।
2: हर धड़कते पत्थर को लोग दिल समझते हैं, उम्रें बीत जाती हैं दिल को दिल बनाने में।
3: जी हाँ, ऐसे ही कालजई अशरार ने उन्हें करोड़ों दिलों तक पहुंचाया। उनके योगदान के लिए सरकार ने उन्हें पद्मश्री से अलंकृत किया। उर्दू अदब की ये आवाज भले ही खामोश हो गई हो, लेकिन उनकी शायरी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी।
2: अजब चराग हूँ, दिन रात जलता रहता हूँ, मैं थक गया हूँ, हवा से कहो बुझाए मुझे।

0: मौसम विभाग ने पूर्वानुमान लगाया है कि आज से उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में लू की स्थिति में कमी आने की संभावना है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज वर्षा और आंधी के कारण लोगों को भीषण लू से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, न्यूनतम तापमान 28.4 डिग्री सेल्सियस रहा। विभाग के अनुसार कल राजधानी में बादल छाए रहने के साथ साथ हल्की बूंदाबांदी की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने देश के कुछ अन्य क्षेत्रों में भी भीषण गर्मी से राहत का अनुमान व्यक्त किया है।
1: जो हीट वेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पूर्वी भारत कुछ क्षेत्रों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
0: वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप में भारत के दो पहलवानों ने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। पुरुषों के 45 किलोग्राम ग्रीको वर्ग में आज सचिन कलप्पा शिरोल ने जॉर्डन के समी अहमद अल उबेद को, वहीं 110 किलोग्राम वर्ग में रुद्र किरण निम्हान ने श्योक मेहिम को हराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय पहलवानों के शानदार प्रदर्शन पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पुरुष फ्री स्टाइल और महिला कुश्ती टीमों ने चैंपियनशिप में टीम खिताब जीते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठियों की पहचान कर देश से निकालने की सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने त्याग पत्र दिया, कहा राज्य की सक्रिय राजनीति में बने रहेंगे। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि जारी की। प्रसिद्ध उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 वर्ष की आयु में निधन। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में आज से गर्मी और लू में कमी का अनुमान व्यक्त किया। वर्षा और आंधी के कारण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में गर्मी से राहत। और दो भारतीय पहलवान वियतनाम में एशियाई अंडर 17 कुश्ती चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंचे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ। मैं शगुफ्ता यास्मीन। वजीर दाखला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने के सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम ने 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 2 भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। उमूर दाखला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकजी वजीर अमित शाह ने मुल्क में हर गैर कानूनी इमिग्रेंट का पता लगाने और उसे उसके वतन वापस भेजने के सरकार के पुख्ता अहद को दोहराया है। वो आज गांधीनगर लोकसभा हलके में 340 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह और संगे बुनियाद रखने के बाद एक अवामी रैली से खिताब कर रहे थे।
1: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर्ड कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारण और उपायों की चिंता करेगी और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
0: जनाब अमित शाह ने वीर सावरकर के यौम पैदाइश के मौके पर उनकी खिदमात को भी याद किया। कर्नाटक में सबसे तवील अरसे तक वजीर आला के ओहदे पर फायज रहने वाले सिद्धारमैया ने आज बेंगलुरु में गवर्नर के दफ्तर को अपना इस्तीफा पेश कर दिया। इससे कबल उन्होंने अपने काबीना साथियों के साथ नाश्ते पर मीटिंग की थी। बाद में नामानिकारों से खिताब करते हुए डी के शिव कुमार का नाम लिए बगैर

0: उन्होंने गवर्नर मौसूफ से कहा कि रियासत में वजीर आला के ओहदे की जिम्मेदारी संभालने के लिए नामजद वजीर आला को मदऊ किया जाए। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: दो मरतबा के वजीर आला और दो मरतबा के अपोजिशन रहनुमा सिद्धारमैया ने आज अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने 17 रियासती बजट पेश किए थे। उन्होंने रियासत में अहिंदा तहरीक शुरू की थी जो पसमानदा तबकों और अकलियतों की नुमाइंदा थी। सिद्धारमैया ने पार्टी हाईकमान की मर्जी के मुताबिक इस्तीफा दिया है। आज अहिंदा ग्रुपों की तरफ से इस्तीफे के खिलाफ रियासत के बहुत से इलाकों में मुजाहरे किए गए। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के हामियों ने खुशी मनाई। सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार दोनों ही कानून साज पार्टी के एक नए रहनुमा को चुनने और काबीना में इम्कानी रद्दोबदल के मजीद इकदाम पर बातचीत के लिए दिल्ली आ रहे हैं। बेंगलुरु से सुधिंद्रा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: देही तरक्यात के वजीर शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। इन रियासतों में असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरला, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश शामिल हैं। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात को यकीनी बनाने का तहैया कर रखा है कि मुल्क में कोई भी गरीब आदमी कच्चे मकान में न रहे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 3,91,00,000 मकानों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है, जबकि निशाना 4,95,00,000 मकानों का है। जनाब चौहान ने कहा कि 3 करोड़ से ज्यादा मकानों की तामीर का काम मुकम्मल हो गया है। वजीर मौसूफ ने कहा कि मरकजी सरकार बहबूद की मुख्तलिफ स्कीमों को मरबूत करके देही इलाकों के कुनबों के मयार जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। खवातीन को बाख्तियार बनाने को उजागर करते हुए मरकजी वजीर ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत जिन मकानों को मंजूरी दी गई है उनमें से तकरीबन 75% मकान या तो खवातीन के नाम पर हैं या मुश्तरका मिल्कियत में है। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने पुलिस फोर्स पर जोर दिया है कि वो कमजोर तबकों, खासतौर पर खवातीन, गरीबों और बच्चों के मामलात से निमटते वक्त हसास और ऐसा रवैया अख्तियार करे जिससे शहरियों को और ज्यादा मरकजी हैसियत हासिल हो। मोहतरमा द्रौपदी मुर्मू आज सुबह गैंगटॉक में अलंकरण परेड के दौरान सिक्किम पुलिस को सदर जमहूरिया के पुलिस परचम से सरफराज करने के बाद इजहार ख्याल कर रही थीं। उन्होंने अमनो कानून बरकरार रखने और कुदरती आफात से पैदा हालात से निपटने में सिक्किम पुलिस के रोल की सताइश भी की।
2: पुलिस व्यवस्था को अधिक सिटीजन फ्रेंडली बनाया जाना चाहिए ताकि सामान्य लोग बिना भय के अपनी समस्या दर्ज करा सके। महिलाओं, बच्चों और कमजोर वर्गों के प्रति संवेदनशील व्यवहार को भी प्राथमिकता देनी चाहिए। साइबर क्राइम, ऑनलाइन फ्रॉड, हैकिंग और डीप फेक जैसी नई चुनौतियां सामने आ रही। इन नई चुनौतियों से निपटने के लिए पुलिस को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल इन्वेस्टिगेशन में दक्ष बनाना होगा।
0: इधर सिक्किम को उल्लास पहल के तहत मुकम्मल तौर पर खानदान रियासत होने का बाजाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन कल से कर्नाटक, गोवा और केरलम के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। वो कल बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के 45 साल मुकम्मल होने की आलमी तकरीब में शिरकत करेंगे। बाद में जनाब राधाकृष्णन कर्नाटक के देवनगिरी में बीडीटी यूनिवर्सिटी के इंजीनियरिंग कॉलेज की प्लेटिनम जुबली तकरीबात में शिरकत करेंगे। हफ्ते के रोज जनाब राधाकृष्णन पनाजी में गोवा के यौम तासीस की तकरीबात में शामिल होंगे और समंदरी उलूम के CSIR कौमी इंस्टीट्यूट का दौरा करेंगे। नायब सदर इतवार के रोज कर्नाटक में ही श्री सनती पार्क का इफ्तिताह करेंगे और श्री क्षेत्र धर्मस्थल मंजूनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने आज कहा है कि जमहूरियत मुजाकरात, बहस व मुबासे, इत्तफाक राय और इख्तलाफी राय की इजाजत देती है। उन्होंने ये बात दिल्ली कानून साज असम्बली में 1930 तक मरकजी कानून साज असम्बली की सभी 407 नशिस्तों की कार्रवाईयों पर मुश्तमिल मुनफरिद 89 जिल्दों का इजरा करते हुए कही। जनाब बिरला ने कहा कि इस मजमुए से आने वाली नस्लों और जमहूरी इदारों के लिए एक बेशबहा रहनुमाई फराहम होगी। उन्होंने कहा कि हुकूमतों का फर्ज है कि वो तारीख, विरासत और उन रहनुमाओं की रिकॉर्ड की हुई तकारीर का तहफ्फुज़ करें जिन्होंने मुल्क की आजादी के लिए जद्दोजहद की थी। लोकसभा के स्पीकर ने दिल्ली कानून साज पार्टी के विधान चेतना नाम के एक पहले सैमाही जरीदे का भी आगाज किया। पार्लियामानी उमूर के वजीर किरण रिजिजू, दिल्ली काबीना वजीर प्रवेश साहब सिंह और दिल्ली कानून साज असम्बली के स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने भी इस तकरीब में शिरकत की। रेलवे के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि तेलंगाना में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अगले 5 साल में 200 इंटरसिटी रेलगाड़ियां बनाएगा। इन ट्रेनों को कम दूरी के सफर के लिए पूरे मुल्क में लगाया जाएगा। जनाब वैष्णव ने रेलवे के वजीर मुमलिकत रवनीत सिंह बिट्टू और आला एहलकारों के साथ मीटिंग में काजीपेट रेल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को अमली शक्ल देने के मंसूबों का जायजा लिया। ये रेलगाड़ियां तकरीबन 300 किलोमीटर तक चलेंगी और हर ट्रिप में ये कई जगह रुकेगी ताकि लोग कस्बों और शहरों के दरमियान आसानी के साथ सफर कर सकें। इस तरह इन ट्रेनों के जरिए लोगों को एक शहर से दूसरे शहर में सफर के लिए नया कम खर्च मुतबादल मिल जाएगा। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। तहकीकात के मरकजी ब्यूरो ने ट्विशा शर्मा की सास गिरी बाला सिंह को भोपाल में गिरफ्तार कर लिया है, जो एक रिटायर्ड जिला और सेशन जज हैं। उन्हें ट्विशा शर्मा की मौत से मुतालिक केस में गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई की टीम ने उनकी रिहायशगाह पर सुबह तकरीबन 10:30 बजे पहुंचकर तलाशी ली और उनसे तकरीबन 7 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद उन्हें सपहर 5:10 पर गिरफ्तार कर लिया। बाद में उन्हें सीबीआई की एक अदालत में पेश किया गया और इससे पहले उनकी तिब्बी जांच की गई। ये गिरफ्तारी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से इस केस को तश्वीशनाक बताते हुए और जारी तफ्तीश के पेश नजर उनकी पेशगी जमानत मंसूख किए जाने के एक दिन बाद की गई है। ट्विशा शर्मा भोपाल के कटारा हिल्स इलाके में 12 मई को मुश्तबा हालत में मुर्दा पाई गई थी। उनके ससुराल के अफराद ने इसे खुदकुशी का केस बताया था, जबकि ट्विशा के कुंबे ने कत्ल का इल्जाम आयद किया था। जम्मू कश्मीर में हिफाजती दस्तों ने राजौरी के गंभीर मुगला इलाके में डोरीमल के मकाम पर घने जंगलों में दहशतगर्दी की रोकथाम से मुतालिक एक कार्रवाई तेज कर दी है। इस कार्रवाई का ये छठा दिन है। हिफाजती दस्तों ने इस इलाके का मुहासरा कर लिया और यहां दहशतगर्दों के छिपने की मुश्तबा जगहों पर ताजा फायरिंग की और ग्रेनेड लॉन्चर से कई हमले किए। इब्तदाई सुराग रसानी से मालूम हुआ था कि 2 या 3 पाकिस्तानी दहशतगर्द यहां छुपे हुए हैं। भारत और चीन ने सरहदी इलाकों की सूरत हाल का जायजा लिया और अमन इस्तेहकाम बरकरार रखने में अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। पेचिंग में भारत चीन सरहदी मामलों पर मुशावरत और तालमेल से मुतालिक वर्किंग निजाम की 35वीं मीटिंग के दौरान यह तबादला ख्याल किया गया। तरफेन ने हदबंदी, सरहदी बंदोबस्त, तरीकेकार तय करने और सरहद के दोनों तरफ इश्तराक से मुतालिक मामलों पर बातचीत की। आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू शायर और अदबी शख्सियत बशीर बद्र का आज भोपाल में इंतकाल हो गया। वो 91 बरस के थे। उनके कुनबे के अफराद ने बताया कि वो एक तवील अलालत के बाद आज दोपहर दुनिया से चल बसे। उनकी तदफीन भोपाल टॉकीज के नजदीक कब्रिस्तान में आज शाम की गई। बशीर बद्र एक तवील अरसे से निसियान की बीमारी में मुबतला थे। वो उर्दू शायरी को जदीद तर्ज में ढालने और आसान लबो लहजे में शेर कहने के लिए जाने जाते थे। उनकी गजलें भारत और बैरून मुल्क काफी ज्यादा मकबूल हुई। पेश है एक रिपोर्ट।
3: उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मोहब्बतों में दिखावे की दोस्ती न मिला, अगर गले नहीं मिलता तो हाथ भी न मिला। ये लाफानी अशार बशीर बद्र की शायरी की जान है। निहायत सलीस अल्फाज मगर तासुरात बहुत गहरे, कुर्बत पर मबनी जज्बात लेकिन ख्यालात आफाकी। उनकी शायरी में मोहब्बत, फुरकत, रिश्ते, अलहदगी और रोजमर्रा की जिंदगी के खामोश पोशीदा जज्बात पाए जाते हैं। बशीर बद्र ने उर्दू शायरी को एक ऐसी जबान अता करके एक नई जहद बख्शी जो आम लोगों के दिल के बहुत करीब है। उनके अशार मुशायरों में तो गूंजते ही थे, साथ ही अक्सर व बेशतर गुफ्तगू में भी इस्तेमाल होते हैं। उन्होंने बहुत से मुशायरों की निजामत भी बड़ी दिलचस्प अंदाज में की। बशीर बद्र को 1999 में पद्मश्री से नवाजा गया था और उनके मजमूए कलाम आस पर उन्हें साहित्य एकेडमी अवार्ड अता किया गया था। न्यूज डेस्क से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: कुर्बानी का त्यौहार ईद उल अजहा आज मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों ने ईदगाहों और मस्जिद में ईद की नमाज अदा की और एक दूसरे को मुबारकबाद पेश की। भारतीय मौसमियात महकमे ने पेशगोई की है कि शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने का इम्कान है। आकाशवाणी न्यूज से बात करते हुए मौसमियात महकमे के साइंसदान डॉक्टर अखिल श्रीवास्तव ने कहा कि अगले तीन दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में लोगों को शदीद गर्मी से काफी राहत मिल जाएगी।
4: जो हीटवेव कंडीशन उत्तर पश्चिम भारत, मध्य भारत के लगा हुआ पूर्वी भारत और दक्षिण पश्चिम भारत कुछ हिस्सों में कंटिन्यू चल रही थी, उसमें आज के बाद से कमी होने की संभावना है। थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी का एक्सपेक्टेशन है जो कि मॉडरेट टू सीवियर कैटेगरी का हो सकता है, और नॉर्थ वेस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया और जो पूर्वी भारत है उसमें 28 से 31 तारीख के बीच में चेतावनी जारी की गई है। अधिकतम तापमान में भी 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक की गिरावट हो सकती है और हीट वेव कंडीशन से राहत मिलने की पूर्वानुमान जारी किया गया।
0: कौमी राजधानी खत्ते के कई इलाकों में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। दो भारतीय पहलवान आज वियतनाम के शहर दनांग में 17 साल तक की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के फाइनल में दाखिल हो गए। 45 किलोग्राम के मर्दों के जुमरे में यूनान रोम जुमरे में सचिन कलप्पा श्रोले ने 110 किलोग्राम के जुमरे में उर्दुन के समी अहमद अलावेद को 11-4 से शिकस्त दी, जबकि रुद्र किरण निमहान ने क्वार्टर फाइनल में कोरिया के सियोक मोसिम को 8-0 से हरा दिया। बैडमिंटन में भारत की पीवी संधू और लक्ष्य सेन सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं, जबकि एचएस प्रणॉय टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। वजीर दाखिला अमित शाह ने मुल्क में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स का पता लगाने और उन्हें वापस भेजने की सरकार के अहद को दोहराया है। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और कहा है कि वो रियासत में सरगर्म सियासत में शामिल रहेंगे। मरकज ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 12 रियासतों के लिए 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा जारी किए हैं। नामवर उर्दू शायर बशीर बद्र का भोपाल में 91 साल की उम्र में इंतकाल हो गया है। भारतीय मौसमियात महकमे ने शिमाल मगरबी भारत के कई हिस्सों में गर्मी का जोर कम होने की पेशगोई की है। कौमी राजधानी खत्ते में आज शाम बारिश हुई और गरज चमक के साथ छींटे पड़े। और वियतनाम में 17 साल तक की उम्र के पहलवानों की एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में दो भारतीय पहलवान सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
5: हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत। पहला गीत आरजू फिल्म से। अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों की आवाजें, आनंद बख्शी का गीत और अनु मलिक का संगीत।

बिन टू, डीजे स्पून से अंकित तिवारी को, शकील आजमी का गीत और मनोज मुंतशिर का संगीत।

कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ में सुनिए नगीना फिल्म का ये नगमा। आनंद बख्शी का गीत है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी मध्य प्रदेश का प्रसारण। 10 बज चुके हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आपकी फरमाइश। आपकी फरमाइश सुनने वाले सभी श्रोताओं को कविता रावत का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, पहली फरमाइश भेजी है देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश और मयंक। रेडियो श्रोता संघ नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत वर्मा, सीमा शारदा, दामिनी वर्मा ने। तो सुनिए, आप सबकी पसंद पर जांबाज फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार और सपना की आवाजों में।

लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, रिंगनी से दिनेश वर्मा, भिलाई से मुकेश शर्मा, दंदरेंगी से भागवत वर्मा, सपना संगीता रोड इंदौर से लाल फतेह चंदानी, लीला फतेह चंदानी, संगीता, सुनीता, पिंकेश, साक्षी, मनन और तानिया। आप सबने सुनना चाहा है बाजीगर फिल्म का ये नगमा, विनोद राठौर और अलका याग्निक की आवाज़ों में। जमीर काजमी के लिखे गीत की धुन बनाई है अनु मलिक ने। तो सुनते हैं इन सब की फरमाइश का ये नगमा।

अम्बेडकर चौक खुरैसी राम सखी परमानंद सौरभ गौरव एलपी रोहित लल्लू राम पूरन रोहित छोटू डुंडुन एवं समस्त परिवार नेपाल पैलेस सागर से तिरक राणा मीना राणा मोनिका नुपुर ऋषिका और रॉबिन आप सब ने सुनना चाहा है। चालबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज़ और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल ने।

सरोज चौक अमरावती महाराष्ट्र से कमरुल्ला नसीम, आयशा खान, हादिया खान, असमा सालिया, शुएब खान, मुस्तफा खान, रऊफ भाई, शाहिद भाई, गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली कटनकर, पाकिजा रेडियो श्रोता संघ इस्लामपुरा सनावत से मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाकिर, मुश्ताक अहमद, बेबी मंसार, रमेश गौड़ और मोहम्मद शादाब खत्री। रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, लेवई से गुलाब दास मानिकपुरी। आप सब ने सुनना चाहा है जंगबाज फिल्म का ये नगमा मोहम्मद अजीज और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में, गीत और संगीत रविंद्र जैन का।

इसके साथ ही आपकी फरमाइश कार्यक्रम संपन्न हुआ। यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में सुनिए पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग है गौरख कल्याण। आपके साथ तबला संगत की है रामस्वरूप रतुनिया ने और हारमोनियम पर लहराती है रामदास मुंगरी ने।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम राग रजनी में अभी आप सुन रहे थे पंडित समरेश चौधरी का ख्याल गायन, राग था गौरख कल्याण। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी मध्य प्रदेश से बोल रहे हैं।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: यह आकाशवाणी मध्य प्रदेश है, 11 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हिंदी और अंग्रेजी में समाचार आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित किए जाएंगे।
3: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अरुण कुमार। गृह मंत्री अमित शाह ने देश से प्रत्येक घुसपैठिए की पहचान कर निर्वासित करने की सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराई है। गुजरात के गांधीनगर में आज 340 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करने के बाद एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही।
4: घुसपैठिए को देश के बाहर निकालना ये हमारी सरकार का संकल्प है, और इसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। ये हाई पावर कमिटी देश भर में जनसंख्यिकी का जो कृत्रिम बदलाव हुआ है उसके कारणों और उपायों की चिंता करेगी, और इसके लिए कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी।
3: गृह मंत्री ने पश्चिम बंगाल सरकार को एक सप्ताह के भीतर सीमा सुरक्षा बल को 600 हेक्टेयर भूमि उपलब्ध कराने के लिए बधाई भी दी। वीर सावरकर की जयंती पर आज श्री शाह ने मातृभूमि के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान, समर्पण और अमूल्य योगदान का स्मरण किया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल के सचिव को औपचारिक रूप से इस्तीफा सौंप दिया है। श्री सिद्धारमैया ने कहा कि उन्होंने राज्यपाल से नामित मुख्यमंत्री को पदभार ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करने का अनुरोध किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कांग्रेस के पास 136 से अधिक विधायकों का समर्थन है।
5: दो बार के मुख्यमंत्री और दो बार विपक्ष के स्थान पर काम कर चुके सिद्धारमैया ने आज अपना इस्तीफा सौंप दिया। अहिंदा यानी अल्पसंख्यक और पिछड़े समुदाय के नेता के तौर पर जाने वाले सिद्धारमैया ने कहा कि हाईकमांड के आदेश अनुसार उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफे की समाचार सुनने के बाद कई जगहों पर आज राज्य में विरोध प्रदर्शन हुआ। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थकों द्वारा खुशी मनाई गई। दोनों नेता दिल्ली की ओर निकले हैं, जहां वह हाईकमांड के साथ संसदीय नेता के चयन और मंत्रिमंडल की रचना पर चर्चा करेंगे। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
3: भारतीय जनता पार्टी ने त्रिपुरा में वर्तमान विधायक अभिषेक देवराय को पार्टी की प्रदेश इकाई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। श्री देवराय राज्यसभा सांसद राजीव भट्टाचार्य का स्थान लेंगे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने उनकी नियुक्ति को स्वीकृति दी। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साह ने बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि श्री देवराय के गतिशील नेतृत्व और संगठनात्मक दूरदर्शिता से त्रिपुरा में भाजपा और मजबूत होगी। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 12 राज्यों को 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी की। इस अवसर पर श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रतिबद्ध हैं कि देश में कोई भी गरीब व्यक्ति कच्चे मकान में न

रहे। महिला सशक्तिकरण पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत स्वीकृत लगभग 75% मकान या तो महिलाओं के नाम पर हैं या संयुक्त स्वामित्व में हैं। महान उर्दू शायर बशीर बद्र का आज मध्य प्रदेश के भोपाल में निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। उन्होंने दोपहर करीब 12 बजे अंतिम सांस ली। बशीर बद्र लंबे समय से स्मृति दोष से पीड़ित थे। साहित्य और संगीत नाटक अकादमी में योगदान के लिए उन्हें 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही 1999 में ही उन्हें काव्य संग्रह आस के लिए उर्दू साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में जनजाति सुरक्षा मंच के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। श्री मोदी ने कहा कि जनजातीय समुदाय के प्रति मंच का समर्पण वास्तव में सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान जनजातीय समुदाय के विकास और सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई। हांगकांग में आज से शुरू हुई 22वीं एशियन अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के पहले दिन भारत की युवा महिला धाविका निपम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक जीत लिया। निपम ने महिलाओं की 100 मीटर दौड़ में 11.62 सेकेंड समय के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। निपम के नाम अंडर 20 महिला 100 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी दर्ज है। 4 दिवसीय ये चैंपियनशिप 31 मई को सम्पन्न होगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।